आकाशवाणी का ये जैसलमेर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 10वीं तिथि, तदनुसार 1 जुलाई सन 2026, दिन के 11:00।

0: आकाशवाणी का ये जैसलमेर केंद्र है एफएम बैंड 106.8 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 12 बजे हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।
1: सारेगामा कारवां डिजिटल ऑडियो प्लेयर। इस तोहफे में है 5,000 सुनहरे गाने और कुछ यादें।
0: आप सुन रहे हैं उदित नारायण की आवाज में फिल्म और प्यार हो गया का ये गीत।

क्या है सिलसिले, पलकों पर ये प्यार के न जाने कितने गुल खिले। तेरे ख्वाब सजाते रहना अब है मेरा काम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम।

आँखों में हम जो मिले तो गाए सारी कोयले, महके सारा ये समा हवाएं महकी सी चले, तेरी खुशबू से भर जाए।

0: 10 लाख की लॉटरी
1: मुझे। वाओ।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत आकाशवाणी का, जैसलमेर केंद्र है एफएम बैंड 1.8 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 12:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम।

0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
1: CIET प्रस्तुत करता है
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश। नए महीने जुलाई की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: और मैं हूँ अजीत। स्वागत है आप सबका कार्यक्रम उमंग में। आइए शुरुआत करते हैं एक सुविचार के साथ, जिसे हमें भेजा है आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं,
3: सफलता की चाबी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प में है।
1: धन्यवाद आपके इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से। जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास और धनवंतीन बाई जी का। लिखते हैं, जय जोहार बंदगी विमलेश मैडम जी, अजीत साहेब जी, जय हिंद जी। आगे लिखते हैं,
3: उमंग टीम को बधाई जी। उमंग कार्यक्रम में 3 जून 2026 को पर्यावरण नेत्री गौरा देवी के पर्यावरण के प्रति लगाव वाली कहानी ने दिल छू लिया। हमें बहुत प्रेरणा और सीख मिली। आपने बहुत प्रेरणादायक और रियल स्टोरी सुनाई। धन्यवाद साहेब।
1: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से। अजय देवता मुरिया, तुषार देवता मुरिया, डॉली, बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
3: इंदिरा चौक दिल्ली से अजीम वकार, माहिरा अजीम और नीलिमा अजीम।
1: और पुणे से सुयोग बटवे।
3: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए।
1: स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
3: जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं विभिन्न खनिज पदार्थों की, और इस क्रम में हमने कल चर्चा की थी कोयले की, जिसे जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। तो अजीत जी, आज की चर्चा का विषय तो बताइए, किस खनिज की हम चर्चा करने जा रहे हैं? श्रोताओं की उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है।
1: उत्सुकता तो बढ़ेगी ही, क्योंकि हमारा कार्यक्रम होता ही है मजेदार और जानकारियों से भरपूर। पता है, कुछ श्रोता तो रेडियो सुनते समय कागज कलम लेकर बैठते हैं और कुछ तो पूरा कार्यक्रम भी रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि कोई जानकारी न छूट जाए।
3: हम सभी सुधीर श्रोताओं को धन्यवाद देते हैं। तो क्या रहेगा आज हमारी चर्चा का विषय?
1: चलिए मैं कुछ हिंट देता हूँ। श्रोताओं जरा अंदाजा लगाइए, हिंट है, ये बहुत ही लोकप्रिय धातु है
3: जी,
1: मूल्यवान भी है। रंग इसका सुनहरा पीला है, सभी इसे बहुत चाहते हैं।
3: अजीत जी, वैसे तो और भी कई धातुएं मूल्यवान हैं, लेकिन यदि हिंट है कि ये पीले रंग का है और बहुत लोकप्रिय है तो बात स्पष्ट हो गई है। कहीं आप गोल्ड या सोने की बात तो नहीं कर रहे हैं?
1: बिल्कुल सही है उत्तर आपका। जी हाँ, मैं सोने या गोल्ड की बात कर रहा हूँ। वैसे इसमें कुछ धातुएं मिला दी जाएं तो इसका रंग बदल भी सकता है। सोना पृथ्वी के बहुमूल्य खनिजों में से एक गिना जाता है
3: जी।
1: तो विमलेश जी, अब जानते हैं कि सोना बनता कैसे है?
3: अजीत जी, बेशक ये पृथ्वी के मूल्यवान खनिजों में से एक है, लेकिन एक बेहद रोचक और आश्चर्यजनक बात बता दूं कि कोयला तो पृथ्वी पर बना, लेकिन सोना पृथ्वी पर बना ही नहीं।
1: कोयला तो पृथ्वी पर बना, लेकिन सोना

0: पर बना ही नहीं, ये क्या बात हुई?
1: यही तो खास बात है जी जी। सोने की उत्पत्ति की कहानी धरती से नहीं बल्कि अंतरिक्ष में तारों की भीषण टक्कर और विस्फोट से हुई है। सोने की उत्पत्ति अरबों साल पहले सुपरनोवा यानी विशाल तारे के फटने और न्यूट्रॉन तारों की टक्कर से हुई थी। वैज्ञानिकों के अनुसार अंतरिक्ष से विशाल तारों और उल्कापिंडों की टक्कर के कारण उत्पन्न धूल से सोना पृथ्वी पर पहुंचा है।
0: तो ये बात है, शायद इसीलिए सोने और चांदी को स्टार डस्ट भी कहते हैं।
1: जी।
0: जब ब्रह्मांड में कोई विशाल तारा या सुपरनोवा अपना जीवन चक्र पूरा करता है ना, तो भयंकर विस्फोट के साथ फट जाता है और इस प्रक्रिया में अत्यधिक उच्च तापमान और दबाव पैदा होता है।
1: जब कोई तारा फटता है और दबाव और गर्मी इतनी अधिक हो जाती है कि हल्के तत्वों के परमाणु आपस में जुड़कर भारी परमाणु बनाने लगते हैं, इसमें एक नया तत्व बनता है जिसे हम सोना कहते हैं।
0: लेकिन विमलेश जी, एक प्रश्न मेरे मन में आता है। अब वो ये है कि यदि सोना अंतरिक्ष में पैदा हुआ या उत्पन्न हुआ तो वो पृथ्वी तक पहुंचा कैसे?
1: ये जानना भी बहुत रोचक है। सोना पृथ्वी पर अंतरिक्ष से मुख्य रूप से तारों के टूटने और उल्कापिंडों की भारी बौछार मीटेराइट बॉम्बार्डमेंट के जरिए पहुंचा है।
0: इसी बात को चलिए थोड़ा विस्तार और देखते। लगभग 4 अरब साल पहले अंतरिक्ष से सोने और अन्य कीमती धातुओं से भरे लाखों विशाल उल्कापिंड पृथ्वी से टकराए।
1: जी।
0: इस भीषण बौछार के कारण उल्कापिंडों में मौजूद सोना पृथ्वी की ऊपरी परत में बिखर गया। आज हम जो भी सोना खदानों से निकालते हैं वह इसी अंतरिक्षीय बारिश की देन है।
1: जी जी जी, सोना पृथ्वी की ऊपरी परत पर बिखर गया, लेकिन धीरे धीरे उस पर भी मिट्टी और चट्टानों की परतें जमने लगी और सोना पृथ्वी की गहराइयों में चला गया। उसी सोने को अब हम खदानों से खोदकर निकालते हैं। अब सोने को ठोस रूप देने के लिए उसमें कई धातुएं भी मिलाई जाती हैं।
0: जी, सच्चाई ये है कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला सोना मानव सभ्यता के प्रारंभ होने से भी अरबों वर्ष पहले बन चुका था।
1: अजीत जी, सचमुच बड़ी अद्भुत कहानी है ना सोने की। एक और रोचक बात साझा करना चाहती हूँ। पता है श्रोताओं, सोने को किसी भी रासायनिक विधि द्वारा पृथ्वी पर नहीं बनाया जा सकता। रसायन शास्त्रियों ने, जिन्हें एल्केमिस्ट कहा जाता है, शताब्दियों तक लोहे, तांबे और पारे जैसी सस्ती धातुओं को सोने में बदलने की कोशिश की थी, लेकिन वे हमेशा असफल रहे क्योंकि रासायनिक रूप से किसी धातु को सोने में बदलना असंभव है। मान्यता ये है कि प्राचीन काल में भारत में एक पत्थर पाया जाता था जिसे पारस पत्थर कहते थे। इसके स्पर्श मात्र से लोहा सोने में बदल जाता था।
0: जी, लेकिन अब आधुनिक विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है कि आज के समय में परमाणु रिएक्टर के जरिए वैज्ञानिक कुछ धातुओं से सोना बना सकते हैं। लेकिन इस वैज्ञानिक प्रक्रिया में इतनी अधिक ऊर्जा और पैसा खर्च होता है कि 100 रुपए का सोना बनाने में लाखों रुपए लग सकते हैं।
1: एक बात और, शुद्ध सोना बहुत नरम होता है, इसीलिए उसे आकार देने के लिए उसमें तांबा, चांदी, जस्ता और निकेल जैसी धातुएं भी मिलाई जाती हैं। लेकिन एक बात तो है,
0: और वो ये है श्रोताओं कि जब आप सोना या स्वर्ण आभूषण देखते हैं तो याद रखिए, ये मूल रूप से पृथ्वी की वस्तु नहीं लेकिन अरबों वर्ष पहले हुई ब्रह्मांडीय घटनाओं का परिणाम है।
1: जी।
0: इसीलिए ये बहुत कीमती मानी जाती है। दूसरे शब्दों में,
1: आपके हाथ के सोने की अंगूठी कभी किसी तारे के फटने या किसी महाविस्फोट का हिस्सा रही होगी।
0: जी, तो श्रोताओं ये थी जानकारी अंतरिक्ष की मूल्यवान वस्तु सोने की। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से प्रश्न है, सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं?
0: आप अपना उत्तर हमें हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं और हमारे ईमेल पर भी। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। और हाँ,
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप हमें फॉलो करना ना भूलिए। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की,
0: तो सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, अरावली की कहानी।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 7 की सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है जिसमें अरावली पर्वत श्रृंखला की रोचक जानकारी दी गई है और बताया गया है कि पर्यावरण संरक्षण में इस पर्वतमाला की क्या भूमिका है।
0: अरावली की कहानी।
2: नमस्कार दोस्तों, रेडियो श्रृंखला पर्वत भी बोलते हैं मैं आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं सचिन और मेरे साथ हैं कुछ नन्हे मुन्ने साथी, यानी रिद्धि, रिदित, सोहम, नव्या और मनन, जो आज बहुत ही खुश हैं क्योंकि उन्हें जानी मानी भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर सुचिता ने आज अपने रेडियो शो में बुलाया है। तो आइए चलते हैं सीधे रेडियो प्रसारण केंद्र में।

0: जहां शुरू होने वाला है हमारा रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो बच्चों, डॉक्टर सुचिता के साथ साथ आप सबका भी हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
2: धन्यवाद सर।
0: तो करते हैं शुरुआत। डॉक्टर सुचिता, हम आज बात करने जा रहे हैं पर्वतों की। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि पर्वत आखिर है क्या, यानी हम उन्हें परिभाषित कैसे करें?
3: वाह, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, पर्वत वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। उन्हें खड़ी ढलान यानी चढ़ाई और संकरे शिखरों यानी चोटियों से पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। समझ में आया बच्चों?
1: यस मैम।
3: हाँ हाँ, क्या बात है
4: मैम।
3: हाँ बेटी,
4: आपने कहा कि पर्वत वे हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं।
3: बिल्कुल कहा।
4: हमारे गांव में भी कुछ ऐसे पथरीले स्थान हैं जो भूमि से थोड़े ऊंचे होते हैं, क्या उन्हें भी पर्वत कहेंगे?
3: नहीं रिद्धि, उन्हें पर्वत नहीं कहेंगे। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि कम ऊंचाई वाले ऊंचे ऐसे स्थान जहां कम खड़ी ढलाने और गोल आकार की चोटियां होती है, उन्हें पता है क्या बोलते हैं? पहाड़ी कहते हैं।
4: जी, पहाड़ी।
0: अरे वाह। अच्छा, लेकिन सुचिता जी, हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं ये जानने की कि आज हम भला किस पर्वत श्रृंखला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं।
3: जी सचिन जी, आज हम चर्चा करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। बच्चों, जानना है ना इसके बारे में?
1: यस मैम।
3: देखो, ऐसा माना जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है।
1: अच्छा।
3: पता है बच्चों, ये उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है और देश की जो भौगोलिक संरचना है ना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये।
1: अच्छा।
3: तो बच्चों, यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की बनावट को ध्यान से देखें, तो इसमें मध्यम दर्जे की बहुत सी ऊंची ऊंची चोटियां हैं जो ऊपर से देखने पर वो आरी की तरह दिखती हैं।
1: अच्छा, मैंने भी देखा है।
0: आरा और वली यानी अरावली। अरे वाह सुचिता जी, ये तो बड़ी रोचक बात बताई है आपने।
2: मैम, अरावली के बारे में कुछ और बताइए ना।
3: बिल्कुल, जरूर बताएंगे। आप जानते हैं इसके विस्तार के बारे में। इसकी कुल लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर और चौड़ाई है 10 से 100 किलोमीटर।
4: लंबाई 800 किलोमीटर, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है?
3: सोहम, ये गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक पहुँचती है और बीच में आने वाले राज्य हैं राजस्थान और हरियाणा। बताओ कौन कौन से?
1: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और फिर दिल्ली।
0: बहुत अच्छे, तो एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। ये हुई ना बात।
3: अब तुम्हें इसे हमेशा याद रखना है, ठीक है?
2: जी मैम,
4: जी मैम, हमेशा याद रखेंगे।
0: तो सुचिता जी, अब हमें ये भी तो बताइए कि गुजरात राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला आखिर शुरू कहाँ से होती है, क्योंकि हम देखें तो गुजरात राज्य तो खासा बड़ा है।
3: जी सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में अंबाजी नामक स्थान से शुरू होती है। एक बात और, माना जाता है कि ये पहले संभवतः हिमालय से भी ऊंची रही होगी, लेकिन अत्यधिक अपरदन के कारण धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम होती चली गई।
4: अपरदन? ये अपरदन क्या होता है?
3: वाह मनन, अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। अंग्रेजी में इसे पता है क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन।
1: सॉइल इरोजन,
3: बिल्कुल ठीक। अरावली पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटियां हैं गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। सेर और अचलगढ़ भी इसकी प्रमुख चोटियां हैं जो राजस्थान में ही हैं।
0: सुचिता जी, अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला का हमारे यहाँ जलवायु और पर्यावरण पर भला क्या असर पड़ता है?
3: सचिन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों जानना चाहोगे ना?
1: हाँ,
3: जी
1: मैम।
4: यस मैम।
3: अब अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के थार मरुभूमि को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है, यानी यदि अरावली न हो तो राजस्थान के थार का रेगिस्तान दिल्ली और यहाँ तक कि गंगा के मैदानों तक भी फैल सकता है।
4: यानी ये हमारी पहरेदार हुई।
3: हाँ रिद्धि बिल्कुल सही है। अरावली श्रृंखला उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से रोकती है। इतना ही नहीं, ये अपने क्षेत्र में भूजल का स्तर भी बनाए रखती है।
4: मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि पर्वतों से नदियाँ भी निकलती हैं, क्या अरावली से भी नदियाँ निकलती है?
3: सोहम, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं: बनास, साबरमती, लूनी और माही। और हाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत से वन्य जीवों की शरण स्थली है। मैं बताती हूँ, जैसे तेंदुआ, सियार, लोमड़ी, नीलगाय, सांबर, चीतल और जंगली सुअर इत्यादि।
0: अरे वाह सुचिता जी, देखिए अब ये तो आपने हमें बताया नदियों के बारे में और आसपास मिलने वाले जीव जंतुओं यानी पशुओं के बारे में, लेकिन अगर पक्षियों की बात करें तो?
3: सचिन जी, पक्षियों में यहाँ मोर, गिद्ध, सारस, चील, तोता, मैना इत्यादि बहुत अधिक पाए जाते हैं। एक और बात, यहाँ बहुत सारे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं, जिनमें मुख्य हैं तांबा, जस्ता, सीसा और लोहा। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
0: चिंता का विषय है? भला वो क्या?
3: सचिन जी, अब ये पर्वतमाला पर्यावरण के संकट से गुजर रही है।
0: ओह।
3: अब जैसे जंगलों का कटना, पानी के स्रोतों का सूखना
0: जी।
3: और इनके कारण वन्य जीवों का धीरे धीरे विलुप्त होना, इसीलिए अरावली को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, बचाओगे ना अरावली को?
1: जी मैम।
0: भाई वाह, तो बच्चों कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी?
1: बहुत अच्छी लगी।
0: तो साथियों, अब हमारे रेडियो शो पर्वतों की कहानी का आज का यह अंक होता है यही समाप्त। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां सबके लिए। डॉक्टर सुचिता, सोहम, रिदित, रिद्धि, नव्या और मनन, आप सभी का हमारी श्रोताओं की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। तो दोस्तों, इसी तरह से चलता रहेगा हमारा ये रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।
1: धन्यवाद सर।
4: धन्यवाद मैम।
5: साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम सुनते समय आपके मन में ये प्रश्न आया कि इस पर्वत श्रृंखला का नाम अरावली क्यों पड़ा? तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अरावली शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर हुई है, अरा और अवली। अरा का अर्थ है पर्वत की चोटी और अवली का अर्थ है कतार या श्रृंखला। इन दो शब्दों से मिलकर बना शब्द अरावली। तो साथियों, कुल मिलाकर अरावली शब्द का अर्थ है चोटियों की कतार या पर्वत शिखरों की श्रृंखला। ये नाम अरावली पर्वतमाला की भौगोलिक बनावट को दर्शाता है, जो लंबी चोटियों वाली पुरानी पर्वत श्रृंखला है।
0: अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को, जरा पता लगाइए कि भारत में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उनसे भला कौन कौन सी प्रसिद्ध नदियां निकलती हैं और वो कहां जाकर सागर में मिलती हैं, और फिर उन जगहों को भारत के मानचित्र पर अलग अलग रंगों से चिन्हित कीजिए और उनके बारे में संक्षेप में लिखिए।
5: अभी आपने सुना कार्यक्रम अरावली की कहानी, और आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है बांगुई।
6: ये कार्यक्रम अफ्रीका की एक लोक कथा पर आधारित है, जिसके द्वारा संदेश दिया गया है कि पर्यावरण को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। कार्यक्रम एक सुंदर नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

अफ्रीका महाद्वीप का नाम तो आपने सुना होगा। उसके पश्चिमी हिस्से में एक छोटा सा देश है घाना। विश्व के सबसे बड़े रेगिस्तान सहारा के निकट होने के बावजूद घाना में सूखे की नहीं बाढ़ की समस्या प्रबल रहती है। कई छोटी बड़ी नदियां

0: इस देश से होकर बहती है और इसे हरा भरा बनाए रखती है, लेकिन अक्सर इन नदियों में बाढ़ आ जाती है और गांव के गांव डूब जाते हैं। आज सुनते हैं व्हाइट वोल्टा नदी के किनारे बसे एक ऐसे ही गांव के आदिवासियों की कहानी।
1: नमस्कार भाई।
2: नमस्कार भाई। नमस्कार।
1: इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? अभी तो खेत में काम करने का समय नहीं हुआ।
2: अरे आज खेतों में नहीं, जंगल में काम करने जा रहा हूँ। ये देखो कुल्हाड़ी।
1: अरे ये क्या, हल वाले हाथ में कुल्हाड़ी लकड़ी काटने जा रहे हो? क्या नया घर बना रहे हो?
2: हाँ भैया, नया घर तो बन रहा है, लेकिन मेरा नहीं, अपने मुखिया बांगुई है ना, वही अपना नया घर बनवा रहे हैं।
1: मुखिया बांगुई का नया घर? लेकिन अभी कुछ ही बरस पहले तो उन्होंने नया घर बनवाया था।
2: तो क्या हुआ, उन्हें अपना वो नया घर अब पुराना और छोटा लगने लगा है। दरअसल जंगल की लकड़ी बेच बेच कर रईस हो गए ना, सो अपनी रईसी की शान दिखाने के लिए फिर नया मकान बनवा रहे हैं।
1: अच्छा तो ये बात है, मुखिया बांगुई ने ही पैसे के लालच में शहर के लोगों को जंगल से लकड़ी काटने की अनुमति दी है। तभी मैं कहूँ कि जंगल से आजकल दिन रात लकड़ी काटने की आवाज क्यों आती है, इस तरह तो जंगल के सारे पेड़ कट जाएंगे।
2: अरे और नहीं तो क्या, जंगल से जिस तरह से ये शहरी लोग दिन रात लकड़ी काट रहे हैं ना, देखना थोड़े दिनों में सारा जंगल साफ हो जाएगा। अरे जंगली जानवर गांव पर हमला करेंगे, नदी की धारा जंगल की रुकावट ना पाकर गांव की तरफ बढ़ने लगेगी।
1: और ये सब जानकर भी तुम कुल्हाड़ी लिए लकड़ी काटने जा रहे हो?
2: हाँ भैया, और क्या करूं, मेरे पास खेत तो है नहीं। मुखिया बानगुई के खेतों में काम करता था, लेकिन उन्हें अब खेती बाड़ी में कोई दिलचस्पी नहीं। उन्हें जंगल की कटाई से काफी पैसे मिल जाते हैं ना, बाल बच्चों का पेट पालने के लिए मैंने भी लकड़ी काटना शुरू कर दिया है भैया। फिर शहर के लोग लकड़ी काटने की मजदूरी भी अच्छी देते हैं।
1: पर तुम तो मुखिया के मकान के लिए लकड़ी काटने जा रहे हो?
2: हाँ, मुखिया का ये नया मकान शहरी लोग ही बनवा रहे है ना, मुखिया ने उन्हें जंगल से लकड़ी काटने की आज्ञा दी है, इसलिए वो लोग उन्हें ऊंची वाली चट्टान पर एक बहुत बड़ा तिमंजिला मकान बना कर दे रहे।
1: तिमंजिला मकान? वो तो बहुत ऊंचा होगा।
2: हाँ, हमारे तीन मकान एक के ऊपर एक रख दिए जाए, इतना ऊंचा होगा।
1: लेकिन ये मकान नदी के इतने नजदीक क्यों बनवा रहे हैं? अगर नदी में बाढ़ आ गई तो?
2: अरे भैया, बाढ़ आती है तो तबाही हमारे कच्चे झोंपड़ों की होती है ना, ऊंची चट्टान पर बने तिमंजिले मकान पर बाढ़ का क्या असर होगा भला? फिर हमें से क्या भैया, हमें तो अपनी मजूरी से मतलब है। अच्छा चलता हूं, बड़ी देर हो गई।
1: अच्छा भाई, मैं भी चलता हूं।
2: ए, कहां बड़े चले आ रहे हो? अरे जानते नहीं ये मुखिया बानगुई का मकान है?
3: जानते हैं भाई, जानते हैं, तभी तो अपनी फरियाद लेकर यहाँ आए हैं।
2: मैं कहता हूँ भाग जाओ यहाँ से।
3: अरे भाई ये भी तो
2: इस समय कोई फरियाद वरियाद नहीं सुनी जाएगी। अभी मुखिया जी बांसुरी बजा रहे हैं, और जब वो बांसुरी बजा रहे हो तब उन्हें तंग करने का हुक्म नहीं है।
3: लेकिन अगर मुखिया जी हमारी फरियाद नहीं सुनेंगे तो हम कहाँ जाएंगे भैया?
2: अच्छा भाई बोलो क्या बात है, बोलो।
3: मैं बोलूं? अच्छा अच्छा, देखो भैया तुम भी तो हम ही में से एक हो, गांव की हालत तुमसे छुपी नहीं है। मुखिया जी के सारे खेत खाली पड़े हैं, उनमें काम करने वाले मजदूर बेकार हो गए हैं। जिनके पास थोड़ी बहुत अपनी जमीन थी, जहाँ खेती करके थोड़ा अनाज हो जाता था, उन सारे खेतों में बाढ़ का पानी भर गया है भैया। बारिश के मौसम में लकड़ी की कटाई का काम भी बंद हो गया है। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं भैया, इसीलिए हम मुखिया जी के पास आए हैं।
2: अरे तो इसमें मुखिया जी क्या कर सकते हैं?
4: सुना है मुखिया जी के मकान के पूरे खंड में अनाज भरा है। अगर इस संकट के समय हम गरीबों को भी एक एक मुट्ठी अनाज मिल जाता तो
2: अच्छा। और मुखिया जी क्या फाके करे, मैं कहता हूँ भाग जाओ, भाग जाओ यहाँ से। बढ़िया।

0: एक बार की बात है, उस इलाके में मूसलाधार वर्षा हुई और लगभग 4 दिनों तक चलती रही।
1: मुखिया जी, मुखिया जी!
2: बदतमीज, ऐसे क्या चिल्ला रहे हो?
1: माफ कीजिएगा, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है कि...
2: ओहो, आप कुछ बोलो भी, क्या हुआ है?
1: गांव में चारों तरफ पानी भर गया है।
2: भरने दो।
1: गांव के सभी लोग, औरतें, बच्चे और मर्द गांव छोड़कर जा रहे हैं।
2: अरे तो जाने दो।
1: लेकिन मुखिया जी, इस मकान के चारों तरफ भी पानी पानी है, अगर हम निकल कर जाना भी चाहें तो भी नहीं जा सकते।
2: अरे बेवकूफ, हम यहाँ से जाएंगे ही क्यों? इस ऊंची चट्टान पर बने 3 मंजिले मकान में पानी आएगा कैसे? हमारे पास यहाँ क्या कमी है? अरे खाना है, पानी है, और ये हमारी बांसुरी भी है।
1: लेकिन मुखिया जी,
2: वो तुमसे कितनी बार कहा है कि जब हम बांसुरी बजा रहे हो तो हमें परेशान मत किया करो।
1: जी मगर
2: जाओ, चले जाओ यहाँ से।
3: मुखिया जी,
2: अब क्या है?
3: नीचे वाली मंजिल में बहुत पानी आ गया है।
2: तो यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ, सब चीजें दूसरी मंजिल पर ले जाओ, और हम 3री मंजिल पर जा रहे हैं।
4: मुखिया जी, मुखिया जी,
2: चैन नहीं लेने देंगे। अब क्या है
4: जी? वो दूसरी मंजिल पर भी पानी
2: चढ़ रहा है। अरे तो 3री मंजिल किस लिए है? देखो, सब सामान ऊपर ले जाओ, हम छत पर जा रहे हैं।
4: माफ कीजिएगा मुखिया जी, अब हम यहाँ नहीं रुक सकते। बूढ़ा कालू कह रहा है कि ये साधारण बाढ़ नहीं है, बल्कि नदी ने अपनी धारा बदल दी है। अब नदी इसी जगह से बहेगी, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। हम लोगों ने लकड़ी के तख्ते जोड़ जोड़ कर एक नाव तैयार की है, हम तो जा रहे हैं। आप चाहे तो हमारे साथ चल सकते हैं।
2: नालायक, डरपोक, अरे भाग रहे हो? इस महल को छोड़कर भाग रहे हो? जाओ, चले जाओ यहाँ से, जाओ तुम लोग, मैं यही रहूंगा।
4: जैसी आपकी मर्जी।
2: अरे ये तो सचमुच चला गया। कहीं वो बूढ़ा कालू ठीक ही तो नहीं कह रहा? क्या नदी ने सचमुच अपनी धारा बदल दी है? छत से देखता हूं मैं। ये कैसा भयानक दृश्य है! दूर दूर तक जहां नजर जाती है, पानी ही पानी, कहीं कोई नहीं, ना कोई आदमी, ना जानवर, ना खेत, ना जंगल। अगर अगर मेरे इस मकान की 3री मंजिल में पानी में डूब गई तो ये क्या? अरे ये क्या हो रहा है? नहीं, ये इतना मजबूत मकान भी गिर रहा है। भगवान, हे भगवान, अरे कहाँ जाऊं मैं? ये पानी में डूब रहा हूँ मैं। अरे मैं अपनी जान कैसे बचाऊं? अरे कोई है, अरे बचाओ, बचाओ मुझे, मैं डूब रहा हूँ मैं। नहीं, ये क्या? ये लगता है कोई पेड़ अब भी अपनी मजबूत जड़ें धरती पर धंसाए बैठा है। अगर किसी तरह मैं उसे पकड़ लूं तो मेरी जान बच सकती है। हाँ, मैं उसे पकड़ूंगा किसी तरह, मैं उसे पकड़ लूं। लेकिन ये पानी तो मुझे दूसरी तरफ बाहर ले जा रहा है। मैं कोशिश करूंगा, उस पेड़ तक जाने की कोशिश करूंगा मैं। वो पेड़,
4: आखिर पहुंच गया। यहाँ तो इस तरह के कितने ही पेड़ थे जो मैंने कटवा दिए, लेकिन ना जाने यही एक इकलौता पेड़ मुझे शरण देने के लिए कैसे बच गया। शायद मेरी आंखें खोलने के लिए, हाँ, शायद मेरी आंखें खोलने के लिए

0: बांगुई। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार। उमंग उमंग उमंग
2: उमंग। कब?
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी आकाशवाणी का जैसलमेर केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। इन समाचारों को हम जयपुर के आकाशवाणी केंद्र से रिले करेंगे।
4: आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से बोल रहे हैं। हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र है, एक बजने वाला है। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
5: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। डिजिटल इंडिया अभियान के आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर कहा है कि डिजिटल इंडिया विकसित और आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव है। उन्होंने आज सोशल मीडिया पर कहा कि पिछले 11 वर्षों में डिजिटल इंडिया अभियान ने गरीबों और वंचितों के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तथा देशवासियों के जीवन को अधिक सुगम बनाया है। उन्होंने कहा कि ये पहल देश में सुशासन, पारदर्शिता और डिजिटल सशक्तिकरण को नई दिशा दे रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि ई गवर्नेंस से प्रशासन और जनसेवाओं की पहुंच में व्यापक बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया अभियान और यूपीआई जैसी पहलों से आम नागरिकों को बहुत सुविधा मिली है तथा छोटे व्यापारियों और रेहड़ी पटरी कारोबारियों को भी इसका लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री आज जयपुर स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एआई और साइबर सिक्योरिटी प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा की गई कई महत्वपूर्ण पहलों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि राज्य में एआई और मशीन लर्निंग AIML नीति लागू की गई है। साथ ही राजस्थान संपर्क पोर्टल जन शिकायतों के निस्तारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
6: राजस्थान संपर्क आज प्रदेश भर में जन अभियोग निवारण का प्रभावी मंच बन चुका है। इस प्लेटफॉर्म पर हर महीने 2.5 से 3 लाख शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण हो रहा है। मैं खुद राजस्थान संपर्क पर आने वाली जन शिकायतों को सुनता हूँ और हर शिकायत का प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित भी करता हूँ। हमारा मानना है कि डिजिटल तकनीक कामकाज को केवल आसान ही नहीं बनाती बल्कि नागरिकों के जीवन को सुविधाजनक और बेहतर भी बनाती है।
5: इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्मार्ट परियोजना, ई मित्र, व्हाट्सएप सेवाओं तथा राजस्थान इनोवेशन चैलेंज पोर्टल का शुभारंभ किया। उन्होंने कॉफी टेबल बुक का भी अनावरण किया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जीराम जी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है। इस पहल में विश्वास व्यक्त करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इससे गांव में आजीविका के नए अवसर पैदा होंगे, महिला सशक्तिकरण और स्वावलंबी ग्रामीण भारत के लक्ष्य को बढ़ावा मिलेगा। दौसा जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर आज सुबह हुए हादसे की विस्तृत जाँच के लिए जिला प्रशासन ने जांच दल का गठन किया है। जिला कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा ने दल को दुर्घटना के सभी पहलुओं की गहन जांच कर जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि आज अल सुबह धनावड़ा के पास एक स्लीपर बस और ट्रेलर की टक्कर के बाद आग लगने से बस में सवार 8 लोगों की मृत्यु हो गई जबकि 20 से अधिक लोग घायल हो गए थे। घायलों का उपचार विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। प्रदेश के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यान आज से पर्यटकों के लिए बंद हो गए हैं। मॉनसून और वन्य जीवों के प्रजनन काल को देखते हुए 30 सितंबर तक पर्यटन गतिविधियों पर अस्थायी रोक रहेगी। इस दौरान वन्य जीवों के लिए अनुकूल वातावरण बनाए रखने और वन क्षेत्रों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पाली जिले के जवाई वन्य जीव क्षेत्र में 1 अक्टूबर से फिर से सफारी का संचालन हो सकेगा। इसी तरह सरिस्का टाइगर रिजर्व का कोर एरिया भी पर्यटकों के लिए बंद होगा, हालांकि बफर क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियां जारी रहेंगी। उधर सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में पिछले वर्ष 1 अक्टूबर से शुरू हुआ पर्यटन सत्र कल समाप्त हो गया। बीते पर्यटन सत्र में 6,77,000 से अधिक देशी विदेशी पर्यटकों ने राष्ट्रीय उद्यान का भ्रमण किया, जिससे राज्य सरकार को लगभग 70 करोड़ रुपए की आय प्राप्त हुई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: आकाशवाणी का ये जैसलमेर केंद्र है। FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर दोपहर के 1:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं महिलाओं का कार्यक्रम मूमर।

नमस्कार सखियों, मैं हूँ सोनल और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम मूमल। बहनों, गर्मियों का मौसम अपने चरम पे है और ऐसे में हम हमेशा यही सोचते हैं, हर दिन एक नया स्ट्रगल होता है कि आज डिनर में क्या बनाएं या लंच में क्या बनाएं या ब्रेकफास्ट कैसा होना चाहिए, क्योंकि गर्मियों का मौसम है तो हम सोचते हैं कि कुछ ऐसा खाएं, कुछ ऐसा लाइट बनाएं जो हमारे डाइजेशन के लिए भी अच्छा हो और साथ ही साथ वो ईजीली बन भी जाए। लेकिन सवाल ये होता है कि आप अपने डाइट में क्या चीज़ें शामिल कर रहे हैं जिससे आपको भरपूर मात्रा में पोषण भी मिल सके, इम्यूनिटी आपकी बूस्ट हो और आपको गर्मी भी, बहुत ज़्यादा गर्मी का भी एहसास नहीं हो, क्योंकि गर्मियों के दिन में भारी खाना खाना बहुत ही ज़्यादा एक मुश्किल वाला काम हो जाता है, क्योंकि इससे डाइजेशन आपका ख़राब होता है। इसलिए पेट को ठंडा रखने के लिए और एनर्जी बनाए रखने के लिए जो आपकी मौसमी सब्जियाँ हो गई या फिर दही हो गया, जैसे मौसमी सब्जियों में खीरा ककड़ी है, अंकुरित अनाज है जैसे स्प्राउट्स हैं, नींबू पुदीना, इनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए क्योंकि आसानी से डाइजेस्ट भी हो जाता है और शरीर को हाइड्रेट भी रखते हैं, क्योंकि गर्मियों के मौसम में हाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी है। इस मौसम में बॉडी बहुत जल्दी डिहाइड्रेट होती है, इसीलिए लगातार सारे दिन थोड़ी थोड़ी देर के अंतराल पे सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो तो है पहला तो पानी, कि आप पानी की मात्रा अपनी बॉडी को कितना दे रहे हैं। तो हाइड्रेट रहें, पानी पीते रहें हर थोड़ी थोड़ी देर में। इसके अलावा जैसे लिक्विड में आप छाछ ले सकते हैं, छाछ बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन होता है आपकी बॉडी के लिए, ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और साथ ही साथ आपको हाइड्रेटेड भी रखता है। इसके अलावा आप नींबू पानी ले सकते हैं, नींबू पानी के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जैसे आम पन्ना है, नारियल पानी है, बहुत सारे जूसेस और भी जो कोशिश आप ये करिए बहनों कि जो मौसमी फ्रूट्स आते हैं या मौसमी जो सब्जियां आती हैं उनका यूज़ करें, क्योंकि वो आपके हेल्थ के लिहाज से बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, हाइड्रेटिंग और रिफ्रेशिंग। सूप सलाद भी आप ले सकते हैं, खीरे और पुदीने का रायता बना सकते हैं, इसके लिए बहुत ही ईजी है। ताज़ा आप दही ले लीजिए, कद्दूकस किया हुआ खीरा हो, पुदीना हो, जीरा पाउडर है, ये सब मिला के आप बहुत ही झटपट बनने वाला ये रायता बना सकते हैं। ये पेट को तुरंत ठंडक देता है और साथ ही साथ आपके आपको टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छा लगेगा

और डाइजेस्ट भी इजीली हो जाएगा। ऐसे ही आप ककड़ी का सलाद बना सकते हैं, पतली कटी हुई ककड़ी, टमाटर, नींबू का रस और काला नमक डाल के। ये झटपट इजीली सलाद बन जाता है। और खाने से पहले अगर आप सलाद लेते हैं भरपूर मात्रा में, तो फिर आपको खाने की भी इतनी ज़्यादा आवश्यकता फील नहीं होती है। आपका जो पेट है वो इसी से भर जाता है और इसमें भरपूर मात्रा में आपको न्यूट्रिशन भी मिल जाते हैं, और साथ ही साथ ककड़ी में बहुत ज़्यादा पानी होता है तो इससे आप हाइड्रेट भी रहते हैं। और जो लोग डाइट करते हैं, जो लोग डाइट पे जाते हैं, उनके लिए ये सलाद बहुत ही अच्छा है। इसे आप डिनर में भी ले सकते हैं। इसके अलावा सखियों, आप फ्रेश फ्रूट का सलाद भी ले सकते हैं, जैसे सेब है, तरबूज है, आम है। इन सबके साथ में नींबू और शहद की आप ड्रेसिंग करिए और उसके साथ में बहुत ही झटपट ये सलाद बनके रेडी हो जाता है। तो फ्रूट सैलेड भी आप अपने सुबह ब्रेकफास्ट में आप शामिल कर सकते हैं। अगर हम बात करें सखियों पेट भरने वाले हल्के स्नैक्स की, क्योंकि गर्मियों में हम चाहते हैं कि हम बहुत हल्का हल्का कुछ खाएं और साथ ही साथ हम कुछ लिक्विड जो है वो ज़्यादा मात्रा में लेते रहें, तो हल्का कुछ अगर हम नाश्ते की बात करते हैं, क्योंकि स्नैक्स जो है, नाश्ता जो है, वो हमारी बॉडी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। कई बार हम देखते हैं, हम जो बहनें होती हैं वो इतना काम में ज़्यादा बिजी हो जाती हैं, सवेरे की जो भागदौड़ होती है उसमें जो अपना ब्रेकफास्ट है वो स्किप कर देती हैं। तो ये जो आपका स्टेप है ब्रेकफास्ट को स्किप करना, ये आपकी हेल्थ के लिहाज से आगे चल के आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरे वाला साबित हो सकता है, क्योंकि इससे बहुत सारे जो हेल्थ इश्यूज हैं भविष्य में आपको आ सकते हैं, जैसे शुगर है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो खाली पेट रहने से हमें हो जाती हैं। तो कोशिश करिए कि खास करके गर्मी के मौसम में बहनों, आप बिल्कुल भी खाली पेट नहीं रहिए। अपना जो काम है, काम का रूटीन है वो तो आप करेंगी ही, लेकिन साथ ही साथ हल्का फुल्का कुछ स्नैक्स है वो भी आप घर पे इजीली बना के उसे आप ले सकती हैं। जैसे दही पोहा है, भीगे हुए पोहों में ठंडा दही, चीनी, नमक, चीनी या नमक जो भी आपको अच्छा लगे, और थोड़े से अनार के दाने आप मिलाएं। ये ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। इसके अलावा ओट्स की जो छाछ है, क्योंकि सखियों ओट्स हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, आप ओट्स को वैसे भी डिनर में भी ले सकते हैं, क्योंकि डिनर में बहुत ही एक बेहतरीन हल्का ऑप्शन है, जल्दी से डाइजेस्ट होते हैं और इसमें फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है ओट्स में, जिससे हमारा पेट भी जल्दी भर जाता है और साथ ही साथ अगर आप डाइट पे हैं तो वेट लॉस करने में भी आपको बहुत ही ज़्यादा मदद मिलती है। तो ओट्स की छाछ जो है वो एक नया ऑप्शन है। सादे जो ओट्स होते हैं उनको छाछ में भिगो के प्याज, धनिया और हरी मिर्च के साथ में आप पका सकते हैं, तो ओट्स की ये छाछ तैयार हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मूंग दाल का जो चीला है वो भी आप बना सकते हैं। बिना तेल के बने मूंग दाल के चीले से आपको प्रोटीन भरपूर मात्रा में मिल जाता है। बहुत ही हल्का ऑयल आप लगाएं और उसके साथ में जो चीला है वो बनके आप बना के रेडी कर सकते हैं, तो इससे आपकी जो बॉडी को भरपूर मात्रा में प्रोटीन भी मिलेगा और साथ ही साथ ये लाइट भी है तो वेट लॉस में भी मदद करेगा। डिनर की सखियों अगर हम बात करें तो जीरा राइस के साथ में मूंग दाल की आप खिचड़ी बना सकते हैं। जैसे कम मसालों के साथ बनी पतली जो मूंग दाल की खिचड़ी होती है, जिसे देसी घी और जीरे का जिसमें तड़का लगा हुआ हो वो भी आप अपने डिनर में इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें नींबू चावल की, तो चावल में नींबू का रस, राई, करी पत्ता, मूंगफली का तड़का लगा के बनाया ये बहुत ही हल्का और चटपटा सा जल्दी से बनने वाली ये रेसिपी है, आपके बच्चों को भी पसंद आएगी और ये डिनर में आपको लाइट भी फील करवाएगी। सबसे अच्छा ऑप्शन तो अगर हम सखियों बात करें तो दही और चावल का है। पके हुए जो चावल हैं उनमें ठंडा दही डालिए। कई बार हम खाना बनाते हैं तो दिन में चावल बच ही जाते हैं, तो उसका आप रीयूज भी ले सकते हैं, जिससे जो आपका खाना है वो वेस्ट भी नहीं होता है। कई बार हम बहुत सारा खाना वेस्ट कर देते हैं, यूं ही फेंक देते हैं बाहर, उसका रीयूज नहीं करते, तो खाने का भी रीयूज करना सखियों बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग इतना मेहनत से वो खाना बनाते हैं और उसको यूं ही फेंक देना ये गलत है। तो आप इस तरीके से पके हुए चावल में ठंडा दही, नमक और राई का तड़का लगा के एक ये साउथ इंडियन डिश भी अपने घर पे रेडी कर सकते हैं। ये गर्मियों में सबसे बेहतरीन है आपके हेल्थ के लिए। और जिन सखियों को आजकल हम देखते हैं B12 का प्रॉब्लम रहता है, एक्चुअली बहनों बहुत सारी सखियाँ जो हैं वो आजकल बहुत सारी कमियों को फील करती हैं, जैसे कि एनीमिक होती हैं, उनमें ब्लड की मात्रा, आयरन की मात्रा होती ही नहीं है, B12 को फेस करती हैं, B12 की मात्रा बिल्कुल नहीं है बॉडी में,
और कैल्शियम नहीं है, तो ये जो दही और चावल का बेहतरीन ऑप्शन है जिन सखियों को B12 की कमी है। इसके अलावा नींबू पुदीने की शिकंजी है, बहुत ही अच्छी है, काला नमक डाल के आप इसको ले लीजिए। बेल का शरबत है, पेट की गर्मी को बहुत ही इजीली वो दूर करता है। और सत्तू का शरबत तो बहुत ही फायदेमंद है। भुने हुए चने में, चने का जो सत्तू होता है उसमें पानी डालिए, नींबू, जीरा पाउडर और छोटा छोटा जो प्याज होता है वो कटा हुआ आप डाल दीजिए। ये तैयार हो जाता है ड्रिंक जो आपको तुरंत एनर्जी देता है। और सत्तू जो होता है चने का, उसमें बहुत ही भरपूर मात्रा में प्रोटीन भी होता है, तो ये आपकी प्रोटीन की कमी को भी पूरा करता है। क्योंकि सखियों गर्मी का जो मौसम होता है और खान पान जो होता है सर्दियों के मौसम से बिल्कुल ही अलग अलग होता है। हमें भूख तो लगती ही है और व्यस्त दिनचर्या के कारण हमें ऊर्जा बनाए रखने के लिए एक्स्ट्रा पोषण भी चाहिए होता है और ऊर्जा भी चाहिए होती है। लेकिन हम सोचते हैं कि सर्दियों में जो हम भारी हैवी सूप लेते हैं या कुछ और चीज़ें लेते हैं जो हम हमारी बॉडी के लिए हैवी होती है, उससे कुछ हम उल्टा चाहते हैं कि कुछ इजीली हमें झटपट से बनने वाला और इजी जो रेसिपीज हैं वो हमें मिल जाए, जो हमें हमारी बॉडी को ठंडक भी दे और साथ ही साथ एनर्जी भी दे। तो ये कुछ रेसिपीज हैं, ये आपको बहुत ही फ़ायदा देंगी और बहुत ही मदद करेंगी आपके वेट लॉस में, आपको फिट रखने में, आपको एनर्जी देने में और आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने में। तो सखियों बातें हम आपसे यूं ही जारी रखेंगे, चलिए सुनते हैं एक प्यारा सखी।

0: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: सखियों, हम बात कर रहे थे कि आप गर्मी में किस तरीके से जो हल्की फुल्की डिशेज हैं उनसे आप अपना पोषण भी ले सकते हैं, और साथ ही साथ ये जो रेसिपीज हैं इतनी इजी होती हैं कि वो झटपट से बनके रेडी भी हो जाती हैं और आपके हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी हैं। तो अपनी हेल्थ का सखियों आप खूब सारा ख्याल रखिए, भरपूर मात्रा में हाइड्रेट रहें, क्योंकि पानी पीना, हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि हम काम में इतना व्यस्त होते हैं कि पानी पीना ही भूल जाते हैं, और इसके अलावा भी जैसे आप काम से फ्री होकर जब अपने कमरे में बैठते हैं तो आजकल हर किसी के यहाँ पे एयर कंडीशनर होते हैं, एसी होते हैं, तो एसी की वजह से हमारी जो बॉडी है वो पानी मांगती भी नहीं है, तो हम उस कंडीशन में भी पानी पीना, बॉडी पानी देना जो बॉडी को, हम भूल जाते हैं, तो पानी की जो कमी है वो होने लगती है। और जो अक्सर देखते हैं हम एसी की वजह से हमारे जो बॉडी का नेचुरल जो वाटर होता है वो भी, बॉडी भी जो हमारी है वो डिहाइड्रेट हो जाती है। तो ऐसे में थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना सखियों बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं तो हाइड्रेट रहें, और साथ ही साथ जो दूसरे लिक्विड हैं, जूस हैं, वो भी आप लेते रहें, और जो रात को अपनी जो डाइट है रात को खास करके बहुत ही लाइट रखिए, क्योंकि रात को मिर्च मसालों वाला खाना खाना या फिर बाहर का खाना खाना, पैकेट वाला जो फूड है वो खाना कई बार आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही गड़बड़ हो सकता है। खास करके अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनकी हेल्थ का विशेष ख्याल रखना ऐसी गर्मियों में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं अक्सर वो बाहर का खाना खाने की जिद करते हैं, और ऐसे में जो बाहर के फूड होते हैं

खाना जो होता है बाहर का, हमें पता नहीं होता है उसकी जो ग्रेवी है वो कब की रेडी है, या जो पैकेजिंग जो फूड आते हैं वो कब के पैक्ड हैं। तो ऐसे में फूड पॉइजनिंग का खतरा भी बहुत हद तक बढ़ जाता है। और ख़ास करके जब हम बच्चों की बात करते हैं तो बच्चों की सुरक्षा बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि आपके जो बच्चे होते हैं उनका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो बहुत ही ज़्यादा वीक होता है, क्योंकि बच्चे हैं तो इतनी उनमें इम्यूनिटी नहीं होती है। तो ऐसे में जो बाहर का खाना अभी गर्मियों के मौसम में आप अवॉइड करें। अगर बच्चे को जो कुछ अच्छा लगता है तो सप्ताह में एक दिन ऐसा फिक्स कर लीजिए, तो वो जो उसके मनपसंद का खाना है उसे आप घर पे ही साफ सफाई से और अच्छे से बना के दे पाएँ, क्योंकि वो आपके हाथ का बना हुआ होगा तो वो साफ़ सुथरा होगा। इसीलिए जो कुछ भी आपका बच्चा चाहता है, डिमांड करता है, उसे आप वीक में ऐसी जो चीज़ें हैं वो एक दिन फिक्स करके ज़रूर बना के दें। साथ ही साथ बाहर का जितना भी खाना है वो खिलाने से बचें, खास करके ये जो चिप्स और जो पैकेजिंग वाली जो चीज़ें होती हैं ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है आपके बच्चों की हेल्थ के लिए। तो और बच्चों को भी धीरे धीरे जैसे वो छोटे होते हैं तो उनको भी हेल्दी जो चीज़ें हैं वो खिलाने की आदत डालिए, सैलेड हो गए और इसके अलावा हरी जो सब्जियां हैं, मौसमी फ्रूट्स जितने भी हो गए या फिर नट्स हो गए, ये जो चीज़ें हैं आपके बच्चे की जो डाइट में आप शुरू से शामिल करिए। अक्सर हम देखते हैं कि फिर वो बच्चे जो है आपके वो बहुत सारी चीज़ें खाने में आनाकानी करते हैं, खास करके सब्जियाँ और फ्रूट्स बच्चे खाना ही नहीं चाहते हैं, वो बाहर का खाना खाना चाहते हैं और जो ये चीज़ें हैं वो खाने से बचते हैं, क्योंकि आपने शुरू से ही उनको खिलाने की आदत नहीं डाली होती है। तो आपके बच्चे की हेल्थ अच्छी रहे, इम्यूनिटी बूस्ट रहे उसकी, इसीलिए ज़रूरी है कि उनके बचपन से ही आप उन्हें ये सब चीज़ें जो है थोड़ी थोड़ी मात्रा में खिलाने की आदत डालेंगी तो बड़े होकर उनके लिए बहुत सारी चीज़ें ईजी हो जाएंगी। और आप उनके साथ में बैठ के ये सब जो चीज़ें हैं वो खुद भी अपनी डाइट में लें, ताकि आप भी जो हैं सारे घर का ख्याल रखती हैं। खास करके हम बहनों की बात जब करते हैं, बहनों की बात आती है तो हम लोग पूरे परिवार का ख्याल रखते हैं लेकिन अपना नहीं रखते, और बहुत सारी प्रॉब्लम को फिर अर्ली एज में ही जो महिलाएं हैं वो फेस करने लगती हैं। आफ्टर अगर 40 की बात करें तो फिर तो बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं हमारे हेल्थ को लेके वो बहुत ज़्यादा मात्रा में एकदम से ही हमें फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इतना काम कर लिया होता है या हमारी बॉडी को बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं दिया होता है, और साथ ही साथ जितनी भी डाइट हमारी हेल्थ के लिए ज़रूरी है वो हम लेते नहीं हैं, और फिर वो चीज़ें हैं वो आफ्टर 40 की जो महिलाएं हैं उनको एकदम से फेस करनी पड़ती है। बहुत ज़्यादा देखते हैं हम आयरन की कमी जल्दी होने लगती है या फिर कैल्शियम की कमी होने लगती है, तो ये चीज़ें ना हो इसके लिए भी अपनी जो डाइट है वो बहुत अच्छी बना के रखें। और एक जो चीज़ मेन जो प्रॉब्लम आती है वो है मोटापे की बीमारी। मोटापा भी बहनों एक बीमारी का ही रूप है। जब भी आप किसी डॉक्टर को के पास जाते हैं तो सबसे पहले वो आपको वेट लॉस करने की ही सलाह देते हैं, क्योंकि जो सारी प्रॉब्लम्स हैं जितनी भी जो बीमारियां हैं वो मोटापा ही अपने साथ लेके आता है। तो ये कोशिश करें कि अपने डाइट को आप सुधारिए, हल्की फुल्की चीज़ें जो है अपनी डाइट में शामिल करिए, खास करके अपने डिनर को तो बहुत हल्का रखें और 8 बजे से पहले ही कोशिश करें कि आपका जो डिनर है वो कंप्लीट कर लीजिए आप, और उसके अलावा अपनी बॉडी को रेस्ट दीजिए। और 1 घंटा अगर कोशिश करें तो 1 घंटा नहीं तो आप आधे घंटे से स्टार्ट करिए। अपनी बॉडी के लिए व्यायाम बहुत ज़रूरी है, वो किसी भी तरीके का हो, चाहे आप योग करती हो या फिर आप जिम जाती हो या फिर आप वॉक करती हो, मेडिटेशन करती हो, किसी भी तरीके से अपनी बॉडी के लिए फिजिकली एक्सरसाइज और मेंटली एक्सरसाइज दोनों बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोनों ही रूप से महिलाएँ अक्सर जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेस करती हैं, चाहे वो मेंटली हो चाहे वो फिजिकली हो। इसीलिए फिट रहना है तो आपको योगा का सहारा लेना होगा, प्राणायाम करिए बहुत अच्छी चीज़ है, और साथ ही साथ अपने जो दिन की शुरुआत है उसको आप आधा घंटा अपने लिए दीजिए बस, और उसमें आप चाहे जो भी करना चाहें वो आप कर सकते हैं। मेडिटेशन बहुत ही एक अच्छी चीज़ है, आपकी मानसिक शांति को भी बहुत अच्छा बना के रखता है, क्योंकि आजकल हम लोग बहुत सारी चीज़ों को फेस करते हैं। बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो वर्किंग भी होती हैं तो वर्क प्लेस जो होता है उनका उसका भी टेंशन होता है, साथ ही साथ घर का भी टेंशन होता ही है, तो ऐसे में दोनों को हैंडल करना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए ज़रूरी है खुद को समय देंगी तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो लाइफ में ईजी हो जाएंगी। अपने लिए समय निकालें और जो चीज़ें आपको अच्छी लगती है, जो चीज़ें आप करना चाहती हैं वो आप करिए, जिनमें

क्योंकि अगर हम अभी के समय की बात करें तो हम बहुत सारे जो लोग हैं, खास करके जो लोग बड़े शहरों में रहते हैं, वो पॉल्यूशन को बहुत ही ज़्यादा फेस करते हैं, और पॉल्यूशन की वजह से बहुत सारी जो बीमारियां हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम है, वो हमें अर्ली एज में ही हो जाती हैं। तो ऐसे में पॉल्यूशन को रोकना, तो उसमें सबसे बड़ा कारण ये भी होता है कि जो पेड़ पौधे हैं वो हमारे पारिस्थितिकी जो तंत्र है, इकोसिस्टम जो है, उसका मुख्य आधार होते हैं। वो न केवल हमें ऑक्सीजन, फ्रूट्स और जितनी भी तरह की जो औषधियां हैं वो देते हैं, बल्कि जितना भी जो जलवायु का जो चक्र होता है उसको नियंत्रित करते हैं। बारिश को लाने में, मिट्टी के कटाव को रोकने में भी जो पेड़ हैं वो बहुत ही जो मेन जो भूमिका है वो पेड़ों की रहती है। और पेड़ों की कटाई से बहुत सारी चीज़ें जो है वो आजकल के समय में बिगड़ती जा रही हैं। पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता जा रहा है और पेड़ों की जो कटाई है वो भरपूर मात्रा में लोग अपने फ़ायदे के लिए करते जा रहे हैं। तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। कि और अगर हम इस सप्ताह की बात करें तो वन महोत्सव, ये जो सप्ताह है ये 1 जुलाई से चालू होकर 7 जुलाई तक मनाया जाता है। ये एक वार्षिक वृक्षारोपण उत्सव है सखियों। इसका जो मुख्य उद्देश्य जो है, आम जनता के बीच में पेड़ों का और जंगलों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, पर्यावरण का संरक्षण करना और अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने के लिए ही या फिर लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए ये जो वन सप्ताह है, वन महोत्सव सप्ताह है, वो हम मनाते हैं। इसकी जो अगर इतिहास की बात करें सखियों, तो वन महोत्सव की शुरुआत वर्ष 1950 में तत्कालीन केंद्रीय कृषि और खाद्य मंत्री डॉक्टर के एम मुंशी के द्वारा की गई थी। ये एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन के रूप में शुरू किया गया था ताकि देश के हरित आवरण को बढ़ाया जा सके। हर जो जितने भी लोग हैं वो इस चीज को समझ सकें कि पेड़ पौधे जो है हमारे जीवन के लिए कितने जरूरी हैं। एक्चुअली अगर हम अपने जीवन की बात करें तो पेड़ पौधों के बिना तो सखियों जीवन की कल्पना करना भी शायद मुश्किल है, क्योंकि ऑक्सीजन की बात करते हैं हम तो हमें पेड़ पौधों से ही मिलती है। बारिश को लाने में भी इन्हीं का ही रोल होता है, पेड़ पौधों का। तो बहुत ज़रूरी है हर किसी को अपने जीवन में 1 या 2 पेड़ को जरूर लगाने चाहिए, और अपने जो आसपास के जितने भी लोग हैं उनमें भी जागरूकता बढ़ानी चाहिए। और ऐसे जो कार्यक्रम चलाती है अगर हमारी सरकार, ऐसे जो ये जो सप्ताह है कि खास करके इसीलिए हम सेलिब्रेट करते हैं कि जिन लोगों को नहीं पता है, जिन लोगों को जानकारी नहीं है इसकी, वो भी आगे बढ़ सकें इन मामले में और अपनी जो मदद जो है वो कर सकें, और आसपास के लोगों को भी इस तरफ प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो भी पेड़ लगाएं और पेड़ों की जो कटाई है वो रुक सके। बात करें कि अगर जुलाई में ही क्यों मनाते हैं, तो भारत में मानसून आमतौर पर जुलाई के पहले सप्ताह में शुरू होता है, और इस दौरान बारिश और मिट्टी में जो नमी की मात्रा पेड़ों के रोपने और उनके पनपने के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर होती है। इसीलिए ये जो वीक है हम इसी जुलाई में ही सेलिब्रेट करते हैं। इस दौरान जो है, इस सप्ताह के दौरान पूरे देश में बहुत सारे कार्यक्रम जो हैं इससे रिलेटेड वो आयोजित किए जाते हैं। सरकारी विभागों, स्कूलों, कॉलेजों और गैर सरकारी संगठनों के द्वारा बहुत ही बड़े पैमाने पर पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। लोगों को वनों की कटाई से होने वाले नुकसान, ऑक्सीजन की कमी और जलवायु परिवर्तनों के प्रभावों के बारे में इसमें शिक्षित किया जाता है, ताकि लोगों को पता चल सके कि पेड़ पौधों की कटाई से हमारे जीवन को कितना नुकसान पहुंच रहा है, जलवायु हमें नहीं मिल पा रही है, ऑक्सीजन की जो कमी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। बड़े शहरों में तो इवन रहना भी सखियों मुश्किल हो गया है, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है, क्योंकि हर किसी के घर में आजकल AC होते हैं, 4-व्हीलर होते हैं। तो ये चीज़ें भी हैं, ये भी जो पॉल्यूशन का लेवल बढ़ाती है। और ऐसे में जब वृक्षों की, पेड़ पौधों की कटाई हो जाती है तो ऑक्सीजन की कमी होना लाजमी की बात होती है। इस दौरान पीपल, नीम, बरगद, आम जैसे स्थानीय और देशी जो पेड़ हैं उनको लगाने पर विशेष जोर दिया जाता है, जो पर्यावरण और स्थानीय जीव जंतुओं के लिए सबसे अच्छे माने जाते हैं। तो सखियों बहुत ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों को समझ सकें, जिनसे हमारी प्रकृति चलती है। ये हमारी प्रकृति का, हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, अभिन्न हिस्सा है। तो ज़रूरी है कि हम भी इसमें सहभागिता अपनी दें, पेड़ पौधे लगाएं और अपने आसपास के जितने भी लोग हैं उनको भी जागरूक करें कि वो भी इस दिशा में आगे बढ़ सकें। तो सखियों बातें आपसे हम यही जारी रखेंगे। चलिए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

क्योंकि अगर हम गर्मी के मौसम की बात करें तो गर्मियों का जो मौसम है अपने साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स को लेके आता है। अभी तो हमने आपसे बात की थी आपकी गर्मियों के मौसम में किस तरीके की डाइट होनी चाहिए, कैसे आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना चाहिए, लेकिन इन सब चीज़ों के अलावा अगर हम बात करें अपनी स्किन की, तो गर्मियों में जो अपनी स्किन को फ्रेश और ग्लोइंग रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी होती है। कुछ छोटे छोटे टिप्स भी इनमें होते हैं कि कैसे आप इस गर्मी के मौसम में अपनी स्किन को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं, ग्लोइंग बना सकते हैं। तो पहले तो सबसे पहले तो जो बात आती है वो यही है कि खूब सारा जब आप पानी पियेंगी तो आपकी बॉडी ड्राइनेस फील नहीं करेगी, वो हाइड्रेट रहेगी, तो आपकी जो स्किन है वो नेचुरल ही ग्लो करेगी। अगर इसके साथ ही दूसरी चीज़ों की बात करें तो हम अक्सर एक जो चीज़ है उसको या तो यूँ कहें कि अवॉइड कर देते हैं या उसको सीरियसली लेते ही नहीं हैं, वो ये है कि वो हम सनस्क्रीन को लेके बिल्कुल ही जागरूक नहीं हैं। जबकि अगर हम हमारे यहाँ के क्लाइमेट की बात करें तो हमारा यहाँ का जो वेदर है वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई है और साथ ही साथ जो सन रेज है

वो सीधे पड़ती है, तो जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा होता है, और जिससे हमारी जो स्किन की बहुत सारी जो प्रॉब्लम है वो हमें फेस करनी पड़ती है। इसीलिए जरूरी है कि गर्मियों में अपनी जो स्किन है आपकी, उसका आप विशेष ख्याल रखें। अब चाहे आप घर के बाहर जाएं या नहीं जाएं, उस कंडीशन में भी सनस्क्रीन आप जरूर अप्लाई करें। वैसे तो आप घर में भी लगाना ही है आपको सनस्क्रीन, लेकिन अगर आप घर में नहीं भी लगा पा रही हैं, तो आप जब बाहर जाते हैं तो सनस्क्रीन को अपने दिनचर्या का एक हिस्सा जरूर बनाएं। दिन में हल्के फेस वॉश से 2 बार अपना फेस वॉश करें, हाइड्रेशन के लिए खूब सारा पानी पिएं, और केमिकल फ्री गुलाब जल को टोनर की तरह आप यूज करें। गर्मियों में धूप, पसीने और धूल से बचने के लिए कुछ छोटे छोटे जो रूटीन हैं वो अपनी दिनचर्या का उन्हें आप हिस्सा बनाएं। जैसे कि सबसे पहले सनस्क्रीन लगाएं, कम से कम अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो कम से कम 20 मिनट्स पहले आप सनस्क्रीन अप्लाई करिए। यहाँ की जो गर्मी है उसको देखते हुए 50+ का SPF जो है वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपके धूप की जो जितने भी हानिकारक किरणें होती हैं उनसे आपको सेव करता है और टैनिंग से बचाता है। पसीने और चिपचिपाहट को दूर करने के लिए दिन में कम से कम 2 बार अपने स्किन टाइप के अनुसार माइल्ड जो फेस वॉश हैं उनको आप यूज़ करिए। गुलाब जल का यूज़ करिए, नेचुरल टोनर का काम करता है। साथ ही साथ एक चीज़ जो हम बहुत ज़्यादा स्किप करते हैं वो है मॉइस्चराइज़र, और ये मॉइस्चराइज़र को स्किप करना आगे चल के आपकी स्किन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स लाता है। जल्दी आपकी फाइन लाइन्स होने लग जाती हैं, बुढ़ापा आपको जल्दी आने लगता है। तो जो दो चीज़ें हैं, सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज़र, इनको आपको अपनी जो डेली जो दिनचर्या है उसमें आपको शामिल करना ही है। भरपूर मात्रा में नारियल पानी पिए, दिन भर में 3 लीटर पानी पिए। इसके अलावा तरबूज और नींबू पानी जैसी चीज़ों को भी आप अपनी डाइट में अगर शामिल करेंगी तो भरपूर मात्रा में इससे आपको पानी मिलता रहेगा। घरेलू फेस पैक बना सकते हैं, खास करके उन लोगों के लिए घरेलू फेस पैक बहुत ज़्यादा काम करते हैं जिन लोगों की स्किन का जो टाइप है वो ऑयली होता है, क्योंकि उन लोगों को पिंपल से बचने के लिए ख़ास ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, और बाहर के जितने भी जो प्रोडक्ट होते हैं बहुत ज़्यादा उनमें केमिकल होते हैं। इसीलिए कोशिश करिए कि आपकी किचन में से जो गुणों का खजाना होती है एक्चुअली, उनमें से बहुत सारी चीज़ें जो है आपको इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। तो कोशिश करिए कि किचन में ही आपको चीज़ें मिल जाएंगी। घरेलू फेस पैक बना लीजिए, जैसे कि मुल्तानी मिट्टी है उसमें खीरे का रस और एलोवेरा जेल, ये सब चीज़ें डाल के फेस पैक आप घर पे ही रेडी कर सकते हैं। और भी सारे बहुत सारे फेस पैक होते हैं, जैसे बेसन है, दही है, हल्दी है। तो 2 चम्मच आप बेसन ले लीजिए, उसमें 1 चम्मच दही डालिए, 1 चुटकी उसमें हल्दी मिलाएं। इसे टैनिंग वाली जगह पे 20 मिनट के लिए लगा के रखें, फिर हल्के हल्के हाथों से रगड़ते हुए धो लें। दही में मौजूद लैक्टिक एसिड जो होता है वो टैनिंग को जल्दी हटाता है। इसके अलावा टमाटर के पल्प में कुछ बूंदे नींबू के रस की मिलाएं और इसे चेहरे और हाथों पे लगाएं। टमाटर का जो ब्लीचिंग है वो कालेपन को तेजी से कम करता है और नेचुरल ब्लीच का काम भी करता है। एलोवेरा और खीरे के रस को दोनों को बराबर मात्रा में मिलाकर चेहरे पर लगाएं। ये ना सिर्फ टैनिंग को कम करता है बल्कि धूप से जितनी भी सनबर्न आपको हुआ हुआ होता है उससे भी ठंडक देता है, क्योंकि एलोवेरा में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपकी स्किन को कूलिंग इफेक्ट देती हैं, और जो पिगमेंटेशन जिनको इशू होता है वो भी दूर होता है इससे। और टैनिंग से बचने के जो नियम हैं वो तो आपको आपके साथ शेयर हो ही गए कि सनस्क्रीन भी लगाना ही है। सही कपड़ों का जो चुनाव है सखियों, वो भी बहुत ज़रूरी है। तेज़ धूप में बाहर जाते समय पूरे स्लीव्स के आप कपड़े पहने, कॉटन के कपड़े पहने, चेहरे को स्कार्फ से जरूर ढकें। कई बार हम बेपरवाह होकर निकल जाते हैं कि हम थोड़ी सी दूर के लिए ही तो जा रहे हैं, या फिर सब्जी लेने ही तो जा रहे हैं, बाजार में 2 मिनट का ही तो काम है, इतने में क्या ही हो जाएगा। लेकिन ये जो धूप है ये इतनी सी देर में आपको टैनिंग दे सकती है, और फिर वो टैनिंग को आपको रिमूव करने में बहुत सारी मशक्कत लग जाती है। तो कोशिश करें कि जब भी बाहर निकलें तो आप स्कार्फ पहन के निकलें, अच्छे से खुद को कवर करिए, हाथों में ग्लव्स पहनिए, और पूरा कवर होके ही आपको निकलना चाहिए। टैनिंग
टैनिंग अगर बहुत ज़्यादा आपको हो भी गई है, क्योंकि खास करके हम देखते हैं जो टैनिंग के इफेक्ट ज़्यादा होता है वो हाथों पे होता है या फिर आपके बैक पे होता है, तो इनको दूर करने के लिए एक आप बहुत ही ईजी घरेलू ये पैक भी बना सकते हैं। इसमें आप कॉफ़ी पाउडर लीजिए और उसमें एलोवेरा जेल को मिक्स करिए, झटपट तैयार हो जाएगा। दोनों ही चीज़ें ईजीली बन जाती हैं, घर पर ही मिल जाती हैं। इन्हें आप टैनिंग वाला जो एरिया है, खास करके हमारे हाथ बहुत जल्दी टैन होते हैं धूप में, उनमें आप 15 से 20 मिनट के लिए लगा के रखिए, फिर उसको आप वॉश कर लीजिए, तो इससे टैनिंग रिमूव करने में आपको बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। बालों का ख्याल भी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पसीने से गर्मी में हमारे बाल बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, झड़ते हैं और बहुत सारे और भी प्रॉब्लम्स जो होती हैं बालों को फेस करनी पड़ती हैं। तो पहले तो ये कोशिश करिए कि अपने बालों को साफ़ रखने की कोशिश करिए। वीक में कम से कम आप, गर्मी का मौसम है तो 3 बार तो आपको हेयर वॉश लेना ही चाहिए। साथ ही साथ अगर आप ज़्यादा हेयर वॉश ले रहे हैं तो इसकी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके बाल ड्राई हो जाएं। तो कोशिश ये करें कि आप एक नाइट पहले बालों में ऑयल करें और दूसरे दिन आप बालों को वॉश कर लें। बहुत ज़्यादा टाइम तक बालों में ऑयल लगा के ना रखें, क्योंकि ज़्यादा टाइम ऑयल लगा के रखने से बालों में एक परत सी बन जाती है डैंड्रफ की, और वो आपके जो जितने भी पोर्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं, और यही कारण होता है कि आपके बाल झड़ते हैं। तो बालों को झड़ने से बचाने के लिए उनका क्लीन रहना बहुत ज़रूरी है। माइल्ड कोई शैम्पू यूज़ करिए और 3 बार हेयर वॉश आप वीक में ज़रूर करिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं सखियों, जिन्हें अगर आप अपनी लाइफ का हिस्सा बनाती हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों में आप बदलाव देखेंगी कि किस तरीके से आपके जीवन में बदलाव आता है। आपने अपनी डाइट को सही किया। अगर हम डाइट की बात करें सखियों, तो जो गर्मी का मौसम होता है बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है डाइट के लिए। जो लोग मोटापे से परेशान हैं, डाइट करना चाहते हैं, अपने आप को स्लिम फिट करना चाहते हैं, तो ऐसे में गर्मियों के मौसम में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि आप अपने आप को किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। अपनी डाइट को सुधारिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लिक्विड लीजिए। डिनर को आप कोशिश करिए बहुत लाइट कर दीजिए, और सात या 8 बजे से पहले डिनर को अगर आप फिनिश करती हैं तो बहुत आपको मदद मिलती है वेट लॉस में। योगा करिए, साथ ही साथ वॉक भी कर सकते हैं। गर्मी का मौसम है तो वॉक भी बेहतरीन ऑप्शन होता है। ये सब करके तो आप फिजिकली फिट हो सकती हैं। मेंटली फिट रहने के लिए योगा करिए, और बहुत सारे बदलाव आप अपने जीवन में देखेंगे कि किस तरीके से हमारे जीवन में जो है चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, आप फिट हो रही हैं। क्योंकि फिटनेस जो है वो अपनी उसके एक अलग मायने हैं हमारे जीवन में। जब हम फिट रहते हैं बहुत ही अच्छा फील करते हैं, और ख़ास करके जब हम महिलाएं फिट रहती हैं तो वो हमारे जो घर के दूसरे जितने भी मेंबर होते हैं उनको फिट रखने के लिए प्रोत्साहित कर सकती हैं। बच्चों में भी इसकी शुरुआत करिए शुरू से, क्योंकि आजकल हम देखते हैं सखियों, बच्चे जो हैं बहुत ही ज़्यादा मोटापे की जो बीमारी है उससे ग्रसित है। क्योंकि आपके जो बच्चे हैं, एक तो वो आउटडोर गेम खेलते ही नहीं हैं, घर के अंदर ही रहते हैं, सोशल मीडिया का जो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनका स्क्रीन टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा है, जिससे उनको उनकी आँखें भी ख़राब हो रही है। तो अपने जब आप खुद अपने अंदर बदलाव लेकर आएंगी अपने जीवन में, तो आप अपने बच्चों को भी सिखा पाएंगी। तो उनको भी ये बताएं कि किस तरीके से वो आउटडोर गेम खेल सकते हैं बाहर, उनको भी अपने साथ में वॉक पे लेके जाएं। और जब आप योगा या कुछ ऐसी मेडिटेशन करते हैं या प्राणायाम करते हैं तो उनके फ़ायदों के बारे में अपने बच्चों को भी बताएं, उनसे भी डिस्कस करें कि आप किस तरीके से, आपको भी योगा करना चाहिए शुरू से, या फिर आपके बच्चों की डाइट किस तरीके से होनी चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल अर्ली एज में ही बच्चे मोटापे का शिकार हो रहे हैं, और वो मोटापे की वजह से बहुत सारे जो हेल्थ इश्यूज़ हैं उनको कम एज में फेस करने पड़ रहे हैं। खास करके अगर हम बात करें शुगर की प्रॉब्लम की, तो बहुत सारे बच्चों में हम देखते हैं कि अर्ली एज डायबिटीज़ उनमें वो डायग्नोज हो रहे हैं उससे। तो ये बहुत ज़रूरी है जानना कि आपके जो बच्चे हैं वो आपका भविष्य है, तो आप उनको किस तरीके से, उनकी हेल्थ से खिलवाड़ बिल्कुल भी नहीं करेंगी, उनको भी अच्छी आदतें डालेंगी। आदतें डलने में सच्चों टाइम लगता है, समय लगता है, तो अपने बच्चे के अंदर शुरू से ही अच्छी आदतों का डाले जाना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए ये ज़रूरी है, जब आप अपना खुद का नियम सुधारेंगी तभी आप अपने बच्चों को भी सही रूटीन में ला पाएंगे।
तो सखियों बात तो आपसे बहुत सारी करनी थी, लेकिन घड़ी की सुइयां इशारा कर रही है कार्यक्रम समाप्ति की ओर। तो हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, अपने जीवन में मुस्कुराएं और लोगों को भी और लोगों के चेहरे पर भी मुस्कुराहट लेके आएं। सखियों, आपसे फिर मिलने का वादा करते हुए आपसे लेती हूँ इजाज़त। नमस्कार।

0: अंतर्गत 327.40 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
2: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गाँव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
1: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दल ने पहले पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट का सर्वेक्षण किया, जो सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक है, और फिर बोइंग गांव जाकर जमीन स्तर पर हुए नुकसान का जायजा लिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी।
2: संकट के समय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार पूरी तरह अरुणाचल प्रदेश के साथ खड़ी है। क्षति का आकलन करके कैसे अधिकतम मदद की जाए अपने भाई बहनों का अरुणाचल प्रदेश का प्रयास किया जाएगा। गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में कमेटी होती है, वो पूरी स्थिति का आकलन करके अतिरिक्त सहायता अरुणाचल प्रदेश की करेंगे।
1: राज्य में बाढ़ से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 21 अन्य घायल हुए हैं। लगभग सभी 28 जिलों में 90,499 लोग प्रभावित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना का तेजी से आधुनिकीकरण किया जाएगा। 31वें थलसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना का लक्ष्य ऐसी आधुनिक और तकनीक से सशक्त सेना तैयार करना है जो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में पूरी तरह सक्षम हो।
3: इस बदलते सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सेना के मॉडर्नाइजेशन को नए उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाना होगा। हमारा उद्देश्य एक ऐसी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फ्यूचर रेडी आर्मी का निर्माण करना है जो हर तरीके से मल्टी डोमेन में ऑपरेट करने के लिए सक्षम हो।
1: जनरल सेठ ने कहा कि भारतीय सेना सीमाओं और उभरते खतरों पर लगातार कड़ी नजर रख रही है और किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।
3: हम अपनी सीमाओं और उभरते खतरों के प्रति निरंतर सतर्कता बरकरार रखेंगे और राष्ट्र सुरक्षा के समक्ष किसी भी चुनौती का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए उच्च स्तर की ऑपरेशनल रेडीनेस बनाए रखेंगे। नवाचार हमारी सोच कार्य प्रणाली और क्षमता विकास का अभिन्न अंग होगा।
1: एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने आज भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण कर लिया। वे एयर मार्शल नागेश कपूर के स्थान पर नियुक्त हुए हैं, जो 4 दशक से अधिक की सेवा के बाद कल सेवानिवृत्त हो गए। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने आज चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करते हुए श्री सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्हें तीनों सेनाओं द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए युवाओं से समर्पण, ईमानदारी और मजबूत नैतिक मूल्यों के साथ उत्कृष्टता प्राप्त करने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। विश्वविद्यालय के दृष्टिकोण की सराहना करते हुए राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि ये संस्थान भविष्य में उत्कृष्टता का एक प्रमुख केंद्र बनेगा।
4: I am pleased to know that this university has developed a long-term vision to become a future-ready institution. Its commitment to the sustainable development goals, especially to those on quality education, reflects a sense of responsibility towards inclusive and equitable development.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत वेनेजुएला में राहत कार्यों में जुटे भारतीय डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की सराहना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन समय में जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए उनका समर्पण प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि हर संकट की घड़ी में चिकित्सा कर्मी अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा है कि भारत संप्रभु फलस्तीन की स्थापना के लिए बातचीत से द्विराष्ट्र समाधान का समर्थन करता है। इसके अंतर्गत एक ऐसे संप्रभु फलस्तीन की स्थापना हो सकेगी जो सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर इसराइल के साथ शांति और स्थिरता से रह सकेगा। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि भारत ने फलस्तीनी लोगों को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर से अधिक की सहायता प्रदान की है।
5: India's engagements, भारत फलस्तीन के लोगों की मानवीय आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लगातार सहयोग कर रहा है। अब तक भारत फलस्तीन को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर की सहायता दे चुका है। इसके अलावा भारत समय समय पर मानवीय सहायता, आपदा राहत सामग्री, आपातकालीन दवाइयां और सामान्य उपयोग की आवश्यक औषधियां भी उपलब्ध कराता रहा है।
6: Including emergency and general use medicines.
1: इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान से टेलीफोन पर बातचीत की। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पिछले 9 वर्ष में वस्तु और सेवा कर GST ने भारत के एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण को और मजबूत किया है। GST से तर्कसंगत कर दरों और मानकीकृत प्रक्रियाओं के माध्यम से पारदर्शिता, जवाबदेही और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है। ये 2017 में पहली जुलाई से लागू हुई थी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये योजना सिंचाई में सुधार, सतत जल प्रबंधन और अधिक कृषि भूमि को सिंचाई के दायरे में लाकर खेती में बड़ा बदलाव लाने में मददगार हुई है। पहली जुलाई 2015 को शुरू की गई इस योजना ने सिंचाई सुनिश्चित की है, खेती में जल के समुचित उपयोग में सुधार किया है और देश में सतत जल संरक्षण को बढ़ावा दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YARNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अफगानिस्तान की सेना ने पाकिस्तान में ISIS से जुड़े ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। अफगान मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये हमले कल रात पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में ISIS के ठिकानों पर किए गए। इन हमलों में ISIS और उसके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचा और आर्थिक रूप से भी भारी क्षति हुई। मंत्रालय ने कहा है कि इनमें कोई नागरिक हताहत नहीं हुआ है। हाल ही में पाकिस्तान के हवाई हमलों में अफगानिस्तान के 36 नागरिक मारे गए थे और 163 अन्य घायल हुए थे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने तुरंत शत्रुता समाप्त करने का आह्वान किया है और सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा करने का आग्रह किया है। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हरा दिया है और अंतिम 16 में पहुंच गया है। इससे पहले फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से और नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2-3 में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 दिन मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 11 वर्ष के दौरान गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाया। इससे लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से लागू। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के

0: आज के कलाकार हैं अजय सिंह राणावत। यह है इनका गाया कार्यक्रम का पहला लोकगीत।
1: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
2: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
3: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाएं समाधान।

0: आकाशवाणी का ये जैसलमेर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 2:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब से लेकर 5:30 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। इन कार्यक्रमों को हम मुंबई के आकाशवाणी केंद्र से रिले करेंगे।
1: शिकायत पर इतना मुझे तड़पा।

0: दुल्हन एक रात की स्वयं का गीत था लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में, राजा मेहदी अली खान का लिखा।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
2: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
2: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे, तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया। मैं ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। तो उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूर नहीं रह सकता, एक बिन तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती से आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।
4: लचकत चमकत चलत कामिनी, जगी गुण दमकत चपल दामिनी, ओ बावरी ओ सावरी, अरे ओ चंचल पल चिन, रुक जा रुक जा रुक जा, पायल वाली देखना, पायल वाली देखना, यही पे कहीं दिल है।

लिए जमाना है यूं ही मस्ताना। देखो जी कहीं रुत बिना खाली घटा छाए ना, पायल वाली देखना यहीं पे कहीं दिल है भगत।

0: बात बने अंगड़ाई मेरी तेरा नाच बने कहीं ऐसा न हो कोई बात बने अंगड़ाई मेरी तेरा नाच बने ना छोरी न बने के छोरी घूंगर कहीं धड़कन मेरी बने जाए ना पायल वाली देखना यही तो कहीं दिल है पग तले आए ना पायल वाली
1: चित्रगुप्त की तर्ज थी मजरूह सुल्तानपुरी की रचना आपने सुनी किशोर कुमार की आवाज में एक राज फिल्म से। और श्रोताओ इस गीत के पहले हमने आपको सुनवाया था दुल्हन एक रात की फिल्म का नगमा, उस गीत में संगीत था मदन मोहन जी का। आप सुन रहे हैं सदाबहार नवमी।

लिखा गीत आपने सुना, रवि का संगीत था, आशुतोष लिखी आवाज, फिल्म एक फूल दो माली से ये नगमा आप सुन रहे थे। ये गीत है जब जब फूल खिले, फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज है श्रोताओ, और यही है आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को।

को सच ही कहा है, पंछी को रात को ठहरे तो उड़ जाए, दिन को रात को ठहरे तो उड़ जाए, दिन को

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सखी सहेली बस कुछ ही पलों में।

0: सही सहेली।
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार।
2: और मेरा भी यानी कि आरती श्रीवास्तव का भी आप सभी सखियों को, सभी सखाओं को, सभी श्रोताओं को और साथ में मंदाकिनी जी को
1: जी
2: नमस्कार।
1: नमस्कार आरती, कैसी हो?
2: बिल्कुल ठीक हूँ। और ये जो मौसम बदला है ना, सच में इसने बिल्कुल पूरा माहौल बदल दिया।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, जैसे ही मौसम बदलता है तो मन का मौसम भी बदल जाता है। लेकिन हाँ, कुछ कुछ जगह तो अभी मौसम नहीं बदला है, वहाँ का मन का मौसम तो वैसा ही है।
2: बिल्कुल, प्रार्थना करेंगे जल्दी से वहाँ का भी
1: मौसम बदल जाए। लेकिन हाँ, मुंबई का जो मौसम है वो बिल्कुल बदल गया है। सुबह से लेकर शाम तक, रात तक बरसात हो रही है और मन भी कुछ भीगा भीगा सा है ना
2: जी। हाँ बिल्कुल।
1: और एक आनंद अलग ही है आरती
2: जी। बिल्कुल,
1: कभी याद आते हैं वो दिन जब तुम बचपन में भीगा करती थी या कॉलेज के दिनों में जब जाती थी और रस्ते में भीग कर आती थी? मुझे तो याद है
2: बिल्कुल। मतलब ऐसा लगता ना कि हम जान बूझ के भीगते हैं फिर।
1: हाँ,
2: ना अगर ऐसा जरूरत हो तो भी निकलेंगे। वैसे भी थोड़ा सा भीगना बनता भी है जब बारिश का मौसम आता है तो थोड़े समय के लिए सही छातों को एक तरफ रख दीजिए और थोड़ा बारिश में निकल के तो देखिए
1: उसका एक अलग ही मजा है।
2: बिल्कुल,
1: बचपन की यादें हमें है कि हम कितना भीगा करते थे और कभी माता पिता भी नहीं कुछ कहा करते थे। जैसे आजकल कह देते अरे बेटा मत भीगो, जुकाम हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, खांसी हो जाएगी। हमारे माता पिता भी हमें नहाने देते थे बारिश में और हम नहाया करते थे और इतनी इम्यूनिटी मजबूत हुआ करती थी कि मुझे याद नहीं कि कभी बीमार पड़े हों बारिश में भीग के। हाँ कभी कभार ऐसा हो गया होगा कि सर्दी लग गई है, लेकिन बड़ा मजा आता था स्कूल कॉलेज के दिनों में भी जब भीग कर साइकिल चलाते हुए आते थे वो दिन बहुत याद आते हैं।
2: बहुत, सच में बारिश जो होती है ना एकदम सब कुछ बदल देती है, सब कुछ हरियाली सब जगह छा जाती है, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे पूरा आप देखें जंगल हो या कहीं भी छोटा सा भी पेड़ होगा ना वो भी एकदम खिल उठता है जब बारिश की बूंदे पड़ती है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और ऐसे ही जब मन पर कुछ बूंदे ऐसी गिरती हैं तो मन भी खिल उठता है। संगीत की कुछ बूंदे जब गिरती हैं तो हमारा मन खिल उठता है। लेकिन हाँ, उससे पहले हमें ये भी बताना है कि आज हम अपनी सखी और सखाओं के लिए क्या क्या लेकर आए।
2: बिल्कुल, तो आज हम लेकर आए हैं, सबसे पहले हम बात बता दें आपको, हम साड़ियों का जो संसार जो बहुत जिसके बारे में महिलाएं सोचती हैं कि हम कौन सी नई साड़ी खरीद लें, हर महीने खरीद लें या हम थोड़ी थोड़ी बचत करते रहे और खरीदें, तो उन साड़ियों के संसार के अंतर्गत हम लेकर आए हैं टसर या घिचा सिल्क साड़ी जो कि झारखंड की पहचान है।
1: अरे वाह, झारखंड की साड़ी पहनेंगे आज हम
2: जी। बिल्कुल, और अब हम बात कर लेते हैं, आज हम लेकर आए शब्द हमारा विचार आपके, इसके अंतर्गत हम बात करेंगे प्रतियोगिता पर।
1: आहा, क्या बात है, जो आपके और मेरे बीच भी चलती है।
2: बिल्कुल लेकिन हमारे बीच स्वस्थ जो
1: प्रतिस्पर्धा चलती है। बिल्कुल, हमारे सखी और सखाओं से हम कहना चाहेंगे कि इस प्रतियोगिता का आपको अर्थ नहीं लिखना है कि जैसे हम एक निबंध लिख देते हैं है ना, निबंध नहीं लिखना है कि प्रतियोगिता क्या है। आपको ये बताना है कि आपके जीवन में इस शब्द पर क्या विचार है। आपने कभी जीवन में कोई प्रतियोगिता जीती? आपने जो पढ़ाई से संबंधित जितनी भी प्रतियोगिता

0: परीक्षाएं होती है उनमें आपने अटेंड किया, उसको अटेंड को अटेंड किया, या आप किसी से प्रतियोगिता रखते हैं, प्रतिस्पर्धा रखते हैं?
1: प्रतिस्पर्धा में आप कहाँ तक चले गए, कितनी दूर तक चले गए, यानी कि आपने मन से आप कितनी दूर तक चले गए, कि मतलब एक होती ना कि स्वस्थ प्रतियोगिता, कोई बात नहीं चलो उसने आगे किया अब हम भी अच्छा करेंगे, एक होती है कि उसने कैसे किया
0: मैं करके बता,
1: खींचे हाँ। तो आप बताइए कि मतलब कौन सी मतलब आप प्रतियोगिता के बारे में,
0: आपके कहने का मतलब ये है आरती कि कई बार क्या है कुछ लोग जो है प्रतियोगिता के चक्कर में किसी की टांग खिंचाई कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, है ना, और ये जो ईर्ष्या और जलन हमारे अंदर होती है ना किसी को बढ़ता हुआ देख करके, उसकी शर्ट मेरी सफेद, मेरी शर्ट से सफेद क्यों वाली जो जलन है वो हमें थोड़ा परेशान भी कर देती है
1: और पीछे भी खींचती है,
0: पीछे भी खींचती है, आप एक एक दिन भी पीछे हो जाते हो आप उस दौड़ में, खरगोश और कछुए वाली कहानी हमने देखी है ना, तो इसलिए आप प्रतियोगिता तो करें लेकिन स्वस्थ प्रतियोगिता रखें। तो बताइए आपके जीवन से जुड़े कुछ
1: आप अपना नजरिया हमें बताइए, और साथ ही आज हम बात करने वाले हैं पारिवारिक चिकित्सक के ऊपर।
0: अच्छा
1: देखिए चिकित्सक के पास हम सभी जाते हैं लेकिन हमारा एक फेवरेट डॉक्टर होता है जो घर का डॉक्टर कहता है ना, ये हमारे फैमिली डॉक्टर है, कि कुछ भी हो सर्दी जुकाम या कुछ बड़ी बात कुछ भी हो सबसे पहले हम उनके पास जाते हैं,
0: बिल्कुल
1: उनकी राय मांगते हैं, फिर वो जब कहते हैं कि नहीं आप इसको आप बड़े डॉक्टर को दिखाइए या इसके लिए आप और टेस्ट वगैरह कराइए, तो फिर अब जब हम और दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले हम जिस डॉक्टर के पास जाते हैं जिस पे सबसे पहले हम विश्वास करते हैं तो वो पारिवारिक डॉक्टर, उसके बारे में हम बात करेंगे।
0: बताइए आपके पारिवारिक डॉक्टर कौन है, कैसे हैं और आपका जीवन में, आपके जीवन में उनका क्या स्थान है, कब क्या ऐसा घटा कि पारिवारिक चिकित्सक आए और आपकी उन्होंने मुसीबत को हल किया,
1: जी
0: है ना,
1: बताइए।
0: तो इन सभी पर हम विचार करेंगे, गीत सुन ले और
1: देखो ये आप बस मेरे साथ ना ऐसा मत कर
0: व्यंजन लेके आई
1: है, बिल्कुल मैं व्यंजन इतना अच्छा लेकर आई हूँ और हमारे जो श्रोता है वो भी सब सखियां सखा सब लिख रहे हैं पकौड़ों के बारे में, सोचिए कितना, कहां बारिश का मौसम आते ही पकौड़ों की तो मतलब ऐसा रहता है कि बारिश के साथ में जो एक मिट्टी की सुगंध होती है ना उसके साथ पकौड़ों की
0: गर्म पकौड़े भी, बिल्कुल सही कहा
1: जी।
0: तो बताइएगा आप अपने घर में इस वक्त या बारिश के मौसम में किस तरह से पकौड़े बनाते हैं, कई तरह के पकौड़े,
1: कौन से पकौड़े बनाते हैं,
0: कौन सी बेसन के, और
1: ताकि हम उसको एकदम उसको सोच ले कल्पना करके उसको हम खा ले,
0: नहीं भी हमारे लिए भेजेंगे हमारे सखी और सखा और हम उसे खा भी लेंगे, ठीक है, क्योंकि मुंबई का जो मौसम है वो पकौड़ों का ही मौसम है,
1: बिल्कुल। तो एक गीत सुन लेते हैं,
0: बिल्कुल सुनते हैं।

0: तो मन तो भीग गया है रिमझिम गिरे सावन
1: जी, इतना प्यारा गाना है ना, एकदम सावन की खुशबू आती है, इससे मिट्टी की खुशबू आती है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और वही बात की मिट्टी की सौंधी खुशबू हम पसंद करते हैं और बरसात में भीगना पसंद करते हैं, पर कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि भाई बरसात में भीगे थे ऐसे बीमार हो गए
1: जी,
0: है ना, जुकाम हो गया, खांसी हो गई, सर दर्द हो गया, और ऐसी स्थिति में हमें कौन याद आता है,
1: डॉक्टर,
0: हमारा डॉक्टर जो हमारा पारिवारिक डॉक्टर है,
1: जहाँ मतलब कभी भी जा सकते हैं।
0: हाँ।
1: और तुरंत हमें लगता है कि हम अभी बाहर नहीं जा सकते, बहुत दूर नहीं जा सकते, ढूंढ नहीं सकते, तो बस हम सबसे पहले अपने पारिवारिक डॉक्टर के पास जाते हैं,
0: जाते ही उन्हें फोन पर बताते हैं भाई हमारे साथ ऐसा हुआ है और आप क्या कहते हैं, और अगर उन्हें लगता है कि कुछ हल्का फुल्का है तो वो फोन पर ही बता देते हैं, अन्यथा वो घर आकर अगर आप नहीं उठ पा रहे हैं तो वो भी घर आके,
1: अक्सर ऐसा होता है कि आ जाते हैं, मतलब जो पारिवारिक डॉक्टर होते हैं क्योंकि वो हमें जानते हैं, मतलब पहचान होती है तो आ जाते हैं।
0: बिल्कुल, तो तेज रफ्तार जीवन और बदलती जीवन शैली और बढ़ती स्वास्थ्य समस्याओं के इस दौर में आरती पारिवारिक चिकित्सक की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है ना
1: जी।
0: आज लोग छोटी सी परेशानी के लिए भी अलग अलग अलग जो विशेषज्ञ हैं उनके पास पहुंच जाते हैं, लेकिन एक ऐसा डॉक्टर जो पूरे परिवार के स्वास्थ्य का, आदतों का, आवश्यकताओं को जो समझता हो, उसकी भूमिका आज भी बहुत महत्वपूर्ण है,
1: बहुत ज्यादा, क्योंकि देखिए कभी ऐसा होता है ना कि हालत इतनी अच्छी नहीं होती कि हम बहुत दूर तक जाएं, या कभी बहुत तेज बुखार है, इस तरीके की चीजें, तो जब बहुत छोटी मोटी सी कुछ चीजें होती हैं तो हम फोन पर बात कर लेते हैं डॉक्टर से, तो पूरा हालचाल वो पूछ लेते हैं, कभी वीडियो कॉल पर देख लेते हैं, तो कहते हैं कि अच्छा आप ये मेडिसिन हमें बता देते हैं कि आप ये दवाइयाँ ले लीजिए, तो हम ले लेते हैं तो हमें फायदा हो जाता है। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत समय से चल रही है, तो वो डॉक्टर खुद ही बताते हैं कि नहीं अब आप दूसरे डॉक्टर को दिखाइए, जो आप इस जो इस चीज का विशेषज्ञ है, तो आप उसको दिखाइए, तो वो अपने आप ही सलाह देते हैं।
0: हाँ, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जो बीमारी हमें हुई है उसका इलाज किसी और डॉक्टर के पास जाकर संभव है, तो हमारा पारिवारिक जो चिकित्सक है वो हमें सलाह देता है कि ये आपको, और कई बार वो भेज भी देते हैं नाम और पता लिखकर कि उन डॉक्टर से मिलिए, मेरा नाम बताइएगा
1: जी,
0: और मेरा रेफरेंस देकर आप उन डॉक्टर से मिलकर अपना इलाज करवाइए, ऐसी स्थिति भी होती है कई बार
1: जी।
0: तो पहले के समय में क्या होता था, लगभग हर परिवार का एक निश्चित चिकित्सक होता था, घर में किसी को बुखार आ जाए, चोट लग जाए, और कोई भी हमारी पारिवारिक जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो जाती थी तो हम उसी चिकित्सक से संपर्क भी करते थे, और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, वो हमारे को दवाई देने के अलावा मानसिक सपोर्ट भी करते,
1: बिल्कुल,
0: मतलब हमारा मानसिक इलाज भी करते थे, अरे डरो मत, ठीक हो जाओगे, सब ठीक होगा, कुछ नहीं हुआ है,
1: ये एक जो चीज होती है ना, जो आप हम मानसिक जो आधार दे देते हैं ना, तो वो बहुत फायदेमंद भी होता है ना, कि आधी जो बीमारी होती है ना, क्योंकि कभी कभी बहुत ज्यादा घबराहट हो जाती है कि पता नहीं क्यों नहीं बुखार उतर रहा है, पता नहीं क्या परेशानी है, तो जब हम डॉक्टर को दिखाते हैं, जब हमें वो बताता है कि नहीं आप इतनी कोई बड़ी परेशानी नहीं है, आप ये दवा लेंगे तो ठीक हो जाएंगे, तो लगता है कि हाँ चलो हमें डॉक्टर को दिखा दिया, अब हम ठीक हो जाएंगे।
0: बिल्कुल सही कहा, और जो पारिवारिक चिकित्सक है वो केवल वही की बीमारी का इलाज नहीं करते, बल्कि हमें मार्गदर्शक के रूप में भी वो होते हैं हमारे, और बच्चों के टीकाकरण से लेकर अगर बुजुर्गों की देखभाल तक देखा जाए, परिवार के हर सदस्य के स्वास्थ्य पर वो नजर रखते हैं, और उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो रोगी को केवल एक केस के रूप में नहीं देखते, बल्कि एक व्यक्ति के रूप में, परिवार के सदस्य के रूप में समझते।
1: बिल्कुल, क्योंकि बहुत समय से इलाज हम करा रहे होते हैं तभी वो हमारे फैमिली डॉक्टर बनते हैं, तो वो जो डॉक्टर होते हैं तो वो अच्छे से समझ के करते हैं कि हाँ वो जानते हैं इतिहास हमारा कि हम क्या परेशानी हमें रही है, क्यों रही है, कोई एलर्जी तो नहीं है, तो वो हमारे जो फैमिली डॉक्टर है, जो पारिवारिक डॉक्टर है, वो इस चीज को अच्छे से समझता है, तो जो हम कहीं बाहर दूसरे डॉक्टर को दिखाने जा रहे होते हैं तो वो भी बताता है कि आप ये चीजें उनको पहले बता दीजिएगा, जिससे कि उस हिसाब से वो आपको दवा दे सकेंगे।
0: बिल्कुल सही कहा, और जैसे आरती आजकल जो है मधुमेह की बीमारी है, उच्च रक्तचाप हो गया है, तनाव है, हृदय रोग जैसी जीवन शैली संबंधी बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ भी रही हैं, तो ऐसे में पारिवारिक जो चिकित्सक है हमारा, वो समय समय पर सलाह देकर इन बीमारियों को गंभीर होने से पहले ही रोक भी देता है कि आपको इस बात का ध्यान रखना है, ये अपनी दिनचर्या रखनी है, इस तरह से एक्सरसाइज करनी है, इस तरह से खाना है, इस तरह की चीजें नहीं खानी है,
1: और वो डॉक्टर जो है वो हमारी दिनचर्या पर नजर भी रखते हैं कि ऐसा तो नहीं आपने कुछ लापरवाही करी हो या आपने कुछ इस तरह से कुछ ऐसे खा लिया है, तो वो पूरा ध्यान भी रखते हैं, तो उनको पता होता है कि इनको हमें अभी हम इसको इनकी बीमारी को संभाल सकते हैं या नहीं संभाल सकते, अगर वो नहीं संभाल सकते हैं तो फिर वो हमें दूसरे डॉक्टर को रेफर कर देते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा, और आज भी क्या है, हमें बहुत जरूरत है एक ऐसे डॉक्टर की जो हमें समझ सके, है ना, हमारे परिवार के सदस्यों को समझ सके, और विश्वास का जो रिश्ता होता है डॉक्टर मरीज के बीच, सबसे बड़ी बात क्या होती है, आरती की हमें डॉक्टर ने कहा कि भाई आपको ये जो बीमारी है उसमें ये चीजें नहीं खाना। कई बार मैं कुछ डॉक्टर्स के इंटरव्यू सुनती हूँ तो वो कहते हैं कि मेरे पास वही व्यक्ति आएगा जो खाने का कंट्रोल करेगा।
1: जी हाँ,
0: आपने अगर खाने पर कंट्रोल नहीं करना सीखा है तो फिर डॉक्टर भी लाचार हो जाता है।
1: बिल्कुल,
0: जैसे बीपी की समस्या है तो वो कहते हैं नमक कम खाइए। अब आप क्या कहते हैं, नहीं डॉक्टर साहब मुझे तो नमक के बगैर खाना ही अच्छा नहीं लगता, मैं तो नमक ऊपर से और लेती हूँ। तो फिर डॉक्टर सोचिए क्या कहेंगे, वो कैसे आपको ठीक करेंगे, और फिर जब आप उनका कहना नहीं मानेंगे तो वो आपका कहा भी कैसे मानेंगे।
1: बिल्कुल, और जो फैमिली डॉक्टर होते हैं वो हमें थोड़ा डांट डपट भी देते हैं कि नहीं आपको ऐसा करना ही है, और वो समझ जाते हैं कि हमने कोई लापरवाही की है। इस बात के बारे में भी अगर हम कोई हम ज्यादा बीमार हो जाते हैं या उनकी बात नहीं मानते या कोई लापरवाही करते हैं तो फिर जाते हैं उनके पास तो वो समझ जाते हैं कि नहीं आपने ये लापरवाही जरूर की होगी, या आपको तला हुआ मना किया है तो आपने इसे खाया होगा तभी आपको ये परेशानी हुई है। तो क्योंकि वो हमारे बीमारी का इतिहास जानते हैं, हमारे बारे में जानते हैं, समझते हैं, तो वो अच्छे से हमारा इलाज भी कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा, और इसीलिए उनका विश्वास हमें नहीं तोड़ना चाहिए। छोटी छोटी चीजों का जो स्वाद जीभ को लग गया है ना उस पर हमें कंट्रोल रखना चाहिए। जैसे अब आप तुम आज पकौड़े खिलाएंगे ना हमारे शो तो मैं थोड़ा कम खाऊंगी।
1: बिल्कुल, और कभी कभी ऐसा नहीं कि आप रोज पकौड़े बनाने बैठ जाएं या रोज इस तरीके की तली हुई चीजें खाएं। कभी कभी चलती हैं ये सब चीजें, लेकिन हर हर समय नहीं।
0: बिल्कुल, आपको सीधा साधा खाना मौसम के अनुरूप खाना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि स्वच्छ खाना, ताजा पका हुआ भोजन खाइए।
1: ये जो मौसम रहता है ना इसमें थोड़ा बैक्टीरिया भी पनप जाते हैं, तो इसलिए बेहतर होगा कि हम ताजा खाना खाएं, रखा हुआ खाना ना खाएं, और बेहतर होगा कि हम तला हुआ ना खाएं, सादा जो भोजन होते हैं वही
0: फल फ्रूट खाएं, ज्यादा से ज्यादा सैलेड खाने की कोशिश करें, अंकुरित अनाज खाएं तो थोड़ा सा हमारा जो है स्वास्थ्य है अच्छा रह सकता है।
1: थोड़ा सा उसको रोस्ट कर सकते हैं, भून सकते हैं,
0: बहुत तरीके हैं खाने के,
1: बहुत अच्छा
0: लगता है। तो हमारे जो पारिवारिक डॉक्टर है ना आपके, वो भी खुश रहते हैं। वो नहीं चाहते कि जिस परिवार से वो जुड़े हैं वहाँ के परिवार के सदस्य बीमार रहे या उनके पास इलाज के लिए आए। उनकी सफलता भी तभी होती है जब उस परिवार के सदस्य सब सही रहे, स्वस्थ रहे।
1: तो हमारे जो श्रोता हैं वो भी लिख रहे हैं, तो उन्होंने एक हमारे जो श्रोता है वो लिखते हैं कि पारिवारिक चिकित्सक यानी फैमिली डॉक्टर की वजह से हमारे परिवार में सब स्वस्थ और सेफ महसूस करते हैं। उन्होंने हम सबको बिना जरूरी दवाइयों से बचाया है, उनका निदान सटीक रहता है। अगर रोग 5 दिन में काबू में नहीं आए तो वो उचित मार्गदर्शन देते हुए किसी सीनियर के पास भी भेज देते हैं। तो ये कहते हैं ये।
0: बिल्कुल, और भी किसी ने कुछ लिखा?
1: बिल्कुल बिल्कुल, एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि फैमिली डॉक्टर अब ये इसके बारे में बात करें तो ना के बराबर ही रही है। अब नाखून से लेकर सर के बाल तक हर अवयव का अलग स्पेशलिस्ट डॉक्टर, अलग विशेषज्ञ डॉक्टर होता है, और फिर ऐसी हालत हो जाती है कि मेरे बचपन में एक ही डॉक्टर बड़ी आत्मीयता से पूरे परिवार की वैद्यकीय देखभाल, उपचार, दवा पानी करते थे। कुटुंब का पूरा इतिहास उन्हें मालूम रहता था, और कठिन जो परिस्थिति होती थी उसमें मैत्री भरा जो सेकेंड ओपिनियन होता है वो जो मैत्री भरा व्यवहार भी करते थे, और जो सेकेंड ओपिनियन होता है वो जरूर लेना चाहिए। लगता है आपके वैद्यकीय क्षेत्र में वो नैतिकता नहीं हो पा रही जो अत्यंत जरूरी है।
0: जी, एक श्रोता लिखते हैं कि सभी को डॉक्टर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। पारिवारिक चिकित्सक ये एक बहुत अच्छा विषय रखा है। डॉक्टर दिवस मनाया जाता है डॉक्टर के प्रति हमारे मन में जो व्यवहार या सम्मान है उसको व्यक्त करने के लिए ये आज का दिन है, और ये भगवान जैसे होते हैं पारिवारिक चिकित्सक हमें हमारे लिए भगवान समान है। और मैंने भी एक पारिवारिक चिकित्सक को रखा हुआ है, मतलब उनके परिवार में भी पारिवारिक चिकित्सक है। और वही एक श्रोता लिखते हैं कि पारिवारिक चिकित्सक वो प्राथमिक देखभाल विशेषज्ञ होता है जो सभी उम्र, लिंग और बीमारियों के लोगों को निरंतर और व्यापक सेवाएं प्रदान करता है। ये चिकित्सक किसी एक बीमारी के बजाय पूरे परिवार के संपूर्ण स्वास्थ्य का ध्यान भी रखते हैं।
1: एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि ये चिकित्सक पद्धति मुख्य रूप से डॉक्टर और मरीज के बीच दीर्घकालिक संबंधों पर आधारित होती है, क्योंकि पारिवारिक चिकित्सक पूरे परिवार

0: इस स्वास्थ्य इतिहास को अच्छी तरह से जानता है, इसलिए वो बीमारी के अनुवांशिक और पारिवारिक कारणों को अधिक सटीकता से समझ भी पाता है।
1: और देखिए, हमारे एक श्रोता हैं जो हमारे नियमित श्रोता भी हैं, वो लिखते हैं कि आज डॉक्टर्स डे पर हमारे दोनों बेटों को सुबह सुबह ही हैप्पी डॉक्टर्स डे हमने विश किया है। सखी सहेली की सखी यानी मेरी धर्म पत्नी ने और मैंने और बेटियों ने, यानी उनकी दोनों बच्चे जो है डॉक्टर हैं। बड़े बेटे का MBBS कोर्स कंप्लीट हो गया है और छोटा बेटा MBBS थर्ड ईयर में है। बड़े बेटे की आज इमरजेंसी कैजुअल यूनिट गवर्नमेंट हॉस्पिटल अजमेर में ड्यूटी है। हमने बेटे को ये समझाया कि सभी पेशेंट से प्यार से बातें करें, अच्छी तरह चेकअप करें और जल्दी ही ठीक होने की हिम्मत भी बढ़ाए।
0: बहुत अच्छी बात है। और एक महसूस है जो लिखते हैं कि जैसे पारिवारिक मनोरंजन के लिए विविध भारती है, उसी तरह पारिवारिक स्वास्थ्य के लिए चिकित्सक होता है, यानी कि फैमिली डॉक्टर होना भी जरूरी है। विविध भारती जैसे हमारे दिल के मनोरंजन का ख्याल रखता है, उसी तरह फैमिली डॉक्टर हमारे आपके परिवार समेत सभी का सेहत का ख्याल रखते हैं, जो पूरे परिवार का प्राथमिक स्वास्थ्य बिंदु होता है। नवजात शिशु से लेकर मेरे जैसे बुजुर्ग तक सभी का इलाज करते हैं। इसके चलते आपको अलग से डॉक्टर खोजने की भागदौड़ से राहत मिलती है। आपके पूरे परिवार के स्वास्थ्य से जुड़ी हिस्ट्री उनके पास रहती है, तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट की त्वरित कार्रवाई कर सकते हैं। और साल 1995 से लेकर आज तक हमारा भी एक फैमिली डॉक्टर है, छोटी मोटी बीमारियों में सबसे पहले उनकी विजिट करते हैं, यानी उनके पास जाते हैं। अगर जरूरत हो तभी वो आगे के ट्रीटमेंट करवाने के लिए किसी और डॉक्टर को रेफर करते हैं।
1: अरे वाह, बहुत अच्छी बात। तो वही एक श्रोता ने लिखा है कि हर सफल इलाज के पीछे केवल दवा नहीं, डॉक्टर का धैर्य और समर्पण भी होता है। डॉक्टर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और डॉक्टर का सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है? मरीज का स्वस्थ होकर मुस्कुराना। वही हमने कहा ना कि हमारे फैमिली डॉक्टर कभी नहीं चाहते कि फैमिली के लोग बीमार है, वो चाहते हैं जितने स्वस्थ रहेंगे वो उनकी उतनी ही सफलता होती है। तो हमें भी अपने डॉक्टर की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए कि वो हमसे क्या चाहते हैं।
0: बिल्कुल। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि आज भले ही अस्पताल और विशेषज्ञ डॉक्टरों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन पारिवारिक चिकित्सक की आवश्यकता आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। वो अनावश्यक जांचों और दवाइयों से बचाते हुए उचित समय पर सही उपचार की दिशा दिखाते हैं। उसकी सलाह से स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल संभव होती है। वो परिवार के प्रत्येक सदस्य के स्वास्थ्य, उनकी पुरानी बीमारियों, जीवन शैली और आवश्यकताओं से भली भांति परिचित होते हैं। इसीलिए वो केवल दवाइयां नहीं देते बल्कि सही सलाह, समय पर सावधानी और मानसिक संबल भी प्रदान करते हैं।
1: क्या बात है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज के दिन की डॉक्टर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर दिवस के प्रति जो सम्मान है, डॉक्टर के प्रति जो सम्मान या जो डॉक्टर की महत्ता है हमारे जीवन में, उसको याद करने और डॉक्टर के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आज का दिन है। विषय बहुत ही अच्छा है। पारिवारिक चिकित्सक, बहुत सारे ऐसे पारिवारिक चिकित्सक हैं जो डॉक्टर कम लेकिन अपने से ज्यादा हमारा ध्यान रखते हैं। उनसे इतना अच्छा रिश्ता बन जाता है कि वो अपने हो जाते हैं। और मेरे जीवन में भी एक ऐसे डॉक्टर थे जो डॉक्टर से ज्यादा मेरे अपने हो गए थे, इसलिए मैं इस चीज को बहुत बेहतर समझ सकती हूँ। हालांकि वो डॉक्टर 2-3 सालों से मेरी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन जब भी हमें कुछ होता है, हमें कुछ भी बताना होता है, तो हम उन डॉक्टर साहब को कॉल करते हैं और वो हमें हमारा चेकअप करने आ जाते हैं। इसलिए ये कितने खास होते हैं ये हम ही समझ सकते हैं।
0: जी। और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि चिकित्सक बहुत सारे पारिवारिक चिकित्सक बहुत सारे ऐसे पारिवारिक चिकित्सक होते हैं जो डॉक्टर कम लेकिन अपने ज्यादा बन जाते हैं। उनसे इतना अच्छा रिश्ता बन जाता है कि वो अपने हो जाते हैं। और मेरे जीवन में भी ऐसे डॉक्टर थे जो डॉक्टर से ज्यादा मेरे लिए अपने हो गए, इसीलिए मैं इस चीज को बहुत बेहतर समझ सकती हूँ। हालांकि वो डॉक्टर से कुछ 2-3 सालों से मेरी जो मुलाकात है वो नहीं हो पाई है, लेकिन मुझे जब भी कोई परेशानी होती है, मैं कुछ भी खाती हूँ, कोई भी दवाई खाती हूँ, तो उस डॉक्टर का ये ध्यान आता है। इसलिए मैं ये चीज समझ सकती हूँ कि फैमिली डॉक्टर कितने ज्यादा हमारे लिए खास हो जाते हैं, वो अपने हो जाते हैं जैसे घर के सदस्य।
1: बिल्कुल सही कहा। और चलिए, अब संगीत भी तो एक चिकित्सक का काम करता है।
0: तो एक गीत सुनते हैं।
1: बिल्कुल सुनते हैं।

इजाजत हो तो मेरे सरकार के पहलू में आ जाऊं, इजाजत हो तो मेरे दिलदार के दिल में समा जाऊं।

शर्म को छोड़ दो मेरे जाना, गले से तुम भी मिल जाओ। ये पर्दा तोड़ दो मेरे जाना, मेरी सांसों में घुल जाओ।

0: का है, हवा भी ज्यादा ज्यादा है, क्यों न मचलेगा दिल मेरा, तुमको पाने का इरादा है, ये मौसम भीगा भीगा है।
1: हाँ, तो मंदाकिनी जी, एक हमारे श्रोता है जो जो लिख रहे हैं कि उनका विविध भारती से उनका जो साथ है वो लगभग 25 से 30 साल पुराना है और कहते हैं कि बचपन में मेरी माँ नियमित रूप से विविध भारती सुना करती थी और उन्हीं के साथ मैंने भी रेडियो सुनना शुरू किया था। और अभी आते हैं अपने विषय पे, तो कहते हैं कि आज का विषय पारिवारिक चिकित्सक सुनकर मुझे अपने बचपन की याद आ गई। हमारे मोहल्ले के एक डॉक्टर अंकल थे जो घर के हर सदस्य को नाम से जानते थे। जब भी कोई बीमार पड़ता वो सिर्फ दवा ही नहीं देते थे बल्कि हौसला भी देते थे। मुझे लगता है कि एक पारिवारिक चिकित्सक परिवार के सदस्य जैसा ही होता है। तो इस तरह से अपने बारे में इन्होंने बताया,
2: बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखी। और हमने अपने कितने ही सारे श्रोताओं के विचार पढ़े हैं और अब एक संदेश सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल,
2: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
3: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं, ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
2: तो सुनना न भूलें कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। और अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: जी,

0: के संसार में थोड़ी देर के लिए चलते हैं। इतने सुंदर संसार में
1: जी
0: महिलाओं का बड़ा पसंदीदा संसार है ये।
1: जी बिल्कुल,
0: महिलाओं का तो पसंदीदा संसार है ही, और साथ ही जो हमारे सखा हैं उनके लिए थोड़ा सा उनकी जेब खाली करने का संसार
1: है। उनके लिए सिर दर्द है।
0: जी बिल्कुल जी, आज हम आज लेकर आए हैं टसर यानी कि तुसार भी कहते हैं जिसे, ईचा सिल्क साड़ी जो कि झारखंड में होती है।
1: बिल्कुल,
0: तो तुसार या टसर रेशम जो होता है जिसे कोसा रेशम भी कहा जाता है, भारत के जंगली रेशम के कीड़ों से प्राप्त होता है जो मुख्य रूप से झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में पाए जाते हैं। और घीचा जो होता है वो घीचा रेशम के कोकून का बुना हुआ अवशेष होता है, मतलब बिना बुना हुआ अवशेष होता है वो, जो अपनी अनूठी खुरदरी बनावट और प्राकृतिक आकर्षण के लिए जाना जाता है। वो रेशम की जो होती है ना उससे थोड़ा अलग होता है ये कोकून से बना होता है, तो ये थोड़ा सा अलग होता है जो।
1: हाँ हाँ, तभी तो इस साड़ी की जो विशेषता है वो और साड़ियों से अलग होती है। कई बार हमने देखा है टसर साड़ी कुछ हमारी बहनें पहनती हैं, जब हमें अच्छा लगता है हमारी सखियों को हम देखते हैं ना पहने हुए, कभी शादी समारोह में सहेलियां मिलती हैं, अरे भाई कौन सी साड़ी पहनी है आपने, अरे ये तो टसर साड़ी है, तो लगता है अरे वाह कितनी सुंदर साड़ी। तो बस यही है कि वो अन्य साड़ियों से थोड़ा सा भिन्न होती है। और तुसार रेशम जिसे जंगली रेशम या वन रेशम या टसर रेशम या फिर तुसार रेशम भी कहा जाता है, ये पीले और भूरे रंग के चौड़े पंखों वाले पतंगे से प्राप्त एक उत्कृष्ट धागा माना गया है। और ये रेशम उन रेशम के कीड़ों से बनता है जो जंगली वन वृक्षों पर प्रजनन करते हैं, शहतूत के वृक्षों पर नहीं करते। झारखंड में रेशम निकालने की प्रक्रिया का एक नाजुक हस्तशिल्प है ये।
0: जी, और जो जो टसर रेशम होता है उसकी साड़ियों में हल्की सुनहरी कढ़ाई के साथ साथ प्रकृति से प्रेरित प्रिंट होते हैं, फूलों के पैटर्न के साथ साथ पेड़, बेल, कलियां, पत्तियां और छोटे पत्तों के आकार के पैटर्न होते हैं। तुसार रेशम अन्य सभी प्रकार के रेशम की तुलना में कहीं अधिक बनावटदार होता है। ये कपड़ा अन्य किस्मों की तुलना में ठंडा और अधिक छिद्र युक्त होता है जो पहनने में बहुत आरामदायक लगता है, मतलब आप गर्मी में आराम से पहन सकते हैं इसको।
1: बिल्कुल सही कहा। और सबसे पहले रेशम के कोकून को चीनी, पानी और सोडा के मिश्रण में भिगोया जाता है और फिर इसे उबाला जाता है। तो उबालने की जो प्रक्रिया है उससे रेशम क्या होता है आरती, नरम हो जाता है थोड़ा, जिससे उसे खोलना थोड़ा आसान हो जाता है। कोकून को जितनी देर तक उबाला जाता है रेशम उतना ही नरम और महीन होता जाता है।
0: बिल्कुल, और परंपरागत रूप से रेशम को सुलझाने की ये प्रक्रिया महिलाओं द्वारा की जाती है। इस बेहद मेहनत के काम में बहुत ज्यादा विशेषज्ञता और धैर्य की जरूरत होती है। रेशम को कोकून से निकालने के बाद अगले चरण में धागों को धूप में सुखाया जाता है और उन्हें नटुआ नामक उपकरण पर अच्छे से लपेटा जाता है।
1: और इस प्रक्रिया के बाद रेशम को रेहती तक पहुंचाने से पहले एक बार फिर से सुखा लिया जाता है।
0: जी,
1: रेहती एक कताई का यंत्र होता है जो धागों को कुंडलित करके सूत बनाता है। तो रेशम के धागे तैयार जब हो जाते हैं तो पारंपरिक हथकरघे का उपयोग करके जटिल पैटर्न बनाए जाते हैं, और असली तुसार धागे की प्रामाणिकता साबित करने के सबसे सरल और पुराने तरीकों में से एक क्या है, इसको जलाकर देखा जाता है।
0: बिल्कुल, और ये असली जो धागा होता है उसके एक छोटे से टुकड़े को जलाएंगे तो उसमें जले हुए बालों जैसी गंध आती है और लौ अदृश्य होती है, लौ नहीं दिखती है।
1: अच्छा
0: जी, और जलने के तुरंत बाद बुझ जाती है जिससे वो सूख कर काली राख में बदल जाती है। इसकी प्रकृति जो होती है वो सुनहरी चमक, जो प्राकृतिक चमक होती है इसमें वो सुनहरी चमक होती है जो बहुत सुंदर दिखती है, और ये बहुत हल्की और आरामदायक भी होती है।
1: और साथ ही इन्हें गर्मी और सर्दी दोनों मौसम में आप पहन सकते हैं, और इन साड़ियों को ड्राई क्लीन करवाना बहुत जरूरी हो जाता है। साथ ही इन्हें लंबे समय तक नई सी बनाए रखने के लिए सीधे धूप में लंबे समय तक नहीं रखना है आपको, और कॉटन के कपड़े में इसको लपेट कर रखें, जो हमारी बहनें जानती हैं
0: जो साड़ी इतना ज्यादा पहनता है वो समझता
1: है कि कैसे इसको रखना है। और ध्यान रखना है कि परफ्यूम को सीधे साड़ी पर नहीं छिड़कना है, उसके धब्बे जो है स्पॉट्स पड़ जाते हैं।
0: बिल्कुल, और घीचा सिल्क साड़ी को समय समय पर खोलकर हवा भी लगाते रहें। इन सावधानियों से साड़ियां लंबे समय तक उत्सवों की शान बनी रहती हैं, और आप भी जो जितने भी फंक्शन होते हैं उनमें आपकी शान बनी रहती है। और जो तुसार और घीचा सिल्क की साड़ियां हैं वो केवल धागों से नहीं बुनी जाती, इनमें बुनकरों के सपने, परंपराओं की खुशबू और संस्कृति की गरिमा भी पिरोई होती है।
1: बिल्कुल,
0: हाथ से अब मेहनत से
1: बनाई जाती है और इनके रेशों में प्रकृति की सादगी और भारतीय कला की भव्यता होती है। और इन्हें पहनना केवल फैशन नहीं होता बल्कि अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने का एक माध्यम भी होता है। ये
0: बिल्कुल बहुत ही अच्छी होती है साड़ियाँ। हाँ। एक गीत सुन लेते हैं ना।
1: गीत तो सुन लेते हैं लेकिन मुझे तुमसे कुछ कहना है।

0: हरे ओ सजना रे हरे
1: हाँ, तो बेहद ही सुंदर गीत सुनवाए थे आरती अभी आपने
2: जी। अब हम प्रतियोगिता की बात कुछ करना चाह रहे हैं ना।
1: करी
2: बिल्कुल। तो हमारे जो पहले तो हम उस जो हमारे श्रोता ने लिखा है, मैं जो श्रोता लिख रहे हैं,
1: हाँ।
2: जो हमारी सखियां लिख रही हैं, जो हमारी सखा लिख रहे हैं, उनके बारे में बात करते हैं कि हाँ। वो क्या लिख रहे हैं।
1: बिल्कुल।
2: तो उनके बारे में हम जान लेते हैं कि हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि प्रतियोगिता को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता क्योंकि ये विकास का नियम है। हालांकि इसे जानलेवा रेस बनने से रोकना जरूरी है। हमें खुद की तुलना दूसरों से करने के बजाय अपने कल से करनी चाहिए। शिक्षा प्रणाली और परिवारों को भी केवल नंबरों के बजाय बच्चों के कौशल और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। और साथ ही एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि हमें प्रतिस्पर्धा को एक युद्ध के रूप में नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाने के माध्यम के रूप में देखना चाहिए। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हमें सहयोग करना और मानसिक रूप से मजबूत बनना सिखाती है। इसका वास्तविक उद्देश्य दूसरों को नीचा दिखाना नहीं है बल्कि स्वयं की कमियों को दूर करके अपने आप को उत्कृष्ट बनाना होता है।
1: बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और वही बात कि आप प्रतियोगिता को लेकर क्या सोचते हैं, हमारे श्रोता लिखते हैं कि एक बार प्रतियोगिता की बात पे लिखते हैं कि ये जो कंपटीशन है बराबरी पर स्वस्थ रूप से किसी कंपटीशन को जीतना आगे बढ़ने और अपनी छिपी हुई क्षमताओं को पहचानने और खुद को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है वो ज्यादा अच्छा है। ये ठहराव को खत्म करती है, हमें लक्ष्य के प्रति प्रेरित करती है, आलस्य से दूर करती है और जीवन को एक सही दिशा प्रदान करती है। प्रतियोगिता हमें योग्यता परखने का भी मौका देती है जिससे हम सीखते हैं कि कैसे अपने काम में हम सुधार कर सकते हैं।
2: बिल्कुल। और देखा जाए तो प्रतियोगिता जीवन की

0: वो पाठशाला है जहाँ व्यक्ति संघर्ष करना सीखना और आगे बढ़ना सीखता है। ये सफलता की मंजिल तक पहुंचने का एक सशक्त माध्यम है। इसलिए प्रतियोगिता को केवल परिणाम की दृष्टि से नहीं बल्कि आत्म विकास और अनुभव प्राप्ति के अवसर के रूप में देखना चाहिए। यही दृष्टिकोण हमें जीवन में सच्ची सफलता और संतोष भी प्रदान करता है।
1: बिल्कुल, वही एक श्रोता लिखती है कि प्रतियोगिता हमें जीवन में अपना लक्ष्य सेट करने में सहायता करती है। जीवन में हमें कभी भी प्रतियोगिता से पीछे नहीं भागना चाहिए, चुनौती लेना सीखना चाहिए और जीतने की कोशिश करनी चाहिए। प्रतियोगिताएं वर्षों से एकत्रित ज्ञान और कौशल को प्रदर्शित करने के लिए एक शानदार मंच हमें प्रदान करती है।
0: बिल्कुल, एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि प्रतियोगिता का उद्देश्य दूसरों को हराना नहीं बल्कि स्वयं को बेहतर बनाना होना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: और साथ ही हमारे जो एक और श्रोता है वो लिखते हैं कि हम लोग बता रहे हैं कि प्रतियोगिता स्पर्धा कंपटीशन बराबरी पर स्वस्थ रूप में किसी कंपटीशन को जीतना जीवन में आगे बढ़ने और अपनी छिपी हुई क्षमताओं को पहचानने और खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा अत्यंत आवश्यक है।
1: हाँ,
0: ये ठहराव खत्म करती है, हमें लक्ष्य के प्रति प्रेरित करती है और आलस को दूर करके जीवन को एक सही दिशा प्रदान करती है। प्रतियोगिता हमें अपनी योग्यता को परखने का मौका देती है जिससे हम सीखते हैं कि कैसे अपने काम में हम सुधार करें।
1: हाँ, वही एक श्रोता लिखती है कि प्रतियोगिता हम सभी के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। जन्म से लेकर जीवन के हर पड़ाव तक हम किसी न किसी रूप में प्रतियोगिता का सामना करते हैं। विद्यालय हो, खेल हो, नौकरी हो, व्यवसाय हो, कला हो, हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रतियोगिता जरूरी है और ये हमें अपनी क्षमताओं को पहचानने, उन्हें निखारने और निरंतर बेहतर बनने की प्रेरणा भी देती है।
0: बिल्कुल, और एक श्रोता है जो लिखते हैं कि प्रतियोगिता हम सभी के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। जन्म से लेकर जीवन के हर पड़ाव तक हम किसी न किसी रूप में इस चीज को देखते रहते हैं।
1: और एक श्रोता लिखते हैं कि आजकल हर क्षेत्र में प्रतियोगिता लगातार बढ़ रही है। शिक्षा हो, करियर हो, व्यापार हो, तकनीक हो, अपनी पहचान बनाने के लिए कड़ी मेहनत और नवाचार आवश्यक हो गया है। ये बढ़ती प्रतिस्पर्धा हमें बेहतर बनने और अपने कौशल को निखारने का एक अवसर देती है।
0: बिल्कुल, और प्रतियोगिता केवल जीत और हार का नाम नहीं है, ये स्वयं को पहचानने, अपनी क्षमताओं को निखारने, लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाली प्रक्रिया होती है। और जीवन के हर क्षेत्र में, जो भी क्षेत्र है, हर क्षेत्र में प्रतियोगिता का अपना विशेष महत्व होता है। ये मनुष्य को आलस से दूर रखती है और परिश्रम, अनुशासन और आत्मविश्वास का पाठ पढ़ाती है।
1: बिल्कुल, वही श्रोता का कहना है कि प्रतियोगिता को पूरी तरह खत्म तो नहीं किया जा सकता क्योंकि ये विकास का नियम है। हालांकि इसे जानलेवा रेस बनने से रोकना जरूरी है। बिल्कुल सही कहा कि जानलेवा रेस हमें नहीं बनाना है इसको, है ना।
0: प्रतियोगिता एक स्वस्थ प्रतियोगिता होनी चाहिए जिससे कि हमें भी उससे सीख मिले या हम अपना विकास, अपना जो आत्म विकास है हम वो कर सकें, ना कि हम उसमें लग के अपने को नुकसान पहुंचाएं,
1: अपने जीवन को हम बर्बाद कर लें, अपने जीवन को खत्म कर लेते हैं कई बच्चे और की कंपटीशन में हम पिछड़ गए या फेल हो गए। ये जो असुरक्षा की भावना हमारे भीतर है, ऐसी प्रतियोगिता किसी काम की नहीं। अगर आपने अपने जीवन को गंवा कर किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया होगा, क्या मतलब उस प्रतियोगिता के जहां आप अपने जीवन से हाथ धो बैठते हैं। पढ़िए, लिखिए, आगे बढ़िए। और या हम नौकरी करते हैं या घर में भी होता है कि हम भाई बहन एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर लेते हैं या पड़ोसी एक दूसरे से।
0: कभी कभी ऐसा होता है मंदाकिनी जी की प्रतिस्पर्धा के चक्कर में हम अपने भाई बहन हो या रिश्ते हो, जो अपने रिश्ते हैं उनसे भी हम हाथ धो लेते हैं।
1: हाँ।
0: क्योंकि जब हम आपस में प्रतियोगिता करने लगते हैं ना, तो हम बहुत चीजों को गलत भी करने लगते हैं।
1: हाँ।
0: फिर हम कोई वो जो एक बारीक से रेखा होती है ना कि सही और गलत की, उसको हम पहचानना भूल जाते हैं। बस हमें रहता है कि हम किसी भी तरह से आगे निकल जाएं।
1: ये जो हमारे अंदर भावना होती है ना, सुरक्षा की भावना कहते हैं। और आरती, सबसे बड़ी बात ये है कि जरूरी नहीं कि हम जीत ही जाएं। कई बार हारने में भी बहुत मजा होता है। आप हार कर भी जीत जाते हैं।
0: किसी आप कभी किसी के चेहरे पे खुशी दे सके,
1: हाँ,
0: तो सबसे बड़ी बात ये होती है।
1: प्रतियोगिता
0: चेहरे की हंसी देख के ही आपको लगेगा
1: मजा आता है। बच्चों से हम प्रतियोगिता करते हैं, मान लीजिए हमारे माता पिता, तो वो हार जाते थे कि हमारा बच्चा जीत गया है, तो वो खुशी बहुत बड़ी खुशी है। और जीवन में बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती हैं जिसमें हम हिस्सा भी लेते हैं और हमारे जीवन में भी आ जाती हैं, लेकिन उसमें हमें बहुत ही सकारात्मक तरीके से हिस्सा लेना है। वो कोई भी प्रतियोगिता,
0: अपने आप को मानसिक रूप से दृढ़ रखिए कि हारना वो नहीं होता कि हम किसी चीज में खेल में या किसी चीज में हार गए, हारना वहां होता है जब हम अपने दिमाग से अपने मानसिक जो संतुलन होते हैं वहां से हारते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो उसको मजबूत रखिए।
1: और मन के हारे हारे मन के जीते जीत, अगर आप हार कर भी आपका मन नहीं हारा है जी, भी आप जीत जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है हमारे खिलाड़ी खेलते हैं लास्ट तक हमारी निगाहें होती कि जीतने वाले हैं जीतने

0: वाले जीतने वाले हैं वो हार जाते हैं, लेकिन हार कर भी पूरी टीम जीत जाती है। कैसे कि उनका बेहतर जो शानदार प्रदर्शन होता है वो हमें
1: वो मनोबल जो होता है ना, वो मनोबल अगले मैच में काम आ जाता है।
0: बिल्कुल, इसकी प्रतियोगिता अगर हम करते हैं अपने जीवन में जो जरूरी भी है तो स्वस्थ प्रतियोगिता करें, किसी को पछाड़ने के बजाय खुद को आगे लेकर जाएं।
1: बिल्कुल।

तो इत बिजली सी चमक जाती है। मुझे जीते जी ओ दिल भर तेरा इंतजार था, तेरा इंतजार था, आज भी है आज।

0: हाँ तो मंदाकिनी जी,
1: हाँ।
0: अब हम लोग को जिससे 100 साल पहले प्यार था अभी भी प्यार है
1: और आगे भी रहेगा।
0: हाँ जी, आगे भी रहेगा। वो है बढ़िया बढ़िया से स्वादिष्ट
1: व्यंजन
0: और जिसमें से आज हम लेकर आए हैं पकौड़े। हम क्या लेकर आए हैं, हम तो ये गलत कह रहे हैं, हमारे श्रोता लेकर आए हैं पकौड़े,
1: बनाकर लेकर आए हमारे लिए।
0: बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी भेजी है उन्होंने। तो बात करते पहले तो एक छोटी सी बात कर लेते हैं। जो हमारे जो जो एक श्रोता है वो लिखते हैं कि जैसे ही आसमान में काले बादल छाते हैं और पहली बूंद गिरती है, भारतीय इंसानों के दिमाग का एक खास हिस्सा एक्टिवेट हो जाता है। वो सिर्फ एक ही सिग्नल भेजता है, किचन में जाओ, बेसन घोलो और कढ़ाई चढ़ाओ। खोलते हुए गर्म तेल की कढ़ाई मुश्किलों में डूबने के बाद ही एक साधारण सा बेसन और प्याज क्रिस्पी और शानदार पकौड़ा बनकर बाहर निकलता है। इसलिए जब भी जिंदगी आपको मुश्किलों के खोलते तेल में डाले तो घबराइए मत, समझ लीजिए कि आप और भी ज्यादा मजेदार बनने वाले।

0: क्या बात कर रही है, वाह शानदार। बहुत शानदार,
1: सिर्फ तो मतलब सोच नहीं सकते
0: बिल्कुल। इन्होंने देखिए कितना इसको काव्यात्मक तरीके से, क्लासिक तरीके से पेश किया है, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा लिख भी सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो ये लेखन जारी रखें, आगे भी हमें इसी तरह से है ना अपने विचार प्रकट करें, तो कार्यक्रम का मजा दोगुना हो जाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि भारत के सबसे लोकप्रिय और पसंदीदा स्नैक्स में से एक है पकौड़े। ये मुख्य रूप से बेसन, मसाले और अपनी पसंद की कटी हुई सब्जियां जैसे कि प्याज, आलू, पालक को मिलाकर बनाया जाता है, और बारिश के मौसम और शाम की चाय के साथ इनका आनंद लिया जाता है। पकौड़े बनाने की उन्होंने विधि भी डाल दी है कि आपको ओनियन लेना है, मिक्स वेजिटेबल पकौड़ा बनाना है तो, और सब्जियां 3-4 तरह की लेनी है, प्याज लंबे कटे हुए, 1-2 कटे हुए, आलू, पालक, बेसन लीजिए, और चावल का आटा ले लीजिए 2 बड़े चम्मच कुरकुरेपन के लिए, मसाले ले लीजिए, हल्दी है, मिर्च है, और कुटा हुआ साबुत धनिया है, अजवाइन है, हींग है, और नमक आपके स्वाद के अनुसार ले लीजिए। और इसके अलावा इन्होंने अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट भी बनाया है तलने के लिए, और कहते हैं कि सब्जियां तैयार करें, एक बड़े बर्तन में कटे हुए प्याज, आलू और पालक ले लें, इसमें नमक, अदरक, लहसुन का पेस्ट, कटी हुई हरी मिर्च डालकर अच्छी तरह मिला लें और 5 मिनट के लिए रख दें ताकि सब्जियां पानी छोड़ दें। मसाले और बेसन मिलाएं, अब इसमें सभी सूखे मसाले डाल दें, और इसके बाद बेसन और चावल का आटा मिला लें, घोल बनाए बिना पानी डाले, और जरूरत हो तो थोड़ा सा डाल लें पानी। एक गाढ़ा और खुरदरा मिश्रण तैयार करें, तले एक कढ़ाई में मध्यम आंच पर, और इसमें छोटे छोटे बॉल्स बनाकर पकौड़े डाल दें, कुरकुरा होने तक इसको पकाएं मध्यम आंच पर, दोनों तरफ से इसको हिला के पकाते रहें, अंत में कुछ सेकंड के लिए आंच तेज करके निकालें ताकि पकौड़े अतिरिक्त तेल न सोखें। अरे वाह, ये अच्छी बात बताई है, अक्सर तेल आ जाता है पकौड़ों में साथ में ना, और गर्म गर्म पकौड़ों हरे धनिया की चटनी के साथ खाई आती थी।
1: मैं उसमें कल्पना में लग गई थी कि
0: खाने भी लग गई थी पकौड़े ना।
1: एक हमारी श्रोता है जो लिखते हैं कि गुजरात में पकौड़े यानी कि भजिया सिर्फ एक व्यंजन नहीं बल्कि जीवन शैली का हिस्सा है। बारिश की पहली बूंद गिरते ही हर गुजराती घर और नुक्कड़ पर पकौड़े तलना अनिवार्य हो जाता है। यहाँ आलू प्याज के अलावा मेथी कोटा, डकन भजिया, मिर्च के भजिया और केला पकौड़ा जैसी अनोखी वैरायटी मिलती है। गुजराती पकौड़ों में बेसन के साथ हल्की चीनी, नींबू और तीखी हरी मिर्च का बेजोड़ संतुलन होता है। चटनी का जादू भी होता है इसमें कि इन पकौड़ों का स्वाद कढ़ी या बेसन घोल और तीखी मीठी चटनियों के बिना अधूरा माना जाता है। और शाम की चाय के साथ पकौड़े खाना यहाँ का पारिवारिक जो उत्सव होता है उस तरह से माना जाता है।
0: हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा इन्होंने।
1: और हमारे जो एक है हमारी जो श्रोता है वो लिखते हैं कि बरसात आई छाई बहार, पकौड़ों की महकी है फुहार, गर्मा गर्म जब थाली आए मन खुश होकर गीत सुनाए, आलू प्याज या पालक वाले सबको लगते बड़े निराले, चाय की प्याली साथ में हो मजा दुगना हर पल हो, दादी की रसोई की खुशबू भर देती है मन में जादू, मिल बैठकर जब सब खाते हंसते गाते पल बिताते, सादा भोजन हो या दावत पकौड़ों की रहती है चाहत, स्वाद और अपनापन देते हर मौसम में दिल को।
0: वाह क्या बात है, देखिए मतलब मौसम बदलते ही मन का मौसम बदल गया शायर बन गए हमारे श्रोता। और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरा पकौड़े का जो शौकीन है गुजराती पकौड़े के शौकीन है जिसे भजिया कहा जाता है, और ये सिर्फ एक व्यंजन नहीं बल्कि जीवन शैली का हिस्सा है। बारिश की पहली बूंद गिरते ही हर गुजराती के घर में ये बनता है, तो ऐसे इन्होंने पकौड़े बनाने की विधि भी बताई है। और देखिए एक श्रोता लिखते हैं कि बेसन के घोल में अजवाइन, हींग, हरी मिर्च, धनिया का सही मिश्रण इसके स्वाद को दोगुना बना देता है। पुदीने की तीखी चटनी भी होनी चाहिए, मीठी की इमली चटनी, टोमेटो केचप के साथ इसका कॉम्बिनेशन एकदम परफेक्ट होता है, और ये मौसम का साथी है। भारत में बारिश के मौसम हो, सर्दियों का हो और किसी भी तरह का हो तो पकौड़े हमारे घर में सबसे पहले बनाए जाते हैं। वहीं श्रोता ने कहा है कि सब्जियों की जो एक साथ इकट्ठे करके आप पकौड़े बना सकते हैं, जैसे प्याज है, आलू है ना, इनको काट लें, हरी मिर्च है इसके भी काट लें, अदरक को भी, अदरक भी पकौड़ों के बीच में जब मुंह में आती है ना बहुत स्वादिष्ट लगती है, और आधा छोटा चम्मच हल्दी, अजवाइन, नमक और पाउडर मिर्च का पाउडर ले लें। पकौड़ों को कुरकुरा तलने के लिए 1 चम्मच चावल का आटा लेना बहुत जरूरी है, फिर कॉर्न स्टार्च भी ले सकते हैं, और तलने के लिए सरसों का तेल ले लें। साथ ही उन्होंने कहा घोल को तैयार करें, एक बड़े बाउल में बेसन, हल्दी, अजवाइन, नमक, लाल मिर्च और कटी हुई हरी मिर्च डाल दें, अदरक डाल दें, सब्जियां मिलाएं, इसमें कटे हुए प्याज, आलू डालें, पानी डालें, थोड़ा थोड़ा थोड़ा पानी डालें, थोड़ा गाढ़ा और चिकना घोल बनाएं, ध्यान दें कि घोल ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए ताकि ये सब्जियों पर अच्छी तरह से कोट हो जाए, और फ्राई करें कढ़ाई के माध्यम से, आंच गर्म रखें, तेल गर्म होने पर चम्मच से छोटे छोटे पकौड़े तलें और कुरकुरा होने तक इन्हें रखें, पकौड़ों को टिश्यू पेपर पर निकालें ताकि अतिरिक्त तेल निकल जाए और छम

0: बारिश में गर्मा गर्म खाएं और खिलाएं।
1: बिल्कुल। और एक हमारे जो श्रोता है वो एक बहुत अच्छा सा उन्होंने दाल की पकौड़ी का बताया है रेसिपी, तो चना का दाल 4-5 घंटे के लिए भिगो लें, इसमें थोड़ा चावल भी भिगा लें, अब इन्हें दरदरा पीस लीजिए, इसके साथ लहसुन मिर्च अदरक भी पीस लीजिए, पीसते समय कम पानी, जब पीस रहे हो तो कम पानी का प्रयोग करें, नहीं तो ये पतला हो जाएगा तो बढ़िया बनाने में मुश्किल होगी। अब इसमें हल्दी नमक बारीक कटी हुई हरी मिर्च कलौंजी अजवाइन मिलाकर रख लें, धनिया पत्ती भी काट कर मिला सकते हैं, पर बारिश के दिनों में हरी पत्तियों का प्रयोग कम ही करें। कढ़ाई में सरसों का तेल गरम करें, इसमें थोड़ी सी हींग का टुकड़ा डाल दीजिए। अब छोटी छोटी दाल की पकौड़ियों को तेल में तल लीजिए, इसे किसी भी चटनी के साथ परोसें, और बिहार में इस दाल की पकौड़ी को कचरी बोला जाता है, इसे सरसों की चटनी आम की खटाई की चटनी के साथ परोसा जाता है। दाल में आप चना की दाल के अलावा मसूर की दाल मूंग की दाल का भी आप पकौड़ा बना सकते हैं, किसी भी दाल को भिगो जैसे मैं उसमें 2 चम्मच चावल जो 2 चम्मच रहता है चावल वो जरूर डालें आप।
0: तो पकौड़े बहुत खा लिए, गीतों का आनंद
1: ही ले लेते हैं पकौड़े खाते खाते।

0: जी तो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों के शहर में झिरझिर झिरझिर बरसा बरखा जो है बरसे और उनका मन भी इसी तरह से हर्षे है ना। और इसी उम्मीद के साथ अब कार्यक्रम का समय तो हमें समाप्त करना होगा
1: जी।
0: तो कार्यक्रम सखी सहेली से मंदाकिनी जोशी और
1: आरती श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार
0: नमस्कार।
1: कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
0: सखी सहेली।

0: राज्य के मेहमान।
1: स्वागतम।

0: आज के मेहमान श्रोताओ, आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं जाने माने लेखक हरिशंकर राढ़ी से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग।
1: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है वरिष्ठ साहित्यकार, कवि, कथाकार, व्यंग्यकार, गजलकार, निबंधकार, आलोचक, समीक्षा लेखक और अनुवादक संपादक हरिशंकर जी राढ़ी साहब को। हरिशंकर जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका मंदाकिनी जी मुझे यहाँ बुलाने के लिए।
1: जी, कैसे हैं आप?
2: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
1: हम भी अच्छे हैं और आज एक लंबी बातचीत आपसे करने वाले हैं।
2: जी अवश्य।
1: आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ और आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई?
2: जी, मेरा जन्म 1964 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के एक पिछड़े क्षेत्र में हुआ था। मेरी माता जी अध्यापिका थी और उन्होंने शिक्षा पर शुरू से ही बड़ा जोर दिया। मेरी प्राथमिक शिक्षा गांव में हुई, उसके बाद मैंने 12वीं तक की शिक्षा पास के कस्बे के इंटर कॉलेज में किया। उच्च शिक्षा के लिए मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय की तरफ गया, वहां से मैंने बीए किया और 1988 में मैंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। 1989 में मैंने पूर्वांचल विश्वविद्यालय से बीएड किया और उसके बाद दिल्ली में मेरी सरकारी विद्यालय में नियुक्ति हो गई। वहां मैं शिक्षण कार्य करता रहा और अभी 2 साल पहले मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ।
1: जी, तो आप एक अध्यापक के रूप में कार्य करते रहे।
2: जी,
1: तो इस अध्यापन के दौरान ही आपकी जो है साहित्य के प्रति रुचि पैदा हुई या ये रुचि पहले से ही थी, बचपन से ही?
2: मुझे जहाँ तक याद आता है कि मैं किशोरावस्था से ही साहित्य में रुचि लेने लगा था और कुछ तुकबंदियां, कुछ कविताएं, विद्यालय के लिए कुछ नाटक, इस तरह की चीजें लिखने लगा था। वो किशोर मन के व्यक्ति थी, देशभक्ति के गीत होते थे, विकास के गीत होते थे। लेकिन उसके बाद मैं गंभीर साहित्य से जुड़ा, पढ़ने लगा, बहुत सारे साहित्यकारों को पढ़ा और दिल्ली में आने के बाद मैंने औपचारिक लेखन शुरू कर दिया था।
1: जी, तो हरिशंकर जी, आप एक प्रखर भाषाविद हैं, अनेक पुस्तकों की लेखनी आपने की है, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषा के आप ज्ञाता हैं। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि कोई विशेष भाषा आपके विचारों की गहराई को सीमित करती है या भाषा हमेशा विचारों की विस्तारक होती है?
2: जी नहीं मंदाकिनी जी, मुझे लगता है कि जितनी भी भाषाओं का ज्ञान हो, मनुष्य उतना ही मजबूत, उतना ही सुदृढ़ और उतने ही बड़ी सोच का हो जाता है।
1: जी,
2: तमाम भाषाओं को जानने की मेरी इच्छा थी, 3 भाषाओं पर ही मेरी कुछ पकड़ हो सकी है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत पर। मुझे बल्कि इस बात का कई बार मलाल होता है कि मैं 4-6 भाषाएं और क्यों नहीं जान सका। कुछ देसी बोलियों को भी मैं जानता हूँ, ठीक से उनको बोलता भी हूँ। तो भाषाएं पुल का काम करती है, जोड़ने का काम करती है और हर भाषा में कुछ न कुछ अतिरिक्त ज्ञान होता है, उसे प्राप्त करके अपने विचारों को, अपने साहित्य को आगे बढ़ा सकते हैं। ये हमेशा जोड़ती है, तोड़ने का काम नहीं करती है भाषाएं।
1: तो हरिशंकर जी, आपने तो व्यंग्य विधा, ललित निबंध और यात्रा संस्मरण लिखे हैं, ये लेखक बनने की शुरुआत कब और कैसे हो गई?
2: जी, जब मैं दिल्ली में आया तब तक मैं साहित्यिक पत्रिकाएं पढ़ता था, हरिशंकर परसाई को पूरा पढ़ चुका था।
1: अच्छा।
2: धर्मयुग, कादंबरी जैसी पत्रिकाएं मैं नियमित रूप से पढ़ता था, पत्रिकाओं को पत्र लिखता था। सामान्यतः लेखन की शुरुआत यहीं से होती है। यहाँ पर मुझे लगा कि मुझे भी कुछ लिखना चाहिए और मैंने सबसे पहले एक कहानी लिखी और वो कहानी उस समय की प्रसिद्ध पत्रिका जो महिलाओं की थी, मनोरमा में प्रकाशित हुई 1994 में। मनोरमा पत्रिका की उस समय 1 लाख से कम प्रतियां नहीं निकलती थी और वो पढ़ाई लिखाई का जो था, तो उसमें जब पहली कहानी प्रकाशित हो गई तो मुझे लगा कि नहीं, जब मैं लिख सकता हूँ, मेरा बड़ा उत्साह वर्धन हुआ और वहां से मैं कहानियां लिखना शुरू कर दिया। बाद में दूसरी विधाओं में आ गया।
1: तो पहली कहानी कौन सी थी आपकी?
2: मेरी पहली कहानी थी जो मनोरमा में छपी थी, उसका शीर्षक था अपराजेय और वह एक ऐसे मुद्दे पर थी कि एक पीड़िता जो किसी संबंधी से बलात्कार का शिकार होती है और उसका एक रिश्तेदार बाद में उसको स्वीकार कर लेता है और उनका जीवन बड़ा सुखद निकलता है, कहीं ना कहीं से यह महिला के उत्थान के की ओर लेके जाते थे।
1: जी जी, जी। हरिशंकर जी, आपने लगभग 500 रचनाएं लिखी हैं, तो ये 500 रचनाएं अलग अलग विधाओं में हैं?
2: जी।

0: बहुत सारी राष्ट्रीय स्तर की पत्र पत्रिकाओं में आपकी कहानियां छपी हैं, उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए।
1: जी, कहानियां मैंने जो लिखी वो बड़े लंबे दौर में लिखी। मैं कहानी विधा का इतना बड़ा प्रसारक तो नहीं हो पाया, लगभग 20 कहानियां लिखी मैंने, लेकिन जो कहानियां मैंने लिखी हैं वो कहानियां देश की प्रमुख पत्रिकाओं में जैसे हंस
0: जी,
1: वागर्थ, आजकल और तमाम दूसरी लोक पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं। उन कहानियों को स्वीकृति मिली है, उस पर पत्र आए, पाठकों के फोन आए और वे कहानियां कहीं न कहीं स्त्री विमर्श से जुड़ी हुई है। ज्यादातर मेरी लिखी हुई कहानियां जो समाज को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर ले जाती है नकारात्मकता को दूर करके।
0: जी, तो आपने जिन पत्रिकाओं का नाम लिया ये लगभग राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाएं हैं, और मुझे ध्यान है कि हमारे घर में ये पत्रिकाएं आती थी और इन पत्रिकाओं को पढ़ा करते थे। उस समय हम जब कहानियां पढ़ते थे तो हमारी समझ से ऊपर निकल जाती थी, लेकिन धीरे धीरे पता चला कि राष्ट्रीय स्तर की बहुत ही सारगर्भित कहानियां इन पत्रिकाओं में स्थान पाती
1: हैं।
0: तो आपकी कौन सी कहानी आपके सबसे करीब है?
1: मेरे सबसे करीब कहानी या तो जो पहली कहानी थी अपराजेय जो मनोरमा में छपी थी, या फिर दूसरी कहानी जो हंस में छपी थी जिसका शीर्षक था उसका आकाश।
0: उसका आकाश
1: जी, ये कहानी मुझे बहुत प्रिय रही है और इस कहानी ने पाठकों में एक विमर्श पैदा किया था। उस पर पत्रिका में भी अगले अंकों में उस पर समीक्षाएं आई थी, उसका जिक्र हुआ था और कुछ पाठकों ने मुझे निजी तौर पर पत्र लिखकर के या फोन करके उस पर बात की थी।
0: जी, तो कहानी लिखते लिखते अचानक व्यंग्य विधा, ललित निबंध और यात्रा संस्मरण की ओर आना कैसे हुआ?
1: जी, ये सब मुझे लगता है कि एकदम स्वाभाविक रूप से हुआ था। कहानी लिखना मैंने शुरू किया लेकिन कहानियां मेरी यथार्थ पर आधारित होती थी। किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था
0: जी।
1: हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। भाषा पर तीन भाषाओं को पढ़ने से मुझे लगा कि थोड़ी पकड़ मेरी हो गई है और जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं, तो वो स्वाभाविक रूप से मैं व्यंग लिखने लगा। और ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई
0: जी।
1: और व्यंग में ही मैंने सबसे ज्यादा लिखा है, व्यंग में सबसे ज्यादा मेरी पुस्तकें आई हैं और व्यंग के विमर्श पर भी मैंने काम किया है
0: जी। तो समाज में इतनी विसंगतियां हैं राणी जी, लेकिन व्यंग लिखने का विचार आपके मन में सबसे पहले कब और कैसे आया होगा?
1: जी, एक घटना हुई थी राजनीतिक। उत्तर प्रदेश में एक सरकार गिरी थी और दो तीन राजनीतिक दलों को जोड़ करके, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी मुख्यमंत्री ने एक सरकार बना ली और उसमें मंत्रियों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई
0: जी।
1: कहीं न कहीं ये विसंगत थी कि हमारे प्रदेश के, हमारे देश के जो संसाधन हैं उन सबका प्रयोग इतने बड़े मंत्रिमंडल पर होगा और ये जोड़ तोड़ करके बनाया गया संगठन कभी चलेगा नहीं। वहीं से मेरा पहला व्यंग शुरू हुआ था और उसके बाद जब उसकी प्रशंसा हुई, उत्साहवर्धन हुआ, तो मैं और आगे लिखता गया
0: जी। यानी वो प्रोत्साहन आपको उस घटना के बाद
1: जी,
0: मिला
1: जी।
0: तो राडी साहब, बातचीत तो हमारे बीच चल ही रही है, इस बीच एक आपकी पसंद का गीत सुन लिया जाए।
1: मुझे थोड़ा सा मेलोडी वाले गाने बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, तो लता मंगेशकर जी का एक गीत है फिल्म ममता से, रहे ना रहे हम महका करेंगे।
0: क्या
1: बड़ा सकारात्मक गीत है, मुझे बहुत अच्छा लगता है।
0: बहुत सुंदर क्लासिक गीत है ये, आइए सुनते हैं आपकी पसंद।

0: हरिशंकर जी, बात चल रही थी आपके व्यंग्य लेखन पर, और आपने व्यंग्य विधा पर काफी लिखा है, जैसे कि युधिष्ठिर का कुत्ता और गिद्धों का स्वर्णकाल, अंधे पीसे और साहित्य के शनिदेव, ये सबकी लेखन यात्रा के बारे में आप हमें थोड़ा बताइए।
1: जी, मैंने व्यंग्य लेखन 1998 से शुरू कर दिया था और मैं व्यंग्य में सबसे अधिक प्रभावित था हरिशंकर परसाई से।
0: जी,
1: व्यंग्य के पितामह है वो, और उनके रचनावली की 6 खंड है वो मैं सारे पढ़ चुका था। पहले जब मैं व्यंग्य लिखना शुरू किया तो मेरे व्यंग्य बड़े विस्तृत होते थे, 3,000 से 3,500 शब्दों के। ज्यादातर वो व्यंग्य मेरे पहले व्यंग्य संग्रह युधिष्ठिर का कुत्ता में संग्रहित है। इसमें युधिष्ठिर का कुत्ता एक व्यंग्य है जिसमें कुत्ते को एक तरफ रख करके उससे तुलना करते हुए मानवीय स्वभावों की खिंचाई की गई है। कुत्ते में बहुत सारे अच्छे गुण होते हैं, लेकिन मनुष्य उन गुणों को ना लेकर के उनके दूसरे गुणों को लेता है, जैसे एक कुत्ता किसी दूसरे अपरिचित पर भौंकता है।
0: जी।
1: ये सीधी सी बात होती है अगर उसकी मानसिकता को समझा जाए, तो जब वो नए कुत्ते पर भौंकता तो उसे डर होता है कि कहीं ना कहीं ये मेरे साम्राज्य पर, मेरी टेरिटरी पर कब्जा करने आया है। यह प्रवृत्ति मनुष्य में भी पाई जाती है। और दूसरी बात यह होती है मनुष्य में कि थोड़े से स्वार्थ के लिए वे ये नहीं देखते कि किसके आगे पूंछ हिला रहे हैं। मनुष्य को मेरा मानना है कि हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, और यह बात कि आप कहीं ना कहीं से कुछ कुत्ते के दुर्गुणों को ले लें तो आपको सत्य के पथ से हटाती है। वैसे युधिष्ठिर का कुत्ता अपने आप में धर्म का प्रतीक है, लेकिन उससे हमारा कितना विचलन हुआ है, यह व्यंग्य जो मेरा है उसी को दिखाता है। जिस व्यंग्य को मैंने पूरे पुस्तक का शीर्षक बनाया, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस व्यंग्य संग्रह को पसंद किया गया।
0: जी।
1: उसके बाद दूसरा व्यंग्य संग्रह मेरा आया गिद्धों का स्वर्णकाल। इसके आप संकेत समझें, क्योंकि व्यंग्य जो होता है वह अभिधा में नहीं, लक्षणा में भी नहीं, बल्कि शब्दों की तीसरी शक्ति होती है व्यंजना, जो बहुत कुछ संकेतों में कह जाती है या कई बार उल्टा अर्थ निकलता है उसको प्रदर्शित करता है। एक बड़ा त्रासद समय हमने देखा कोरोना काल का, जिसमें एक तरफ तो महामारी थी, दूसरी तरफ हमने मनुष्य का बड़ा विकृत चेहरा देखा, जिसमें लोग एम्बुलेंस में कमाई कर रहे हैं, दवाइयों की चोरबाजारी हो रही है, लाशों के यहां वहां फेंका जा रहा है।

0: लाशें एक तरफ गिर रही हैं, तो उस समय मेरे मन में यह विचार आया था कि ये तो हम गिद्धों के स्वर्ण काल में रह रहे हैं, ये गिद्धों का काल है, मनुष्यों का काल नहीं है। चारों तरफ मौतें हो रही थी और हम उस आपदा को अपने लिए अवसर में बदल रहे थे। तो ये पूरा संग्रह गिद्धों का स्वर्ण काल कोरोना काल में लिखे गए मेरे सारे व्यंग जितने उनका संग्रह है, और उस त्रासद स्थिति पर क्या क्या दृष्टिकोण रहे हैं इसको दिखाने का प्रयास किया गया है।
1: जी।
0: तीसरा जो है वो सांधे पीछे है, ये हमारी व्यवस्था में मशीनरी में एक परंपरा है, ये शीर्षक अपने आप में व्यंग है। पूरा मुहावरा है कि अंधे पीछे कुत्ते खाएं। अंधे पीछे किस लिए काम कर रहे हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे हैं। प्रतीकात्मक रूप से किसी परिपाटी को चलाए जाना है, काम करने के लिए काम किया जाना है, उद्देश्य का पता नहीं है।
1: बिल्कुल।
0: और उसका दुरुपयोग करने वाले दूसरे हैं, जो कि कुत्ता जी ने समझा गया है या कहा गया है। तो इसमें आपको छोटे आकार के व्यंग मिलेंगे, क्योंकि अब तक आते आते पूरा साहित्यिक परिदृश्य बदल गया, हम आ गए मोबाइल युग में जिसमें लोगों के पास समय नहीं है, छोटी रचनाएं पढ़ना चाहते हैं, कोई तीन पेज चार पेज का व्यंग या कोई भी रचना नहीं पढ़ना चाहता है। अखबारों ने पत्रिकाओं ने स्पेस कम कर दिया, अखबार और उसमें कालम खत्म हो गए, पत्रिकाएं बंद होती गई, तो थोड़ी थोड़ी जगह लगे देने लगे। तो इसलिए इस कारण से भी हमें एक रणनीतिक बदलाव करना पड़ा कि हम अपने आकार को समेटें। अब तो इसमें आपको जो व्यंग मिलेंगे 800, 1000, 1200 शब्दों के मिलेंगे, उसमें इसका है। और साहित्य के सनिधि मेरा चौथा व्यंग संग्रह है जो भी 2026 में ही आया है। इसमें सबसे बड़ी विसंगति यह है कि हम कह सकते हैं कि अगर चिकित्सक बीमार हो जाएगा तो रोगी का क्या इलाज करेगा। बहुत सारी विसंगतियां हम साहित्यकारों में भी हैं, और वही विसंगतियां हैं जो मनुष्य में पाई जाती हैं, पाखंड की, उतार चढ़ाव की, गिराने की, जगाड़ने पछाड़ने की, उसको केंद्रित रखते हुए है व्यंग साहित्य का संग्रह। यह भी इस पूरे संग्रह का एक व्यंग है। उसमें और भी जो व्यंग है वो राजनीतिक सामाजिक घटनाक्रमों पर है। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहूंगा, व्यंग ये देखता है कि समाज में क्या होना चाहिए और क्या है,
1: हो रहा है,
0: आदर्श और यथार्थ के बीच की जो स्थिति है उस खाए को थोड़ा सा कड़े शब्दों में पाटने का प्रयास जब किया जाता है तो व्यंग होता है, और उसकी झलक आपको साहित्य के सनिधि में मिलेगी।
1: जी, तो व्यंग्य में अगर हम बात कर रहे हैं परसाई युग से अब तक कितना बदलाव आया है, आप क्या महसूस करते हैं?
0: जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। व्यंग देखिए परसाई के पहले से है, लेकिन परसाई को हम व्यंग का औपचारिक अधिष्ठाता कह सकते हैं। व्यंग सबसे अधिक मिलता है कबीर में, और हम व्यंगकार दावा करते हैं कबीर के वंशज हैं, हालांकि कबीर का वंशज होना आसान काम नहीं है। जिस निर्भीकता से कबीर ने कहा है वो निर्भीकता बहुत कम लोगों में मिलती है। कबीर ने कहा, तुलसीदास के ग्रंथों में भी व्यंग मिलता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी व्यंग लिखा है, लेकिन परसाई ने व्यंग को स्थापित किया।
1: जी।
0: उस समय की परिस्थितियां कुछ और थी, उस समय सामाजिक पतन इतना नहीं हुआ था जितना अब हो गया है।
1: जी।
0: राजनैतिक विसंगतियां इतनी नहीं बढ़ी थी जितनी अब बढ़ी है, लेकिन परसाई ने उस समय बहुत दूरदर्शिता दिखाते हुए इन चीजों को पकड़ा था। परसाई के समय में एक आजादी थी कि व्यंग को लंबा लिख सकते थे। कितना भी लंबा आप लिखेंगे, पत्रिकाएं छापेंगे, उस समय धर्मयुग जैसी पत्रिकाएं थी जिन्होंने व्यंग को नियमित रूप से प्रकाशित किया, धर्मवीर भारती जैसे संपादक थे जो साहित्य के बहुत बड़े जौहरी थे, बहुत बड़े पारखी थे। अब तो दुखद वैसी चीजें नहीं रह गई।
1: पाठक भी वो एक बड़ा वर्ग था, पाठक का।
0: हाँ, बहुत बड़ा
1: जो वर्ग पढ़ा करता था।
0: बहुत बड़ा वर्ग था पाठक का, और व्यंग साहित्य में उन दोनों स्थापित हो रहा था, लोगों को नई चीज मिल रही थी, मनोरंजक चीज मिल रही थी। तो परसाई के समय एक तो व्यंग की लंबाई ज्यादा हुआ करती थी, उस समय की स्थितियां कुछ दूसरी थी। अब धीरे धीरे विसंगतियां बढ़ी हैं, विसंगतियों के प्रकार बढ़े हैं, समय कम हुआ है तो व्यंग का आकार कम हुआ है। और एक चीज मुझे थोड़ा सा नकारात्मक लगती है, समाज का शिक्षित होना तो बहुत ही आवश्यक है, लेकिन उच्च स्तरीय साहित्य सभी लोग नहीं लिख पाते हैं।
1: जी।
0: जैसे साहित्य की हर विधा में शौकिया लेखकों की भीड़ बढ़ी है, उस तरह व्यंग में भी लोग आ गए हैं जिनको व्यंग की समझ नहीं है। तो थोड़ा सा एक चुनौती बढ़ी है कि व्यंग को आप परसाई के स्तर पर क्या रख पा रहे हैं, वो अब थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है।
1: जी बिल्कुल
0: जी।
1: क्योंकि जगह जगह एक लेखक वर्ग इकट्ठा हो गया है, हर शहर में लेखक वर्ग है, और व्यंग विधा में हाथ आजमा रहा है। अब कितना वो व्यंगी है, कितना क्या है, कई बार डिजिटल दुनिया में जब हम देखते हैं मीम्स बनते हैं, हम उसे भी व्यंग समझ लेते हैं और लेखन यात्रा शुरू कर देते हैं। तो आपसे अगला सवाल मैं करूंगी, लेकिन उससे पहले आपकी पसंद का एक गीत हम सुन लेते हैं राडी जी।
0: जी जरूर जरूर, मुझे गीत बहुत पसंद है, मैं संगीत प्रेमी व्यक्ति हूँ और मुझे एक गीत बहुत पसंद है किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी का, आराधना फिल्म से, कोरा कागज था ये मन मेरा लिख लिया नाम
1: इसमें तेरा। तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: एक कोरा कागज लेखक के सामने भी होता है और तभी वो अपने मन की बात उस कागज पर लिखता
1: जी,
0: है राडी साहब
1: जी।
0: व्यंग की बात हम कर रही हैं तो व्यंग में हास्य की उपस्थिति कितनी जरूरी है, क्या मानते हैं आप, और क्या व्यंग हास्य के बिना नहीं हो सकता?
1: जी, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मन राखनी जी। यह हमारे व्यंगकारों में भी विमर्श का विषय रहता है। आप अगर कबीर के व्यंग देखें, जो कि स्वतंत्र व्यंग नहीं है, तो कबीर के व्यंग में कहीं आपको हास्य नहीं मिलेगा, बड़ी चुभन मिलेगी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के व्यंग हैं, उसमें हंसी मिलती है, हास्य है। परसाई के कुछ व्यंग ऐसे हैं जिसमें खूब हास्य है
0: जी।
1: जैसे आप रानी नागपनी की कहानी ले लीजिए, वो उपन्यासिका है। इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, उसमें भी खूब व्यंग है। इंस्पेक्टर माता दीन के बाद इंस्पेक्टर राम बाबू की ट्रेनिंग, राम सिंह की ट्रेनिंग, उसमें भी हास्य है। लेकिन परसाई के भी यही ऐसे कई व्यंग हैं जिसमें हास्य नहीं है
0: जी।
1: प्रारंभिक दौर में हास्य व्यंग के साथ जुड़ा था तो अच्छा लगता था, धीरे धीरे हास्य का स्तर गिरता गया। हालांकि मैं हास्य को बड़ा जरूरी मानता हूं जीवन के लिए, हास्य एक मान्यता प्राप्त रस है हमारे यहाँ साहित्य में, हास्य होना जरूरी है। हास्य अगर उचित नहीं है, उसकी संगति ठीक नहीं है, तो वह व्यंग की तीव्रता को, गहनता को कम करता है
0: जी।
1: आपने मीम की बात की है, मीम्स हमको एक सेकंड के लिए मुस्कुराने के लिए विवश करते हैं, लेकिन हम अगले मिनट भूल जाते हैं। व्यंग वही बहुत दिन तक प्रभावशाली रहता है जिसमें गंभीरता होती है और हास्य कम होता है। अगर स्वाभाविक हास्य आ गया तो उसे परहेज नहीं करना चाहिए, लेकिन यह जबरदस्ती हास्य डाला गया है या यह समझा गया है कि व्यंग हास्य के बिना नहीं हो सकता है, तो मेरे ख्याल से यह भ्रम है। हास्य और व्यंग दो चीजें अलग अलग हैं, ये एक हो सकती हैं, लेकिन इनकी संगत, इनका साज ठीक होना चाहिए
0: जी। बहुत बड़ी बात कही आपने, बिल्कुल सही कहा। तो राडी साहब, जब अभी हम बात कर रहे थे कि डिजिटल युग में जहां सोशल मीडिया पर मीम्स और छोटे छोटे व्यंग हमें देखने को मिलते हैं, पढ़ने को मिल रहे हैं, वहां छोटे छोटे व्यंग चल रहे हैं, ऐसे में पारंपरिक व्यंग के लेखन का भविष्य ये कैसा लगता है आपको?
1: जी, पारंपरिक व्यंग का भविष्य, यानी हम जिसे कहें कि लंबाई वाले व्यंग
0: जी,
1: जो 4,000-5,000 शब्दों के होते थे या उससे बड़े भी होते थे या 3,000 का भी मान लें, उनकी मांग घटती जा रही है। और खास करके कोई भी लेखक सोचता है कि जो लिख रहा है वो पाठकों के सामने जाए, क्योंकि लिखा जा रहा पाठक के लिए, जनता के लिए। उन तक पहुंचाने वाले जो माध्यम है, खास करके समाचार पत्र, उन्होंने इसकी लंबाई कम कर दी है। अब वो यहां तक हो गया है कि 250-300 शब्दों का व्यंग मांगते हैं, और कोई व्यक्ति अगर व्यंग लिख करके रखता जाएगा, पाठक तक नहीं पहुंच रहा है, तो उसके लिखने का कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए जो लंबे व्यंग हैं वो कुछ पत्रिकाएं छाप तो रही हैं, या फिर आप उनको संग्रहों में डाल सकते हैं। आज का जीवन इतना तेज हो गया है कि लोग लंबी रचनाएं देखकर पढ़ने से कतराते हैं
0: जी।
1: हालांकि असली व्यंग उन लंबी रचनाओं में ही होता है, ठीक उसी तरह से जैसे टेस्ट मैच होता है
0: जी।
1: आप लंबी रचना में व्यंग कितना संभाल पाते हैं, ये देखने वाली बात होती है। मुझे नहीं लगता है कि बहुत लंबे व्यंग भविष्य में ज्यादा चल पाएंगे। हाँ, यह है कि बहुत छोटे भी उसकी तीव्रता को कम करते हैं, मध्यम आकार के व्यंग चलते रहेंगे। एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा कि व्यंग में उपन्यास काफी लिखे गए हैं, लेकिन आज तक श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी का मुकाबला कोई कर
0: नहीं हो पाया जी।
1: ऐसा लगता है कि यह व्यंग अपने आप लिखा गया था, क्योंकि वैसा व्यंग उपन्यास कोई लिख नहीं पाया। कुछ और लोगों ने, हमारे समय के व्यंगकारों ने व्यंग उपन्यास लिखे हैं, ज्ञान चतुर्वेदी ने 7-8 व्यंग उपन्यास लिखे हैं, कई और लोगों ने लिखा है, नाम किसका ले किसका ना ले, वो श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी की तीव्रता उसमें नहीं आ पाई है। इसलिए मुझे लगता है कि उपन्यास तो चल जाएंगे अगर उसमें व्यंग के तत्व होंगे, लेकिन स्वतंत्र व्यंग बहुत लंबे भविष्य में चलने वाले नहीं है, थोड़ा मध्यम आकार के व्यंग चलते रहेंगे। मेरा अनुमान ऐसा है,
0: क्योंकि समय कम है लोगों के पास। और आप जैसे एक कैरिकेचर आता था या कार्टून एक कोने में अखबार के आता है, तो हम उसे देखकर और उसमें जो लिखा गया उसे पढ़कर मुस्कुराकर ही हम इतिश्री कर देना चाहते हैं, क्योंकि गागर में सागर

0: भी कहा जाता है कि व्यंग दोहरी मार करता, दुधारी तलवार है। व्यंग हमेशा सत्ता के विरुद्ध लिखा जाता है, लेकिन आजकल कुछ लोगों को भ्रम है कि सत्ता का अर्थ केवल किसी राजनीतिक दल से है जो किसी देश या प्रदेश में सत्तासीन है। वह सत्ता तो है निसंदेह, लेकिन राजनीतिक सत्ता के अलावा बहुत सारी सत्ताएं हैं। धर्म की सत्ता है, पाखंड की सत्ता है, अंधविश्वास की सत्ता है, सांप्रदायिकता की सत्ता है, यहाँ तक कि पंचायतों की भी सत्ता है और कई बार परिवार में मुखिया की भी सत्ता हो जाती है
1: जी।
0: तो अगर सत्ता कोई विसंगतिपूर्ण कार्य कर रही है, जो समर्थ है वह विसंगतिपूर्ण कार्य कर रहा है, तो व्यंग उस पर लिखा जाएगा। व्यंग कभी भी किसी शोषित वंचित पीड़ित पर नहीं लिखा जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई भूखा व्यक्ति एक रोटी चुरा लेता है तो वह व्यंग का पात्र नहीं है, वह सहानुभूति का पात्र है। जो लोग समाज को देख रहे हैं, संभाल रहे हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, अगर उनके चरित्र में कहीं विसंगति है, पाखंड है, उनके विरुद्ध व्यंग लिखा जाना चाहिए। व्यंग सत्ता के खिलाफ होगा, लेकिन वह सत्ता जो जनता के या आम जन के खिलाफ होती है उस पर व्यंग लिखा जाना चाहिए। कमजोर पर कभी भी व्यंग नहीं लिखा जाना चाहिए।
1: जी, जी। यानी कि विषय का चयन भी इसी आधार पर होता है कि हमने क्या चुना है।
0: जी, और मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि आप तो जो व्यंग लिखा है उसका उद्देश्य क्या है। व्यंग हमेशा उद्देश्यपूर्ण होता है। आप किसी ऐसी चीज पर व्यंग लिख दें, बादल पर व्यंग लिख दें, बादल उसको सुनने नहीं आ रहा, समझने नहीं आ रहा है। किसी पशु पर लिख दें, वो सुनने नहीं आ रहा, समझने, उसमें सुधार नहीं होना है,
1: मतलब वैचारिकता होनी चाहिए, वैचारिक बातचीत।
0: उसको आप प्रतीक मान करके लिख सकते हैं, किसी पशु को या किसी भी तत्व को आप प्रतीक बना करके व्यंग लिख सकते हैं और वो संकेतों में अपनी बात को गंभीरता पूर्वक कह जाए। तो व्यंग हमेशा उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, निरर्थक निर्देश नहीं होना चाहिए। साहित्य तो कोई भी नहीं होना चाहिए निर्देश।
1: जी, हरिशंकर जी, बात चल रही थी आपकी व्यंग लेखन पर और बातचीत तो हमारे बीच चल ही रही है
0: जी।
1: तो एक गीत सुन लिया जाए इस बीच।
0: जी जरूर, कुदरत फिल्म का गीत है, किशोर कुमार जी का ही। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना।
1: क्या बात है?
0: ये मैं चाहूंगा कि आप सुनवाए।
1: आइए सुनते हैं।

0: हरिशंकर जी,
1: जी
0: तो आप शुरू में कहानियां लिखते थे, आपने कहा कि आप महिला प्रधान कहानियां लिख रहे थे, तो आपने एक गंभीर साहित्य के बजाय व्यंग्य विधा को क्यों चुना?
1: यह आपकी बात सही लगती मुझे कि यह भी एक विसंगति है या विलंबना है कि समाज में कुछ लोग अभी ऐसे हैं, साहित्यकारों में हैं, आलोचकों में हैं, जो व्यंग्य को गंभीर कर्म नहीं मानते। और मंदाकिनी जी, आपको जानकर के हैरानी होगी कि साहित्य में अभी व्यंग्य पर कोई बड़ा विमर्श या कोई बड़ा आलोचक नहीं हुआ है।
0: जी।
1: व्यंग्य का अभी कोई आलोचना शास्त्र नहीं बना है, क्योंकि कई बार तो कहा जाता है कि व्यंग्य बिरादरी से बाहर है। लेकिन व्यंग मेरा मानना है कि बहुत ही गंभीर किस्म का लेखन होता है, बहुत गंभीर साहित्य होता है। उसमें आपको भाषा की पकड़, कहने का ढंग, और जो व्यक्ति समाज को हानि पहुंचा रहा है उसको इस प्रकार से प्रहार करना होता है कि वो तिलमिला करके सुधार की तरफ अग्रसर हो।
0: जी।
1: तो मुझे लगता है कि समाज को, साहित्य को सुधारने के लिए व्यंग का होना बड़ा जरूरी है, बशर्ते उसकी भाषा संतुलित हो, गहन हो और अपने लक्ष्य पर सीधा प्रहार करती हो, लेकिन वो प्रहार व्यक्तिगत रूप से नहीं होना चाहिए। तो मेरा मानना है कि व्यंग एक बहुत गंभीर साहित्यिक लेखन है, वो किसी विधा से कमजोर नहीं है।
0: जी, तो हम समझ लेते हैं कि व्यंग केवल एक हास्य की विधा है।
1: जी।
0: और स्त्री प्रधान कहानियां या एक गंभीर लेखन अलग किस्म का लेखन होता है।
1: जी।
0: तो इस भ्रम जाल को आपने हटाया है और मुझे लगता है कि जो श्रोता वर्ग आपको सुन रहा है, इस बदलाव को, इस अंतर को समझ पाएगा।
1: जी, जी।
0: तो क्या पाठकों का व्यंग को समझने का नजरिया बदला है?
1: पाठकों के साथ एक समस्या ये होती है कि पाठक लेखक तो होता नहीं है, उसे हम जो देंगे वो वही लेगा। अगर उसके सामने अच्छे व्यंग जाएंगे तो अच्छे व्यंग पढ़ेगा, अगर उसके सामने खराब व्यंग जाएंगे, खराब व्यंग की श्रेणी में मैं उन व्यंग को रखता हूं जो कि सीधे सीधे किसी पर आरोप लगा देते हैं, सीधे शब्दों में शिकायत कर देते हैं, सीधे किसी दल, किसी पार्टी का नाम लेकर के उस पर आक्षेप लगाते हैं, ये व्यंग नहीं होता है। दुर्भाग्य की बात है कि कुछ लोग आजकल ऐसा व्यंग लेखन कर रहे हैं। व्यंग हमेशा अंदर की सतह में जाके मार करता है, व्यंग प्रवृत्ति पर होता है, व्यक्ति पर नहीं होता है। यह बात पाठक को समझाना होगा और समझाने की जिम्मेदारी हम व्यंगकारों की है, पाठक की नहीं है। हम उसका स्तर उठा रहे हैं कि गिरा रहे हैं, यह हमें देखना है। दूसरा, थोड़ा सा मैं जो हमारे समाचार पत्र के संपादक हैं, पत्रिकाओं के संपादक हैं, उनको भी जिम्मेदारी देना चाहूंगा, वो किस तरह का व्यंग उनके पास पहुंचा रहे हैं, क्योंकि पाठक तो पहुंचाने सीधे जाएगा नहीं, वो संपादक को देगा। तो ये विवेक संपादक में होना चाहिए कि वह जिस व्यंग को प्रकाशित कर रहा है उसकी भाषा, उसकी शैली, उसका प्रहार कितना है। हाँ, ये जरूर है कि आज के जमाने में जब पाठक के सामने मोबाइल है, सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, उसको अपनी पसंद की चीज तुरंत मिलती जा रही है, तो वह उतना महत्व लिखित साहित्य को नहीं देता है, लेकिन अगर उसको अच्छा साहित्य मिलेगा तो वो पढ़ेगा।
0: जी जी। एक लेखक को कहते हैं कि यायावर होना चाहिए।
1: जी।
0: और उसकी जो यायावरी है, उसका जो घुमक्कड़पन है, उसे उसके दिमाग को खोलता है, उसकी लेखनी को खोलता है। तो क्या एक लेखक को यायावरी का शौक होना चाहिए?
1: जी, मंदाकिनी जी ने आपने तो मेरी बात का आधा उत्तर खुद ही दे दिया। लेखक नहीं, मुझे लगता है कि मनुष्य मात्र को यायावर होना चाहिए, घूमना चाहिए। हम किसी चार दीवारी में कैद होकर रह जाएंगे तो हमारे विचारों का, हमारे दृष्टि का विकास नहीं होगा। और हमारे यहाँ एक मुहावरा है, और वो व्यंग्यात्मक मुहावरा है कि कुएं का मेढक होना।
0: जी,
1: ये मुहावरा अपने आप में व्यंग है, कुएं का मेढक होना। तो जब तक आप अपने परिवेश से बाहर नहीं निकलेंगे, यात्राएं नहीं करेंगे, दूसरी संस्कृति का आदान प्रदान नहीं करेंगे,

0: तब तक आपका वैचारिक प्रवाह गतिमान नहीं होगा। आप जब घर से बाहर निकलते हैं, देखते हैं, समझते हैं, घूमते हैं, तो आपको नई संस्कृति, नए लोग, नई भाषा का दर्शन होता है और वहां पर आपको बहुत सारे विचार मिलते हैं। उन्हीं विचारों का पल्लवन हम साहित्य के रूप में करते हैं। हम कैद होकर के केवल मानसिक उड़ान से इतना अच्छा साहित्य नहीं लिख सकते हैं जितना कि हम घूम करके देख करके कर सकते हैं
1: जी।
0: तो मेरा मानना है कि एक लेखक के लिए यायावरी बहुत ही आवश्यक है।
1: लेकिन जो लोग यायावरी नहीं कर पाए, जो लेखक यायावर नहीं बन पाए, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? उनका लेखन किस तरह का रहा होगा? क्या उन्होंने उस बात को महसूस किया होगा, उस अभाव को, कि अगर वो यायावरी करके ये लेखन करते या ये रचनाएं करते तो शायद और ज्यादा दर्शकों के या पाठकों के करीब होते?
0: हमारे विश्व साहित्य की बात करूं मैं तो कुछ लेखक या कवि हम कहें बहुत ही मेधावी हुए हैं, या उनको आप कह सकते हैं उनको प्रकृति प्रदत्त वरदान था। दिव्यांग थे जैसे हमारे यहाँ सूरदास
1: जी,
0: होमर जैसे कवि, इन लोगों ने तो यात्राएं नहीं की थी, लेकिन निश्चित रूप से इनकी जो छठी इंद्री थी वह कहीं हम लोगों से बहुत आगे थी।
1: जी, जी।
0: ऐसे लोग अपवाद स्वरूप होते हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। अगर उनको हटा दिया जाए, ऐसे लोगों को हटा दिया जाए, तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो जो लोग समाज में खुले रहे हैं, घूमते रहे हैं, यात्राएं करते रहे हैं, उनके लेखन में जो विविधता मिलती है वो उन लोगों के लेखन में नहीं मिलती है। प्रायः अपवाद हो सकते हैं जो एक जगह स्थिर रहे हैं। यायावरी साहित्य में आप महापंडित राहुल सांकृत्यायन का नाम जरूर लेना चाहिए
1: जी, जी।
0: जिन्होंने अथातो घुमक्कर जिज्ञासा लिखी, जिन्होंने पूरे तिब्बत से लेकर के दक्षिण भारत यूरोप की यात्राएं करके ग्रंथों को इकट्ठा किया, और मुझे लगता है कि यायावरी का उनसे बड़ा प्रेरणा स्रोत दूसरा कोई नहीं हो सकता है, और यायावरी के कारण ही उनको इतनी भाषाएं आई और उन्होंने इतना बड़ा साहित्य लिखा। तो मुझे लगता है कि विचारों का पल्लवन
1: यायावरी से होता है। दैनिक जीवन में भी हम जितना ज्यादा घूमते हैं तो कई बार आपने देखा होगा कि जो लोग नौकरी करते हैं और जगह जगह ट्रांसफरेबल जॉब होती है वो लोग ज्यादा खुलेपन से जी पाते हैं, बजाय पूरी जिंदगी एक ही शहर में जो लोग निकाल देते हैं।
0: निश्चित रूप से,
1: है ना,
0: निश्चित रूप से।
1: तो जब बात रचनात्मकता की आती है तो घूमना और घूमने के साथ साथ आपको हर एक चीज को समझना बहुत ज्यादा मदद करता है
0: जी।
1: तो राडी साहब, आपकी यायावरी पर भी अब हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले आपकी पसंद का एक गीत सुन लेते हैं।
0: जी जरूर।
2: आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहां हम

0: एक है से गगन के तले, एक है से गगन के तले, एक है से गगन के तले।
1: आपकी जो किताब आई है दर्शन दृष्टि और पांव
2: जी,
1: आपकी यायावरी है इसमें, एक यात्रा संस्मरण है आपका, ये इसके बारे में आप बताइए हमें।
2: जी, यायावरी मेरी प्रारंभिक प्रवृत्ति रही है और घूमना मुझे शुरू से पसंद था। यहाँ तक कि जब मैं अनौपचारिक यात्राएं करता था या मैं लेखक नहीं था, लेखक बनने के बाद मुझे लगा यात्राएं करता रहा कि इनको लिखना चाहिए, संस्मरण के रूप में इनको दर्ज किया जाना चाहिए। और जब मैंने यात्रा संस्मरण लिखना शुरू किया था तो आज की तरह तकनीक नहीं हुआ करती थी, तब यात्राएं मुश्किल थी और गूगल बाबा नहीं थे, या रहे भी होंगे तो सामान्य जन तक पहुंच नहीं थी उनकी
1: जी।
2: किस जगह जाना है उसके लिए बड़ा श्रम करना पड़ता था, कैसे जाएंगे कैसे पहुंचेंगे ये सब देखना पड़ता था। और दूसरी बात यह थी कि जैसे आजकल है तो आप देख लें तमाम ऐसे टीवी चैनल्स हैं जो जगहों को दिखा देते हैं, तमाम लोग व्लॉगर्स हो गए हैं जो यात्राएं दिखाते हैं।
1: बिल्कुल,
2: इसमें आप ऐसे भी सोच सकते हैं फिर इस जमाने में यात्रा संस्मरण की क्या जरूरत है। लेकिन मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि यात्रा संस्मरण एक साहित्यिक विधा है और साहित्यिक विधा केवल मनोरंजन नहीं करती है, मनुष्य को सिखाती है, उसके हित की बातें बताती है। जब एक साहित्यकार यात्राएं करता है खास करके, तो वहां वो जिस जगह पे गया है वहां की संस्कृति, वहां की सभ्यता, वहां के खान पान, वहां के लोग को समझता है और समझ करके वह उनको अपने संस्मरण में दर्ज करता है। अगर हम उनको आज के जो सोशल मीडिया के साधन उनसे जोड़े तो आपको सूचनाएं तो मिल जाएंगी
1: जी,
2: लेकिन वह रस जो है जो संस्मरण में मिलता है, साहित्यकार के संस्मरण में मिलता है, वो इसमें नहीं मिलेगा। मेरा मानना है कि यात्रा संस्मरण को सूचनात्मक नहीं होता है, वो रचनात्मक होता है। वह लोगों के एक दृष्टि देता है और जो उसको पढ़कर की यात्रा करता है उसकी भी दृष्टि खुलती है कि मैं जिस जगह पे जा रहा हूं मुझे क्या देखना है, मुझे क्या समझना है। तो इस तरह के जो यात्रा संस्मरण होते हैं वो संस्कृति को जोड़ते हैं, सभ्यता को जोड़ते हैं और जोड़ते हुए साहित्य को समृद्ध करते हैं। ये काम मैंने अपने यात्राओं में किया है और यात्रा संस्मरण में किया है। मैंने मतलब हर तरह की यात्राएं की हैं, मैंने प्राकृतिक स्थलों की यात्राएं की हैं और धार्मिक स्थलों की यात्राएं की हैं
1: जी।
2: मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं सनातन धर्म के चारों धाम और 12 ज्योतिर्लिंग की यात्राएं कर चुका हूं
1: जी।
2: और वहां पर जाकर के मैंने केवल आस्था की पूजा नहीं की है, वहां के जन समुदाय को, वहां की संस्कृति को समझने का प्रयास किया है। और मुझे तो बड़ी हैरानी होती है कि वो लोग कितने महान थे जिन्होंने पूरे देश में धार्मिक स्थानों को जगह जगह पर बनाया जिससे लोग इसके वशीभूत होकर के पूरे देश की संस्कृति को समझ सकें। नहीं तो ये स्थल एक जगह पर भी बनाए जा सकते थे। 12 ज्योतिर्लिंग जगह जगह फैले हुए हैं, चारों धाम जगह जगह फैले हुए हैं और इसके जो प्राकृतिक स्थल है उनका तो अपना आनंद होता है, प्रकृति जितना तो हमें कुछ दे ही नहीं सकता है
1: जी।
2: जी,
1: तो दर्शन दृष्टि और पांव में आपने इन्हीं ज्योतिर्लिंगों का पूरा
2: जी
1: जोखा लिखा है।
2: हाँ, इसमें केवल ज्योतिर्लिंग नहीं है, आप जैसे शीर्षक से देखेंगे दर्शन
1: दृष्टि और पांव,
2: दर्शन इसमें मेरा श्लेष है, दर्शन उस ज्योतिर्लिंग या चारों धाम के जो विग्रह है मूर्ति उसके दर्शन से भी है, और जो जीवन दर्शन है वह दर्शन भी इसमें आता है। और उस स्थान को देखने की दृष्टि क्या है, उसको देखने की, उसको समझने की दृष्टि क्या है। क्या आप गए यात्रा किए, धार्मिक स्थल पर गए हैं तो वहां आपने दर्शन पूजन किया और आ गए, प्राकृतिक स्थल पर गए हैं तो आपने एंजॉय किया और आ गए, चलते गए चलते आ गए, क्या यही है? नहीं, मेरा मानना है कि जहां आपने दर्शन किया वहां का जीवन दर्शन क्या है इस चीज को देखिए।

0: आपने किसी पर्वतीय या किसी मनोरम स्थल का भ्रमण किया है तो उस पर आपकी दृष्टि क्या है? और पांव यात्राओं से जुड़े होते हैं, बेसिक चीजें हैं। आप जब यात्रा करते हुए अपने मूल चीजों से जुड़े रहते हैं उसको संकेतित करता है पांव। इन सब चीजों को मिलाकर के मैंने धार्मिक स्थलों से लेकर के प्राकृतिक स्थलों की यात्राओं का वर्णन इसमें किया हुआ है।
1: काफी जगह आप गए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मदुराई सिक्किम वगैरह, इन सभी जगहों पर आप गए, अजंता एलोरा पंचमढ़ी, इन सभी का आपने इसमें वर्णन किया है। बस एक काम आपने नहीं किया होगा जो आम जनता करती है कि कहीं भी हम जाते हैं और अपनी सेल्फी खींच लाते हैं।
0: जी जी जी जी
1: आज हमारा जितना भी उद्देश्य है वो यही है कि हम किसी भी धार्मिक या बड़े जगह जाकर सेल्फी जरूर खींच के आते हैं, इतना हमने कमाया है मुझे लगता है।
0: बड़ा आपने महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। मैं देखता हूँ कई बार धार्मिक स्थलों पर जाता हूँ, ज्योतिर्लिंगों में जाता हूँ, जहाँ पर मोबाइल फोन अलाउड है, कैमरा अलाउड है, वहां पर लोग लेके जाते हैं, एक मिनट दो मिनट के उनको दर्शन मिलता है, लेकिन वो खुद दर्शन करने के बजाय मोबाइल को दर्शन कराते रहते हैं। मैं कहता हूं भाई आपको ये चीज तो घर पे टीवी पे मिल जाएगी, आप दर्शन करने गए हैं, आस्था माने तो दर्शन करिए। दूसरी बात, अगर मैं पर्यटक स्थलों की बात करूं तो मैं कहीं प्रकृति में जाता हूं तो प्रकृति में मैं खो जाता हूं। प्रकृति मुझे बहुत प्रिय है। मुझे इस बात की आपको शायद मंदाकिनी जी विश्वास ना हो, मुझे भूल जाता है कि फोटो भी खींचनी चाहिए।
1: जी
0: आते आते टाइम एक दो फोटो खींच लेता हूं मैं, क्योंकि कहीं अपने यात्रा संस्मरण डालना होता है, दिखाना होता है, तो मैं प्रकृति को अपनी आंखों से देखना ज्यादा पसंद करता हूं बजाय मोबाइल कैमरे के।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। और बस चलते चलाते एक गीत और सुनना चाहेंगे हम।
0: जी जरूर।

जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आज से तुम पास डरता नहीं है।

था जाने माने लेखक हरिशंकर राठी से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंधल, संपादन सहयोग झरना सोलंकी का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज का आज के मेहमान कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: आज के मेहमान।
1: स्वागतम।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम, ये आकाशवाणी जैसलमेर है, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 5 बजे हैं। आइए सुनते हैं युवा साथियों का कार्यक्रम

યુવાની સુરન વાળા સગળા યુવા સાથીઓને અન્નપૂર્ણારા ઘણા ઘણા રામ રામ દોસ્તો, ફેર હાજર હો નઈ બાતો રે સાથ મેં આપરી બાતો રો સિલસિલો શરૂ કરા। સબસે પહેલા આજ આપા કિન બારે મેં બાત કરતા તો આ બાત આપને બતાવા। તો દોસ્તો આજ આપા બાત કરતા વૃક્ષારોપણ રે મહત્વ રે બારે મેં, જેડો કી સબને હી પતો હે કી વૃક્ષ લગાવણા કિતા જરૂરી હે। ઓર इन बारे में ही आपने और बात बतावा कि वृक्षारोपण यानी कि पेड़ लगाना आपारे पर्यावरण रे संतुलन और अस्तित्व रे वास्ते अत्यंत ही आवश्यक है। वृक्षारोपण करना पेड़ आपने जीवनदायिनी ऑक्सीजन प्रदान करे है, वायु और जल प्रदूषण ने कम करे है, मिट्टी रे कटाव ने रोके है और वर्षा चक्र ने नियमित रखन रे वास्ते महत्वपूर्ण भूमिका निभावे है। जेड़ो की आप देखा है कि लगातार पेड़ों की कटाई होती जा रही है, तो इन वास्ते दोस्तों जे पेड़ों की कटाई हो रही है तो उन विपरीत अपने पेड़ लगाना भी चाहिए। इन वास्ते ही वृक्षारोपण रो महत्व बहुत ही जरूरी है और इन महत्व ने समझने वास्ते अपने आ बात समझनी जरूरी है कि किन तरह से वृक्षारोपण अपारे जीवन रो आधार है। जड़ो की आप सब जानो हो पेड़ पौधा अपारे जीवन की मुख्य आधार है, अपने सांस लेवन वास्ते शुद्ध ऑक्सीजन देवे है और अपारे द्वारा छोड़ी गई हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड ने सोख लेवे है। इनके बिना जीवन पृथ्वी माथे जीवन की कल्पना भी अपा को नहीं कर सका। पर्यावरण संतुलन ने बनाए रखने वास्ते भी वृक्षारोपण जरूरी है। आज के समय में बढ़ते हुए प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग से अपने पर्यावरण ने खतरों पैदा हो चुकियो है और अधिक से अधिक पेड़ लगाकर आपा भी इन खतरे से लड़ सका। हाँ, जल और मिट्टी के संरक्षण के वास्ते पेड़ जमीन के भूजल स्तर ने बढ़ावे है और मिट्टी ने मजबूती से बांध कर रखे है, जिनसे की बाढ़ और मिट्टी के कटाव रो खतरो कम हो जावे है। प्रत्यक्ष लाभ किन तरह से आपन मिले है, जिनमें फल फूल औषधियां इमारती लकड़ी और छाया आ सब चीजों आपने प्रत्यक्ष रूप से मिल जावे है, लेकिन फिर भी आप कई बार पेड़ लगाउन में भूल कर दे वहां। जेड़ो की वर्षा ऋतु आवनाली है, वर्षा रो मौसम भी आवनालो है, तो आप आज सोचा और एक संकल्प लेवा कि आपरे द्वारा एक वृक्ष अगर आपा लगावा और उन वृक्ष की आपा देखभाल करा तो जरूर जीवन में कुछ तो अच्छो कर सका। हाँ, और जड़ो की मानी जावे है कि पेड़ लगाना कहना भी जीवन दान देवन जड़ो है। अपना जीवन में हर खास अवसर माथे एक पौधो अवश्य लगावा और उन पौधे की देखभाल करा। तो आ बात हुई वृक्षारोपण रे महत्व रे बारे में। दोस्तों किन तरह से मैं आपने बतायो कि किन तरह से वृक्षारोपण रो अपने जीवन में कितना महत्व है, जीवनदायिनी ऑक्सीजन अपने प्राप्त हुए है। सबसे पहला तो आ ही बात जरूरी है कि सांस बिना सब कुछ खत्म, जीवन भी अपरो खत्म हो सके है। इन वास्ते पेड़ पौधा लगावा जितो कोशिश हो सके, आप खुद भी लगावा, स्वयं द्वारा भी कार्य करियो जावे और आपके आस पड़ोस में भी सबने जागरूक करियो जावे कि वृक्षारोपण रो महत्व आपारे जीवन में भी बहुत है और पर्यावरण संतुलन ने बचाए रखने वास्ते भी वृक्षारोपण बहुत जरूरी है। दोस्तों आपारी चर्चा इन्हें चलती रहते है, पहले आप सुनो आप यारो सो मीठो सो गीत गायो है सीमा मिश्रा।

युवा दोस्तों, आप बात सुन रहे था आप यार सुगीत और रणजीत सु। पहला आप बात कर रहा था वृक्षारोपण रे महत्व रे बारे में। तो मैं आपने बतायो कि किन तरह से वृक्ष लगाना बहुत ही जरूरी है। जड़ो की वर्षा ऋतु आ रही है तो आप सब मिलकर एक संकल्प लेवा कि एक वृक्ष आपकी तरफ से लगावा और उन वृक्ष रो देखभाल करा। हाँ, बात हुई वृक्षारोपण के महत्व के बारे में और हमें आप बात करा अल्पसंख्यकों के लिए केंद्रीय एवं राजकीय सेवाओं में अवसर। केंद्रीय और राजकीय सेवाओं में अल्पसंख्यकों यानी कि मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन लोगों के वास्ते सीधी विशेष आरक्षण व्यवस्था होनी है। हालांकि उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत सामान्य श्रेणी में समान अवसर मिले हैं, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस और पिछड़ा वर्ग ओबीसी होने माते ही आरक्षण को लाभ प्राप्त हो सके है। सरकारी सेवाओं और रोजगार वास्ते सरकार द्वारा निम्नलिखित सहायता और योजनाओं चलाई गई है ताकि अल्पसंख्यक लोगों ने सहायता प्राप्त की जा सके। निःशुल्क कोचिंग योजना आदि सरकार द्वारा अल्पसंख्यक छात्रों ने संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, राज्य लोक सेवा आयोग एसपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के वास्ते वित्तीय सहायता और मुफ्त में कोचिंग प्रदान की जावे है। कौशल विकास और उद्यमिता, प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन योजना के जरिए पारंपरिक और आधुनिक कौशल प्रशिक्षण देकर युवाओं ने रोजगार और स्वरोजगार वास्ते योग्य बनायो जावे है। ऋण योजनाओं भी अल्पसंख्यक लोगों के वास्ते ऋण योजनाओं भी लागू करी गई है, जिनमें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम द्वारा स्वरोजगार और आय बढ़ाने वास्ते रियायती दरों माथे आसान ऋण उपलब्ध करायो जावे है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल केंद्रों का विकास करायो जावे है। दोस्तों, आ बात हुई अल्पसंख्यक लोगों के वास्ते किन तरह से की चीजों शुरू करी गई है और सरकार द्वारा उन्होंने किन तरह से सहायता प्राप्त करी जावे है उनके बारे में और आप फिर बात कराओ वृक्षारोपण रे महत्व रे बारे में। तो दोस्तों, आपने बताऊँ कि किन तरह से वृक्ष लगाना आप जीवन रो बहुत ही जरूरी कार्य है और अति आवश्यक रीते नमोनिया जावे वो कार्य है। तो इन वास्ते वृक्षारोपण करा, कोशिश करा कि आप खुद भी जागरूक हुआ और वृक्षारोपण रे महत्व ने समझा। आपारी जो युवा अवस्था है, इन युवा अवस्था जोश और हिम्मत की अवस्था हुए हैं। इन अवस्था में ही एडो मोनियो जावे है कि आज अगर आप एक आम रो वृक्ष भी लगावा तो थोड़े ही समय में वो वृक्ष बड़ो होकर अपना आम रा फल भी प्राप्त दे सके है। इन वास्ते दोस्तों, आप कोई भी वृक्ष लगावा तो उन वृक्ष की देखभाल अवश्य करा और वृक्षारोपण के महत्व ने खुद भी समझा और आप आसपास के लोगों ने भी जागरूक करा, परिवारजन ने भी जागरूक करा कि किन तरह से वृक्ष लगाना जरूरी है, पेड़ पौधा लगाना जरूरी है और पेड़ पौधों के महत्व ने और खाली वृक्ष लगाए के संकल्प ने पूरा करना कोनी है, बल्कि उन संकल्प ने पूरा तक निभावनो। उन वृक्ष ने जब तक जल की जरूरत है, खाद्य की जरूरत है, जल और खाद देकर उन वृक्ष ने बड़ो करा और ये सोचा कि आज को वृक्ष आप लगायो हो वो कितो जीवन दायक वृक्ष है और उन वृक्ष से ऑक्सीजन भी आपने कितने लोगों ने मिले है। तो जब आप वृक्ष रे तहरे मोय जासो और उन वृक्षों रे जो लाभ आपने प्रत्यक्ष रूप से मिले हुए हैं, जो कि फल, फूल, इमारती लकड़ी और जो कई सारे पौधों से, पेड़ों से आपने मिले है, तो उन चीज ने जब आप उन बातों ने जब आप तहसु और विशेष रूप से वर्णन के साथ में उन बातों ने समझ सो तो आपने यथा पड़ते कि वृक्ष आपके जीवन का हिस्सा है, आपके जीवन के साथ में जुड़ियोड़ा है। खुद भी जागरूक हुआ
आपके आस पास रहे लोगों ने भी जागरूक करा और परिवारजन ने भी गांव ढाणियों में भी बात जागरूकता रही है कि वृक्ष अवश्य लगावा। गांवों में तो वृक्ष लगाने वास्ते कितना ही स्थान हुए है, तो गांवों में भी अपने वृक्ष हर घर के आगे वृक्ष होना जरूरी है और वृक्ष लगाए के अपा एक हरो भरो भारत देश में निर्माण कर सका हाँ। और जितनी भी वृक्षों की कटाई कारखानों की वजह से या कोई भी कार्य कारणों से हुए हैं, उनके विपरीत अगर आप वृक्ष लगा सो तो वो कटाई जिको हुए है वो एक तरह से पछो साधारण अवस्था में आ जावे है और वृक्ष की जितनी कटाई हुए है उतना ही वृक्ष लगाया जा सके है। तो दोस्तों आ बात हुई वृक्षों के महत्व के बारे में, वृक्षारोपण के महत्व के बारे में। आगे आप चर्चा इन्हें चलती रहते, पहले आप सुनो आ प्यारो सो मीठो सो गीत।

युवा दोस्तों, आप बार सुन रहे था आप प्यारे सो मीठो सो गीत और हमें आप बात करो गर्मी के अनुकूल हो खान पान के बारे में। तो दोस्तों आज आप बात करो जेड़ो की मौसम गर्मी रो है और बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, सूर्य भगवान पूरी तपिश मचे है, तो इन समय में आपने आपके खान पान रो ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। अपने हाइड्रेट रखने में मदद करने में सबसे ज़्यादा जरूरी है पानी, यानी कि 2-3 लीटर दिन में पानी पिए और नींबू पानी अवश्य पिए। इनके साथ में कैरी पानी, इमली पानी आदि सब चीज़ों को अपने खान पान को ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि गर्मी के अनुकूल जब तक खान पान नहीं होते तो अपन लू लग सके है, गर्मी की चपेट में भी आ सका हाँ। इन वास्ते दोस्तों गर्मी के अनुकूल ही आप और खान पान होना चाहिए और घर में भी 12 या 1 बजे के बाद में गर्मी में जावन रो विचार थोड़ो कम बनावा और घर में और छाया जे स्थान माथे ही रहवा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप गर्मी में घूम सो तो आप और इनके साथ में गर्मी के मौसम में खुद ने तरोताजा और स्वस्थ रखने के वास्ते हल्को सुपाच्य पानी से भरपूर खान पान अपनाना चाहिए। मौसमी फल, ठंडा पेय पदार्थ, संतुलित आहार, डिहाइड्रेशन और कमजोरी से बचियो जा सके है। हाइड्रेशन और पेय पदार्थों को इन तरह से मेलजोल आप कर सके हाँ। पानी दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। ताज़ा पेय पदार्थ यानी कि छाछ, नींबू पानी, नारियल पानी, शिकंजी, आम पन्ना नियमित सेवन करना चाहिए। इनके साथ में ज़्यादा मीठी कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए, चाय और कॉफ़ी से बचना चाहिए। यह डिहाइड्रेशन ने और भी ज़्यादा बढ़ा सके है। मौसमी फलों सेवन अवश्य करना चाहिए। पानी वाला फल यानी कि तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी और संतरा आदि खाना चाहिए। शरीर के अंदर ठंडो शरीर ने अंदर से ठंडो रखे हैं। ज़्यादा भारीपन रो भोजन से बचने वास्ते फलों रो दिन में ही सेवन पहले भाग में ही सेवन कर लेना चाहिए। हल्को भोजन यानी कि आसानी से पचन वाली चीज़ें जैसे मूंग दाल, दलिया, उबली सब्जियों रो सेवन करना चाहिए ताकि हल्को भोजन अपारे जल्दी से जल्दी पच सके। ठंडी तासीर रो आटो यानी कि गेहूं रे बजाय जौ और ज्वार रा चने रा आटे की रोटी रो प्राथमिकता देनी चाहिए। तली भुनी चीज़ों रो सूं बचना चाहिए। समोसे, पकौड़ा, ज़्यादा मसाला देर और जंक फूड खावन से बचना चाहिए, क्योंकि शरीर में गर्मी ने और भी ज़्यादा बढ़ाए जरूर है। तो दोस्तों आ बात हुई गर्मी में अपने खान पान रो पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एड़ो कहो जावे है कि पहलो सुख निरोगी काया, यानी कि अगर आपकी काया निरोगी रहते तो आप सारा कार्य अच्छे से कर पाता, और अगर आपकी काया ही निरोगी नहीं रहते, रोगग्रस्त हो जाते तो आप कोई भी कार्य अच्छे से को नहीं कर पाओ। और शरीर ने काया ने निरोगी रखने वास्ते आपने स्वयं ने आपके शरीर को ध्यान रखना चाहिए और गर्मी से बचने का सारा ही उपाय आपने करना चाहिए, जहाँ कि पानी पीनो, छाया रे स्थान में रहो, जैसे धूप ज़्यादा हुए, तपिश ज़्यादा बढ़ूरी हुए तो उन समय 2-3 घंटा के छाया रे स्थान में बैठ कर आपके कार्य में पूरा करना चाहिए। तो दोस्तों आ बात हुई गर्मी में किन तरह से खान पान की चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए और आगे आप चर्चा चलती रहते पहले आप सुनो आप यारो सो मीठो सो गी।

हेलो दोस्तों, आप बार सुन रहा था आप प्यारो सो मीठो सो गीत और हमें आप बात करा गर्मियों में शरीर ने ठंडो और हाइड्रेट रखने के वास्ते पानी भरपूर और मौसमी फल ताजी सब्जियों दही छाछ प्रकृति सुप्राप्त होने वाला पेय पदार्थों का सेवन करा। हल्का और सुपाच्य और वसा रहित भोजन खावा। अत्यधिक तलियोड़ा भुनोड़ा मसालेदार भोजन या कैफीन से बचियो जावे। हाइड्रेशन और पेय पदार्थ गर्मियों में हाइड्रेशन से बचने वास्ते तरल पदार्थ और अधिक सेवन जरूरी है। पानी और नारियल पानी दिन भर में 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। नारियल पानी प्राकृतिक इलेक्ट्रोलाइट है जिन्हें भरपूर मात्रा में लेना चाहिए। छाछ और लस्सी रो भी प्रयोग करना चाहिए। भरपूर मात्रा में छाछ यानी कि मठो पाचन ने दुरुस्त रखे हैं और शरीर में ठंडक पहुँचावे हैं। नींबू पानी या शिकंजी शरीर ने तुरंत ऊर्जा और ताजगी सुम भर देवे है। पारंपरिक पेय यानी कि बेल दो शरबत आम पन्नों और सत्तू रो शरबत लू लगन से बचावे है और बेहद ही मददगार साबित हुए है। गोंद कतीरा और सबजारा बीज अवश्य ही खाना चाहिए। इन्हें भिगोल कर पानी या शरबत में लेवन से शरीर में गर्मी बाहर निकल जावे है। मौसमी फल पानी और एंटीऑक्सीडाइज तो भरपूर फल गर्मियों में लेना चाहिए। तरबूज और खरबूजा रो भी सेवन करना चाहिए। इनमें 90% से अधिक पानी हुए है जिसको कि शरीर ने हाइड्रेट रखे है। आम अंगूर पपीता पचने में आसान और शरीर में ऊर्जा प्रदान करने वाला फल है। इन रो भी सेवन अपने करना चाहिए। संतरा और नींबू रो भी पूरा पूरा सेवन करना चाहिए। विटामिन सी से भरपूर फल जिसको कि इम्यूनिटी मजबूत करे है। ठंडी तासीर वाली सब्जियों का सेवन करना चाहिए। भारी सब्जियों की बजाय हल्की और पानी की मात्रा वाली सब्जियों का उपयोग करना चाहिए। खीरा और ककड़ी सलाद में इनका नियमित सेवन शरीर में तापमान में नियंत्रित रखते हैं। लौकी और तुरई आसानी से पचन वाली पेट में ठंडक सेवन वाली सब्जियां हैं। पत्तेदार सब्जियां और टमाटर शरीर में धूप और गर्मी से नुकसान से बचावे हैं। अनाज और भोजन में विकल्प चुने जावे। हल्को अनाज यानी कि गेहूं जौ और ज्वार जड़े अनाज रोज शामिल करना चाहिए। दालों में मूंग की दाल बहुत हल्की होवे है और आसानी से पच भी जावे है। भोजन के साथ में दही और रायतो सादी दही सादो दही पेट वास्ते स्वास्थ्य वास्ते बेहतरीन साबित होवे है। इनके साथ में दोस्तों गर्मी रे अनुकूल खान पान करना चाहिए और इनके विपरीत जेड़ो खान पान नहीं करना चाहिए। यानी कि मसाला देर और तना भुना खानो नहीं खाना चाहिए। मिर्च मसाला आला जंक फूड शरीर में अंदरूनी गर्मी बढ़ाने वाली एसिडिटी पैदा करने वाली चीज़ों से बचना चाहिए। गर्म तासीर वाली चीज़ें जैसे अदरक लहसुन और सर्दियों में खाई जाने वाली जड़ वाली सब्जियों यानी कि मूली आदि रो सेवन कम करना चाहिए। इन तरह से दोस्तों गर्मी के मौसम में सही खान पान

की आदतों अपन रहे पाचन ने दुरुस्त रखे है। तो दोस्तों आ बात हुई गर्मी रे अनुकूल खान पान के बारे में और आगे अपन चर्चा ही चलती रहती। पहले आप सुनो प्यारे सो मीठो सो की जिन्हें गायो है सीमा हिस्सा।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी जैसलमेर है, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए श्रोताओं, सुनते हैं आज की सभा में प्रसारित होने वाली शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा।

आज रात्रि 11 बजकर 5 मिनट पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से। आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से ही रात्रि 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। रात्रि 9 बजकर 30 मिनट पर आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय। न्यूज एट 9 का समय रहेगा रात्रि 9 बजे। रात्रि 8 बजकर 45 मिनट पर आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से।

से 45 मिनट पर आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर केंद्र से। जिले की चिट्ठी आप सुन सकते हैं शाम 6:40 पर। हिंदी में प्रादेशिक समाचार का समय रहेगा शाम 6:30।

बेहतरीन फिल्मी गानों का आनंद ले सकते हैं हमारे श्रोता रात्रि 10:30 पर आकाशवाणी जैसलमेर केंद्र से। राजस्थानी लोक संगीत कार्यक्रम आप सुन सकते हैं रात्रि 10:00। सुगम संगीत कार्यक्रम आप सुन सकते हैं शाम रात्रि 8:30 पर। आकाशवाणी जैसलमेर केंद्र से रात्रि 8:00 आप सुनेंगे विशेष भेंटवार्ता पद्मश्री तगाराम भील से श्यामदेव सिंह की बातचीत आकाशवाणी जैसलमेर केंद्र से।

ही अपना कार्यक्रम ग्राम जगत सुन सकते हैं शाम 7 बजे। भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का समय रहेगा शाम 6:15 और अब से थोड़ी ही देर में यानी 6:05 पर आप सुनेंगे दैनिक कार्यक्रम रामचरित मानस का।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आज की सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। ये आकाशवाणी जैसलमेर है, FM बैंड 110.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए श्रोताओं, सुनते हैं दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस गान।
1: तेरा 113।

दशरथ कुमारों की बारात कई दिनों पहले जनकपुर पहुंच चुकी है। योग लग्न देखकर राजा जनक की मंडली के लोग बारातियों को आमंत्रित करने जनवा से पहुंचे। गुरु वशिष्ठ से आज्ञा ले कुल की रीतियां संपन्न कर स्वयं अवध नरेश मुनियों तथा साधुओं को साथ लेकर चले। राजा दशरथ का भाग्य तथा वैभव देख ब्रह्मा सहित देवगण उनकी सराहना कर रहे हैं। शिव ब्रह्मा आदि देवताओं की टोलियां अपने अपने विमानों पर सवार होकर फूल बरसाती श्री राम का विवाह देखने चल पड़ी है। विवाह मंडप की अद्भुत रचना अलौकिक साज श्रृंगार तथा अयोध्या वासियों के सुंदर रूप के सामने देवता तथा देवांगनाएं मानो प्रभाहीन हो गई हैं। ब्रह्मा को विशेष आश्चर्य होता है क्योंकि वहां उस मंडप में उन्हें अपनी कोई रचना दिखाई नहीं देती। चकित देवताओं को भगवान शंकर सांत्वना देते हैं कि विचार कर देखो, ये सीता तथा अखिल ब्रह्मांडों के परमेश्वर साक्षात भगवान का शुभ विवाह है। प्रसन्न मन और पुलकित शरीर वाले राजा दशरथ के साथ ब्राह्मणों तथा साधु संतों की मंडली ऐसी शोभायमान है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हैं। इसी प्रकार चारों कुमारों की शोभा निराली है, मानो अपने चार अवयवों के साथ संपूर्ण मोक्ष ने शरीर धारण कर लिया है।

ए हा प्रेम पुलक तन हृदय उठाहु चले बिलोकन राम बियाहु देखि जनकपुर सुर अनुरागे निज निज लोक सबहि लघु लागे।

0: दशरथ जाता महामोद मन पुलकित गाता। ए हा
1: साधु समाज संग महिदेवा।

अभी आप सुन रहे थे दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस गान। ये आकाशवाणी जैसलमेर है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए श्रोताओं, सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

जियो रामा केसर तिलक लगावो जी, महाराज गजानंद आवो जी, मारी सभा में।

महाराज गजानंद आवो जी, मारी सभा में रंग बरसावो जी। महाराज

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, ये आकाशवाणी जैसलमेर है। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर केंद्र से।
1: गमन का काउंटडाउन शुरू, पूर्वी हिस्से से प्रवेश की संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि डिजिटल गवर्नेंस देश में बदलाव का सशक्त माध्यम बनी है। तकनीक के प्रभावी उपयोग से सरकारी योजनाओं में बिचौलियों का दखल खत्म हुआ है। श्री शर्मा आज जयपुर में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि डीबीटी से हर योजना का लाभ सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंच रहा है। राजस्थान में तकनीक को जनकल्याण का माध्यम बनाया जा रहा है।
2: राजस्थान में तकनीकी को जनकल्याण का प्रभावी माध्यम बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है। हमारा मानना है कि डिजिटल तकनीक कामकाज को केवल आसान ही नहीं बनाती, बल्कि नागरिकों के जीवन को सुविधाजनक और बेहतर भी बनाती है। इसी सोच के साथ हमने राज्य में राजस्थान AI ML पॉलिसी 2026 लागू की है। इस नीति से AI का उपयोग प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि एवं उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक रूप से करने का आधार तैयार हुआ है।
1: मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर स्मार्ट परियोजना, ई मित्र, व्हाट्सएप सेवा और राजस्थान इनोवेशन चैलेंज का शुभारंभ किया। इससे पहले श्री शर्मा ने तकनीकी सेवाओं पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन कर अवलोकन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। इस दौरान श्री शर्मा ने बताया कि राज्य को डेटा सेंटर क्षेत्र में 43,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इनमें STT, GDC, HG, एकाया, नायो बोल्ट सहित कई नामी कंपनियां शामिल है। प्रदेश के IT और उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि आज तकनीकी नवाचारों से न्यूनतम सरकार और अधिकतम सुशासन की बात सार्थक हो रही है।
3: हर सेक्टर के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल टेक्नोलॉजी का महत्व है, और इसीलिए जो जनधन, आधार और मोबाइल को जोड़ा गया, उससे जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है उसके अंदर लीकेजेस खत्म हो गए। आज UPI जो पहले मजाक बनाया जाता था, आज UPI गांव-गांव में हो रहा है। एक महीने के अंदर तकरीबन 23 बिलियन ट्रांजेक्शन से ज्यादा हो रहे हैं। कौन से नए तरीके अपनाए जा सकते जो दूसरे राज्यों में हो रहे हैं, उसे हम राजस्थान में करें, या राजस्थान के अंदर जो नए प्रयोग हो रहे हैं वो दूसरे राज्यों में करें। इस तरह का ये सेशन भारत को मजबूत करेगा, भारत के सुशासन को मजबूत करेगा और अंत में हर नागरिक को मजबूत करेगा।
1: राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में हो रहे इस सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और राजस्थान सरकार की ओर से किया जा रहा है। सम्मेलन में कल विभिन्न प्लेनरी और ब्रेकआउट सत्र होंगे। इसके बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ समारोह का समापन होगा। केंद्रीय

0: श्रमिक लोक शिकायत और पेंशन विभाग के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ये पुरस्कार प्रदान करेंगे। केंद्रीय कैबिनेट ने राजधानी दिल्ली के लिए महत्वपूर्ण परियोजना को मंजूरी दी है। बैठक के फैसलों की मीडिया को जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 8 किलोमीटर लंबी सड़क सुरंग को स्वीकृति दी गई है। इससे पश्चिम और दक्षिण दिल्ली के बीच संपर्क बेहतर होगा। इस पर 6,970 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे।
1: कई सारे पीछे प्रयास किए गए थे, फाइनली आज जो प्रयास अप्रूव हुआ है वो है 6 लेन द्वारका टनल, ये 6,970 करोड़ रुपीस की है। और दूसरा उत्तर प्रदेश में कानपुर को भोपाल से जोड़ने वाला लाइन, उसमें कानपुर से काबराई के बीच में 4 लेन एक्सेस कंट्रोल हाईवे 7,145 करोड़, उसके आगे वाले सेक्शन का भी उसमें बहुत सारा इम्प्रूवमेंट है, एक्सेस कंट्रोल करना, उसकी वाइडनिंग इम्प्रूवमेंट, वो सब भी उसमें इंक्लूडेड है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 34 के करीब 118 किलोमीटर लंबे खंड के निर्माण को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4 जुलाई को प्रस्तावित राजस्थान दौरे के मद्देनजर जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। श्री मोदी बालोतरा के पचपदरा स्थित देश की पहली ग्रीन फील्ड इंटीग्रेटेड HPCL राजस्थान रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का भी उद्घाटन करेंगे। प्रशासन की ओर से कार्यक्रम की सभी तैयारियों को पूरा किया जा रहा है। हमारे बालोतरा संवाददाता ने बताया कि प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। दौरे को यादगार बनाने और हरित विकास की अलख जगाने के लिए बड़े पैमाने पर पौधरोपण किया जा रहा है।
2: 4 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ जहां पचपदरा रिफाइनरी की सौगात देंगे, वहीं इस दिन को ऐतिहासिक और यादगार बनाने के लिए जिला प्रशासन ने नई पहल करते हुए जिले में वृहद स्तर पर पौधरोपण अभियान चलाया जाएगा। पौधरोपण के इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए वन विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति एक नया संदेश देना है। बंसीलाल चौधरी, आकाशवाणी समाचार, बालोतरा।
0: जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आज लोक मंथन 2026 के शुभारंभ का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा शिरकत कर रहे हैं। हम भारत के लोक थीम पर इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम का आयोजन इस साल दिसंबर महीने में होगा। ये आयोजन भारतीय ज्ञान परंपरा, लोक संस्कृति और राष्ट्रीय चिंतन को समर्पित है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आबादी बदलावों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें जल्द पेश करने को कहा है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में समिति के साथ हुई बैठक में ये निर्देश दिए। जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर गठित समिति ने गृह मंत्री को बताया कि इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा किया जाएगा। साथ ही इस बारे में स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय होगा और विभिन्न मंत्रालयों के साथ भी विचार विमर्श किया जाएगा। समिति ने जानकारी इकट्ठा करने के लिए प्रश्नावली तैयार की है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल उच्च स्तरीय जनसांख्यिकीय मिशन की घोषणा की थी। इसके बाद सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता में ये समिति बनाई गई है। प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर आज खिलौना बैंक शुरू किए गए। साथ ही इन केंद्रों पर प्रवेशोत्सव और पौधरोपण के कार्यक्रम भी रखे गए। महिला और बाल विकास विभाग की शासन सचिव पूनम ने जयपुर के गौतम नगर आंगनबाड़ी केंद्र में खिलौना बैंक का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने बच्चों को प्रवेश किट भी वितरित किए। उधर नंद घर योजना के तहत पारंपरिक आंगनबाड़ी केंद्रों को आधुनिक किया जा रहा है। इसी कड़ी में पाली के महिला और बाल विकास अधिकारी प्रकाश पवार ने बताया कि जिले के 222 आंगनबाड़ी केंद्रों को नंद घर में बदलने का काम पूरा हो चुका है।
3: जिले में 222 नंद घरों का निर्माण किया गया है। बाला पेंटिंग, आरओ, एलईडी, भवन की मरम्मत, शौचालय संबंधी निर्माण आदि कार्य करवाए गए हैं। जो विभाग के लाभार्थी है, गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनको जो विभागीय सुविधा अच्छी गुणवत्ता के साथ मिलना सुनिश्चित। अभी और भी इसमें प्रगति रहती है, जिसमें और केंद्रों को भी नंदघर में चयनित किया जा सकेगा।
0: जयपुर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर आज स्वायत्त शासन विभाग के सचिव और सफाई कर्मचारी यूनियन के बीच वार्ता हुई। इसमें यूनियन की कुछ मांगों पर सहमति बनी है। विभाग के सचिव रवि जैन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार की ओर से कुछ मांगों पर सहमति के बावजूद सफाई संगठन अपनी अन्य मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों की भर्ती में परंपरागत रूप से

0: सफाई का काम कर रहे लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी।
1: कि जो भी सफाई भर्ती होगी ये राजस्थान फाइनेंशियल कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज रूल के अंतर्गत होगी, और इसके अंतर्गत हमने जैसे पिछली बार भी किया था कि जो परंपरागत रूप से सफाई का काम कर रहे हैं उनको प्राथमिकता की बात लिखी थी 23 की भी भर्ती में, इसमें भी हम लिखेंगे जो परंपरागत रूप से सफाई का काम कर रहे हैं उसको प्राथमिकता देने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा भी 2-3 इश्यूज थे, उन सब इश्यूज को भी हमने टेकअप किया है।
0: सफाई कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष नंदकिशोर डंडोरिया ने वार्ता को सकारात्मक बताते हुए कहा कि जल्दी ही हड़ताल समाप्त करने के बारे में औपचारिक निर्णय लिया जाएगा। राज्य में अगले 2 दिनों में मॉनसून के आगमन की संभावना है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून राज्य के पूर्वी हिस्से से प्रवेश कर सकता है। मौसम विभाग के अनुसार मॉनसून के सक्रिय होने से कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के आसार हैं। वहीं 6 जुलाई तक प्रदेश के अधिकतर भागों में बरसात शुरू होने की उम्मीद है। इस बार मॉनसून की दस्तक करीब 8 दिन देरी से होने की संभावना है। हालांकि विभाग ने इस बार जुलाई महीने में प्रदेश में सामान्य से कम बारिश का अनुमान जताया है। इस बीच मॉनसून के प्रवेश से पहले प्री मॉनसून गतिविधियां कुछ भागों में सक्रिय है। बीते 24 घंटों में कोटा, उदयपुर और भरतपुर संभाग में हल्की सी मध्यम बरसात हुई। जैसलमेर में आज धूल भरी आंधी चली। भरतपुर में सुबह पानी बरसने के बाद दिन भर ठंडी हवाओं का दौर चला। राजधानी जयपुर में भी कुछ स्थानों पर आज छितराई हुई बारिश हुई। आज 24 जिलों में आंधी और बरसात की चेतावनी है। कल से 4 जुलाई के बीच बीकानेर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में तेज रफ्तार हवाएं और धूल भरी आंधी का अलर्ट बताया गया है। वहीं दूसरी ओर ज्यादातर हिस्सों में दिन भर तेज धूप और उमस का असर रहा। आज डॉक्टर्स डे है। महान चिकित्सक, स्वतंत्रता सेनानी और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर बीसी राय की स्मृति में ये दिन मनाया जाता है। इस दिन चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टरों के समर्पण, सेवा भावना और मानवता के प्रति योगदान का सम्मान किया जाता है। जयपुर के SMS मेडिकल कॉलेज की सह आचार्य डॉक्टर अदिति ने चिकित्सा पेशे को सेवा के साथ ही आत्मसंतुष्टि प्रदान करने वाला बताया।
2: डॉक्टर्स डे के इस विशेष अवसर पर आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं एक लैब मेडिसिन डॉक्टर हूं। आप हमसे अस्पताल में सीधे न मिलते हो, लेकिन आपकी जांच की हर रिपोर्ट के पीछे हमारी पूरी टीम की मेहनत, जिम्मेदारी और ईमानदारी होती है। जब किसी मरीज का सही समय पर सही निदान हो जाए, उसका इलाज शुरू हो जाए और वह स्वस्थ होकर अपने परिवार के पास लौट जाए, यही हमारे काम की सबसे बड़ी संतुष्टि है। आज डॉक्टर्स डे पर मैं समाज से केवल एक छोटी सी अपील करना चाहती हूं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, समय पर जांच करवाएं, डॉक्टर्स की सलाह का पालन करें और स्वास्थ्य कर्मियों का सम्मान करें।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डिजिटल गवर्नेंस और तकनीकी नवाचारों को बदलाव का सशक्त माध्यम बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 जुलाई को प्रस्तावित राजस्थान दौरे को लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आबादी बदलावों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें जल्द पेश करने को कहा। और राज्य में मॉनसून के आगमन का काउंटडाउन शुरू, पूर्वी हिस्से से प्रवेश की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से डूंगरपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख चिंतन जोशी ने तैयार किया है। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत जिले में 28 से 30 जून तक विशेष अभियान चलाया गया। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। पहले दिन जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों और सार्वजनिक स्थलों पर पोलियो बूथ स्थापित किए गए। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई। चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अलंकार गुप्ता ने बताया कि अभियान के दौरान हर पात्र बच्चे तक पहुंचने का प्रयास किया गया। राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार जिले में ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों का आयोजन लगातार जारी है। नगर परिषद क्षेत्र में शहरी सेवा शिविर तथा ग्राम पंचायत स्तर पर ग्रामीण सेवा शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में बिजली, पानी, सड़क, पट्टा वितरण, नाम परिवर्तन, आबादी, भूमि से जुड़े प्रकरणों सहित विभिन्न कार्यों का मौके पर ही निस्तारण किया जा रहा है। जिला कलेक्टर देशल दान सहित प्रशासनिक अधिकारी नियमित रूप से शिविरों का निरीक्षण कर रहे हैं और आम जन की समस्याएं सुन रहे हैं। गलियाकोट पंचायत समिति की ग्राम पंचायत दयाना में आयोजित

0: शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के अवसर पर जिला सांख्यिकी विभाग की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सांख्यिकी के महत्व और विकास योजनाओं के निर्माण में आंकड़ों की भूमिका पर चर्चा की गई। अधिकारियों ने कहा कि विश्वसनीय आंकड़े विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और भविष्य की नीति निर्माण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण आधार होते हैं। वनपाल भर्ती परीक्षा जिले में 34 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए थे और अभ्यर्थियों की त्रिस्तरीय जांच की गई। प्रशासन और पुलिस विभाग की ओर से परीक्षा के सफल संचालन के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जिले के किसानों को 23वीं किस्त जारी की गई। कृषि विज्ञान केंद्र फलोज में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के संबोधन का सीधा प्रसारण किया गया। कृषि विभाग के अनुसार जिले के 1,53,000 से अधिक किसानों के खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से राशि जमा की गई। खातों में राशि पहुंचने पर किसानों ने खुशी व्यक्त की। राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष CR चौधरी ने किसानों से संवाद करते हुए प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने किसानों को भूमि की उर्वरता बनाए रखने, रासायनिक उर्वरकों के सीमित उपयोग और आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने की सलाह दी। आदिवासी अंचल की शिक्षा की प्रतीक शहीद वीर बाला कालीबाई का शहादत दिवस जिले भर में श्रद्धापूर्वक मनाया गया। उनकी जन्मस्थली रास्तापाल सहित विभिन्न स्थानों पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए। वक्ताओं ने शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान और बलिदान को याद किया। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती भी जिले भर में मनाई गई। विभिन्न संगठनों की ओर से आयोजित कार्यक्रमों में महाराणा प्रताप के त्याग, साहस और स्वाभिमान को याद किया गया। वक्ताओं ने युवाओं से उनके आदर्शों को अपनाने का आह्वान किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिले भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिला स्तरीय समारोह डूंगरपुर शहर के लक्ष्मण मैदान में हुआ। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और आम नागरिकों ने सामूहिक योगाभ्यास किया। केंद्र सरकार की 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिला प्रशासन और सूचना तथा जनसंपर्क विभाग की ओर से विकास प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी प्रदर्शित की गई। बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। जिले में पिछले दिनों प्री मॉनसून की अच्छी बारिश हुई। बारिश से तापमान में कमी आई और लोगों को गर्मी से राहत मिली। हालांकि उमस का असर अभी भी बना हुआ है। मौसम में बदलाव के बाद किसानों में भी उत्साह देखा जा रहा है। किसान खरीफ फसलों की तैयारी में जुटने लगे हैं और अच्छी मानसूनी बारिश की उम्मीद कर रहे हैं। इसी के साथ डूंगरपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार।

0: समाचार सागर, मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो है कि डिजिटल गवर्नेंस देश माए बदलाव रो मजबूत जरियो बनी है और तकनीक काम लेर सरकारी योजनावा माए दलालान रो दखल खत्म भी है। श्री शर्मा आज जयपुर माए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन रा उद्घाटन समारोह माए बोल रहा है। वह कहो कि डीबीटी उन हर योजना रो फायदो सीधो पात्र लोगों रा खाता माए पोग रियो है।
1: राजस्थान में तकनीकी को जनकल्याण का प्रभावी माध्यम बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है। हमारा मानना है कि डिजिटल तकनीक कामकाज को केवल आसान ही नहीं बनाती बल्कि नागरिकों के जीवन को सुविधाजनक और बेहतर भी बनाती है। इसी सोच के साथ हमने राज्य में राजस्थान AI ML पॉलिसी 2026 लागू की है। इस नीति से AI का उपयोग प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि एवं उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक रूप से करने का आधार तैयार हुआ है।
0: मुख्यमंत्री ई मौके स्मार्ट परियोजना, ई मित्र व्हाट्सएप सेवा और राजस्थान इनोवेशन चैलेंज री शुरुआत की। इनु पहली वह तकनीकी सेवाओं बारा माई लगाई जी प्रदर्शनी रो उद्घाटन कीनो और वन निरखी। इन पाछे श्री शर्मा उद्योगों नुमाइंदा सागे बातचीत भी कीनी। इन दौरान वह बतायो कि राज्य ने डेटा सेंटर हल्का माए 43,000 करोड़ रुपयों बत्ती रकम रा निवेश प्रस्ताव मिलिया है। आमाए STT, GDC, HG एकाया और नायो बोल्ट समेत कई नामी कंपनियां शामिल है। प्रदेश रा IT और उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ कार्यक्रम मायवारा विचार बताया। खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका राठौड़ कहो कि तकनीकी नवाचाराओं न्यूनतम सरकार और अधिकतम सुशासन री बात सांची वे रही है।
2: हर सेक्टर के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल टेक्नोलॉजी का महत्व है और इसीलिए जो जनधन आधार और मोबाइल को जोड़ा गया उससे जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है उसके अंदर लीकेजेस खत्म हो गए। आज UPI जो पहले मजाक बनाया जाता था आज UPI गांव-गांव में हो रहा है। एक महीने के अंदर तकरीबन 23 बिलियन ट्रांजेक्शन से ज्यादा हो रहे हैं। कौन से नए तरीके अपनाए जा सकते जो दूसरे राज्यों में हो रहे हैं उसे हम राजस्थान में करें या राजस्थान के अंदर जो नए प्रयोग हो रहे हैं वो दूसरे राज्यों में करें। इस तरह का ये सेशन भारत को मजबूत करेगा, भारत के सुशासन को मजबूत करेगा और अंत में हर नागरिक को मजबूत करेगा।
0: प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और राज्य सरकार का न्यू मिलर कराया जा रहा 2 दिन राई सम्मेलन रो मुद्दों विकसित भारत 2047 AI एनेबल्ड डेटा ड्रिवन एंड सिक्योर डिजिटल गवर्नेंस रखी चियो है। सम्मेलन में काल न्यारा न्यारा प्लेनरी और ब्रेकआउट सेशन रखा जावेला। ये पाछे केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार देवेला। केंद्रीय कैबिनेट राजधानी दिल्ली सारू खास परियोजना ने मंजूरी दीनी है। मीटिंग में करी गया फैसला ने जानकारी देता था का केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बतायो कि 8 किलोमीटर लंबी सड़क सुरंग ने मंजूरी दी रही है। इनो आतुनी और लंकाऊ दिल्ली बीच जुड़ाव बेहतर भैला। ये काम में था 6,970 करोड़ रुपयों बत्ता खर्च कर जावेला।
3: कई सारे पीछे प्रयास किए गए थे, फाइनली आज जो प्रयास अप्रूव हुआ है वो है 6 लेन द्वारका टनल, ये 6,970 करोड़ रुपीस की है। और दूसरा उत्तर प्रदेश में कानपुर को भोपाल से जोड़ने वाला लाइन, उसमें कानपुर से काबराई के बीच में 4 लेन एक्सेस कंट्रोल हाईवे 7,145 करोड़, उसके आगे वाले सेक्शन का भी उसमें बहुत सारा इम्प्रूवमेंट है, एक्सेस कंट्रोल करना, उसकी वाइडनिंग इम्प्रूवमेंट, वो सब भी उसमें इंक्लूडेड है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा 4 जुलाई ने प्रस्तावित राजस्थान दौरा न ध्यान रखता थका तैयारियां जोर शोर चल रही है। श्री मोदी रो बालोतरा रा पचपदरा माए देश री पहली ग्रीन फील्ड इंटीग्रेटेड HPCL राजस्थान रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स ने जनता ने सौंपण रो कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री जोधपुर हवाई अड्डा रा नुआ टर्मिनल रो ही उद्घाटन करेला। माणा बालोतरा खबर नवीस बतायो कि प्रधानमंत्री रा दौरा ने यादगार बनावण और हरित विकास रे अलख जगावण सारू मोटा पैमाना माथे पौधा रोप्या जा रहा है।
4: 4 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ जहां पचपदरा रिफाइनरी की सौगात देंगे, वहीं इस दिन को ऐतिहासिक और यादगार बनाने के लिए जिला प्रशासन ने नई पहल करते हुए जिले में वृहद स्तर पर पौधरोपण अभियान

0: चलाया जाएगा।
1: पौधरोपण के इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए वन विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति एक नया संदेश देना है। मंजीलाल चौधरी, आकाशवाणी समाचार, बालोतरा।
2: समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक माथे AIR न्यूज राजस्थान पर आई सुन सको हो। इसा गई आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in माथे समाचार सुन सको हो और वहां जुड़िया फोटो और वीडियो देख सको हो। गृह मंत्री अमित शाह आबादी बदलावान बारा माय बनाई ची आला दर्जारी समितियों सिफारिशा बेगी देवन सारू कहो है। वे आज नई दिल्ली माय समिति रा सदस्य सागवी मीटिंग माय हुकम दिनो। समिति गृह मंत्री ने बतायो कि राज्य और केंद्र रा राज वाला प्रदेशों रो दौरो कर ई बारा माय जानकारी हासिल करी जावेला। समिति जानकारी हासिल करण सारू प्रश्नावली बनाई है। ध्यान जोग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लारला साल आला दर्जा रा जनसांख्यिकी मिशन रो ऐलान की न हो चिंपा छे रिटायर्ड जज न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नाव लेकर री सदारत माए आ समिति बनाई ची ही। प्रदेश रा सगला आंगनवाड़ी केंद्र माए आज खिलौना बैंक शुरू करी चिया। इसागई प्रवेशोत्सव और पौधारोपण रा कार्यक्रम ही राखी चिया। महिला और बाल विकास विभाग रे शासन सचिव पूनम जयपुर रा गौतम नगर आंगनबाड़ी केंद्र माए खिलौना बैंक री शुरुआत कीनी। ई मौके बच्चा ने प्रवेश किट ई दिया चिया। नंद घर योजना रा तहत पारंपरिक आंगनबाड़ी केंद्र ने ही और बेहतर बनाया जा रहा है। पालीरा महिला और बाल विकास अधिकारी प्रकाश पवार बतायो कि जिला रा 222 आंगनबाड़ी केंद्र ने नंद घर माए बदलीकरण रो काम पूरो वे कियो है।
3: जिले में 222 मंदिरों का निर्माण किया गया है। बाला पेंटिंग, आरओ, एलईडी, भवन की मरम्मत, शौचालय संबंधी निर्माण आदि कार्य करवाए गए हैं। जो विभाग के लाभार्थी है, गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनको जो विभागीय सुविधा अच्छी गुणवत्ता के साथ मिलना सुनिश्चित। अभी और भी इसमें प्रगति रहता है जिसमें और केंद्रों को भी नंदगढ़ में चयनित किया जा सकेगा।
2: स्वायत्त शासन विभाग रा सचिव और सफाई कर्मचारी यूनियन रा नुमाइंदा बीच आज जयपुर माए बातचीत हुई। इन दौरान यूनियन रे कुछ मांगा माथा एक राय बनी। विभाग रा सचिव रवि जैन खबर नवी संस्था के बातचीत करता थका बतायो कि सरकार री ओर कुछ मांगा मान लिया पाछे सफाई कर्मचारियां रा संगठन दूजी मांगा न लेर अड़ रहा है। वह कहो कि सफाई कर्मचारियां री भर्ती माए मूल रूप साफ सफाई रो काम कर रहा लोगों ने प्राथमिकता दी जावेला।
4: कि जो भी सफाई भर्ती होगी ये राजस्थान फाइनेंशियल कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज रूल के अंतर्गत होगी और इसके अंतर्गत हमने जैसे पिछली बार भी किया था कि जो परंपरागत रूप से सफाई का काम कर रहे हैं उनको प्राथमिकता की बात लिखी थी 23 की भी भर्ती में, इसमें भी हम लिखेंगे। जो परंपरागत रूप से सफाई का काम कर रहे हैं उसको प्राथमिकता देने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा भी 2-3 इश्यूज थे, उन सब इश्यूज को भी हमने टेकअप किया है।
2: सफाई कर्मचारी यूनियन रा अध्यक्ष नंद किशोर डंडोरिया बातचीत ने सकारात्मक बताता था का कहो कि सफाई कर्मचारियां री हड़ताल बेगी खत्म करन रे बारा माय फैसलो लियो जावेला। रबे मौसम राज्य माय आवता 2 दिन माय चौमासा री बिरखा स्वरूप है वन रा आसार है। मौसम विभाग रे मुजब कोटा और उदयपुर संभाग रा कुछ हल्का माय भारी बारिश री संभावना है। जबकि 6 जुलाई तक प्रदेश का घनखर हल्का माय में सरूहे वन री संभावना है। इस साल चौमासा री बिरखा लारला साल री तुलना माय करीब 8 दिन मोड़ी सरूहे वन रा आसार है। मौसम विभाग जुलाई महीना माय प्रदेश माय सामान्य कम बारिश हुए वन रो अंदाजो लगायो है। इबीचे राज्य रा कुछ हल्का माय चौमासाओं पहली री हलचल चाल रही है। लारला 24 घंटा माय कोटा, उदयपुर और भरतपुर संभाग माय थोड़ी घनी बिरखा भी। जैसलमेर माए आज आंधी चाली, भरतपुर माए संवारे भी बिरखा पाछे दिन भर सीड़ो बायरो बाजो, राजधानी जयपुर माए कठे कठे बारिश हुई। मौसम विभाग आज प्रदेश रा 24 जिला माए आंधी बारिश सारू चेतायो है। काल 4 जुलाई बीच बीकानेर, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ माए जोरदार बायरो बाजन और आंधी चालन सारू चेताई चियो है। आज डॉक्टर्स डे है। महान चिकित्सक स्वतंत्रता सेनानी और पश्चिम बंगाल रा पहले वाला मुख्यमंत्री डॉक्टर बी सी राय री याद माए और दिन मनायो जावे है। ये दिन इलाज रा हल्का माए डॉक्टर रा समर्पण सेवा भावना और इंसानियत रा प्रति योगदान रो मान करियो जावे है। जयपुर रा SMS मेडिकल कॉलेज री एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अदिति इलाज रा पेशा न सेवा सागे खुद न संतुष्टि देवन वालो बतायो।
0: डॉक्टर्स डे के इस विशेष अवसर पर आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं एक लैब मेडिसिन डॉक्टर हूँ। आप हमसे अस्पताल में सीधे न मिलते हो, लेकिन आपकी जांच की हर रिपोर्ट के पीछे हमारी पूरी टीम की मेहनत, जिम्मेदारी और ईमानदारी होती है। जब किसी मरीज का सही समय पर सही निदान हो जाए, उसका इलाज शुरू हो जाए और वह स्वस्थ होकर अपने परिवार के पास लौट जाए, यही हमारे काम की सबसे बड़ी संतुष्टि है। आज डॉक्टर्स डे पर मैं समाज से केवल एक छोटी सी अपील करना चाहती हूँ। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, समय पर जांच करवाएं, डॉक्टर्स की सलाह का पालन करें और स्वास्थ्य कर्मियों का सम्मान करें।
2: आखिर में खास समाचार एक कर फिर सुन ले रहो। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा डिजिटल गवर्नेंस और तकनीकी नवाचार न बदलाव रो मजबूत जरियो बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा 4 जुलाई ने प्रस्तावित राजस्थान दौरा सारू तैयारियां जारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आबादी बदलावारा बारा माए बनाई ची आला दर्जारी समितियों सिफारिशा बेगी देवन सारू कहो और राज्य माए चौमासारी बिरखा बेगी सरूफे वन रा आसार। उगनी हलकाऊं बिरखा सरूफे वन री संभावना। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। मानो आगलो समाचार बुलेटिन काल सवारे 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
5: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है रेडियो गोल्डन सिटी FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए श्रोताओं, सुनते हैं ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम ग्राम जगत।

क्रांत का सुनाड़ है सभी भाइयों, नाम मनोज भाई राय, क्रांत का नाम राम राम। तो 1 जुलाई आंसू जो है सरकारी विद्यालय और भी जो है नए सत्र शुरू हुए है, जो को भी अपना छात्र है आंसू वापिस जो है आपने नए सत्र की शुरुआत करते हैं और आपके अध्ययन प्रक्रिया में निरंतर जारी रखते। आज रात और चर्चा प्रथम विषय है ग्रामीण पर्यटन की बढ़ती संभावना। भारत जो है ग्रामीण परिधान जो एक जो है अटूट हिस्सों है भारत देश में, ग्रामीण स्तर में जो है भारत की अर्थव्यवस्था भी जो है काफ़ी हद तक जो को किसान भाइयों की खेती बाड़ी से हो या आज के समय में पर्यटन में भी जो है ग्रामीण स्तर में काफ़ी बढ़ोतरी देश में मिल रही है। आज भी देश की लगभग 2/3 आबादी गाँव में निवास करे, भारतीय संस्कृति सभ्यता परंपरा और लोक जीवन की वास्तविक झलक गाँव में देखने को मिले। गाँव की प्राकृतिक सुंदरता, हरियाली, स्वच्छ वातावरण, लोक संस्कृति, पारंपरिक खान पान, लोक संगीत, लोक नृत्य और हस्तशिल्प देश विदेश में पर्यटन और अपनी और आकर्षित किया करें। यही कारण है वर्तमान समय में ग्रामीण पर्यटन तेजी से लोकप्रिय हो रहे। ग्रामीण पर्यटन केवल घूमन फिरन तक सीमित नहीं होते, पर्यटकों ने गाँव और जीवन के निकट समझना और अनुभव कराना एक प्रयास है। ये माध्यम से पर्यटक ग्रामीण संस्कृति, खेती बाड़ी, किसान, पशुपालन, स्थानीय कला, लोक परंपरा और प्राकृतिक जीवन शैली से रूबरू हुई। पर्यटन ग्रामीण विकास एक प्रभावी माध्यम बन रहे और देश की अर्थव्यवस्था में भी नई दिशा प्रदान कर रहे हैं। अगर सीधे शब्दों में बात करो ग्रामीण पर्यटन का अर्थ है पर्यटन जिक्रमय, पर्यटक गांव में जाए, उसकी प्राकृतिक सुंदरता है, उसकी सांस्कृतिक विरासत है, धार्मिक स्थल है, ऐतिहासिक स्थान है, कृषि गतिविधियां हैं, लोक कला है, हस्तशिल्प है और ग्रामीण जीवन है, ये अनुभव कर पर्यटक स्थानीय लोगों के साथ रहकर वो जीवन शैली, भोजन, पहनावा, परंपराओं न समझे। ग्रामीण पर्यटन जो है पहले तुलना में आज बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आधुनिक जीवन अत्यधिक व्यस्त और तनावपूर्ण हो गया है तो लोग जो है प्राकृतिक वातावरण में कुछ समय बिताना चाहिए जिससे मानसिक शांति प्रदान हो। गाँव और शांत वातावरण, स्वच्छ हवा, हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य लोगों ने अपनी ओर आकर्षित करे। ग्रामीण पर्यटन जो है गाँव और आर्थिक विकास भी हो रहा है। स्थानीय लोगों में रोजगार नए अवसर प्राप्त हो रहा है। होम स्टे है, होटल है, परिवहन है, स्थानीय भोजन है, हस्तशिल्प है, कई तरह का जो है उन्होंने फायदा मिल रहा है। भारत में ग्रामीण पर्यटन की अपार संभावना देश में है। जो हर राज्य में कई अड़ा गांव है जो आपकी सुंदरता वास्ते जो है अनूठा जो है पहचान है। राजस्थान का पारंपरिक गाँव ने अगर बात करो या केरल के बैकवाटर क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का पर्वतीय गांव, पंजाब का कृषि प्रधान गांव, गुजरात का कच्छ क्षेत्र, नागालैंड और मेघालय की जनजाति संस्कृति, मध्य प्रदेश का आदिवासी क्षेत्र, यह ग्रामीण पर्यटन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। भादर गांव में मनाया जाने वाला मेला, त्यौहार, लोकगीत, लोक नृत्य, कठपुतली नृत्य, ऊँट, बैलगाड़ी सवारी, खेतों में कृषि कार्य और पारंपरिक भोजन है पर्यटकों वास्ते पर्यटकों वास्ते सबसे विशेष आकर्षण का केंद्र रहा करे। ग्रामीण पर्यटन से अनेक प्रकार का लाभ है। सबसे पहले रोजगार सृजन, स्थानीय लोगों ने जो है वो तो रोजगार मिले, चाहे हस्तशिल्प हो, कृषि हो, भोजन हो, परिवहन हो और भी दूसरे महत्वपूर्ण लाभ है ग्रामीण संस्कृति का फर्क है। अगर पर्यटक लोक कला, हस्तशिल्प और लोक संस्कृति में रुचि लेते हैं तो स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहन मिलते और सांस्कृतिक धरोहर सुरक्षित रहते। ग्रामीण पर्यटन से महिलाओं को भी रोजगार मिले, चाहे वो हस्तशिल्प हो, पारंपरिक भोजन हो, सिलाई कढ़ाई हो या घरेलू उद्योग और माध्यम से आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर है। युवा जो है अपने गांव में रोजगार प्राप्त कर सके, शहरों और पलायन कम हो जाते हैं, गांव में सड़क, बिजली, पानी व्यवस्था जो है सुचारू हो जाते हैं और इंटरनेट जैसी सुविधाओं का भी लाभ मिलते हैं। ग्रामीण पर्यटन विकास पर्यावरण संरक्षण साथ होना चाहिए। यदि पर्यटन तो विकास बिना योजना रखी जाए तो प्राकृतिक संसाधनों का दबाव बढ़ सके। स्वच्छता, जल संरक्षण, वृक्षारोपण और प्राकृतिक वातावरण विशेष ध्यान देवे। पर्यटक जो है पर्यावरण संरक्षण नियमों का पालन करे, गाँव की प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी निभावे। ग्रामीण पर्यटन जो है उनमें कई तरह की चुनौतियों और भी सामना करना पड़ सके। अगर आप बात करो कि भाई सबसे पहले जो सड़कों हैं, स्वच्छ शौचालय है, स्वास्थ्य सेवाओं हैं, आवाजाही वास्ते परिवहन है या स्टे है रुकन वास्ते या जो है इंटरनेट की सुविधा है, ये सब अभाव भी जो है कुछ क्षेत्रों में अपना देखना मिले तो यह सब चुनौती है। पहले इसे पार पड़ना है जिससे और बाद पर्यटन जो है आप चरम मत पहुँच पा सके। ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने का कई उपाय है।
अलग अलग तरीके से जो है आप इन्हें बढ़ावा दे सको और इन्हें आगे बढ़ा सको। ग्राम पर्यटन विकास वास्ते गाँव में बुनियादी सुविधा और विस्तार किया जावे, स्वच्छता में विशेष ध्यान दिया जावे, पर्यटन सुरक्षित और आरामदायक गाँव की व्यवस्था हो, स्थानीय युवाओं को गाइड, अतिथि सेवा और भाषा कौशल प्रशिक्षण दिया जावे, हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पादन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुँचाया जाए, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से ग्रामीण पर्यटन में व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए, साथ ही पर्यावरण संरक्षण पर्यटन विकास को अनिवार्य भाग बन जाए। ग्रामीण पर्यटन भारत के समग्र विकास का एक प्रभावी साधन है। एक केवल पर्यटन उद्योग ही नहीं बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी सशक्त बनावे, रोजगार अवसर पैदा करे, महिलाओं और युवाओं को आत्मनिर्भर बनावे और अपनी संस्कृति विरासत को संरक्षण करे। सरकार, स्थानीय समुदाय, पर्यटक सब मिलकर योजनाबद्ध तरीके से ग्रामीण पर्यटन में विकास करें तो भारत के गांव आर्थिक रूप से समृद्ध, सांस्कृतिक रूप से सशक्त और पर्यावरण दृष्टि से सुरक्षित बन जाए। वास्तव में ग्रामीण पर्यटन आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत निर्माण की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। ऐसे है आप और छोटी सी जानकारी, हमें आप सब कुछ लोक भजन और लोकगीत और चर्चा और रक्षा जारी।

तो देखो भाई, आप सुने हो बढ़िया राजस्थानी लोकगीत और हमेशा संरक्षणचारी। तो भाइयों देखो, हाँ देखो, आप बात कर रहे थे ग्रामीण पर्यटन क्षेत्र की, अगर आप में बात करी कि भाई पर्यावरण संरक्षण ना प्रति भी जो है जागरूकता रखनी पड़ता है, ताकि जो है पर्यटन है वो और बढ़ोतरी हो, पर्यावरण लोगों में नुकसान नहीं हो, बल्कि पर्यावरण में जो है संरक्षण के बारे में सोच के फिर पर्यटन क्षेत्र में वृद्धि करनी है। तो पर्यावरण की बात अभी वन संरक्षण जो है पूरे बारे में अगर बात करो, तो वन जो प्रकृति का अमूल्य उपहार है, केवल पेड़ का समूह वन बल्कि पृथ्वी में जीवन है और भी कई आधार है, जैसे शुद्ध वायु है, जल है, औषधियाँ हैं, फल है, लकड़ी है, ईंधन है, सब जो प्राकृतिक संसाधन है, ये वन संरक्षण आएगा। वन पर्यावरण संतुलित रखे, वर्षा में सहायता करे, मिट्टी के कटाव में रोके, और असंख्य जीव जंतुओं का आश्रय स्थल है, यह वनों का संरक्षण मानव जीवन वास्ते अत्यंत आवश्यक है। भारत में प्राचीन काल से ही वनों ने पूजनीय मानव ग्रह है। भारतीय संस्कृति में पेड़ पौधा नदियों पर्वत वन्य जीवन देवतुल्य सम्मान दिया गया है। अपने पूर्वजी जी को है लोक परंपराओं, धार्मिक मान्यता और रीति रिवाजों और सामाजिक नियमों के माध्यम से वन संरक्षण कार्य करता था, और लोक परंपराओं आज भी पर्यावरण संरक्षण में जो है प्रेरणा दिया करे। वन संरक्षण अर्थ है वनों की रक्षा करना, उम्र संतुलित उपयोग करना और निरंतर विकास वास्ते प्रयास करना, ये उद्देश्य है। वनों की अंधाधुंध कटाई न रोकना, जैव विविधता और संरक्षण करना और प्राकृतिक संसाधनों ने आने वाली पीढ़ियों वास्ते सुरक्षित रखना। वन संरक्षण केवल सरकार ही नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक को कर्तव्य है। लोक परंपराओं जो को सामाजिक सांस्कृतिक विरासत रह करे, यह परंपराओं पीढ़ी दर पीढ़ी चले, समाज और प्रकृति के साथ संतुलित जीवन जीवन की शिक्षा दिया करे। भारत के गाँव में आज भी अनेक रीति रिवाज और मान्यता प्रचलित है, जिसका उद्देश्य वृक्ष और वनों की रक्षा करना है। ये परंपराओं ने लोगों के मन में जो है श्रद्धा और जिम्मेदारी की भावना विकसित की। धार्मिक आस्था के कारण कई लोग जो है पेड़ों की कटाई का अंश बताई और नए पौधा लगाने पुण्य कार्य किया करे। भारत में अनेक वृक्ष है जिन्होंने पवित्र माने हुए, जो आप बात करो पीपल है, बरगद है, नीम है, बेल है, तुलसी है, आंवला है और अशोक है। यह वृक्षों की पूजा की जाए या वृक्षों ने काटना धार्मिक दृष्टि से अनुचित माने जाए, इस कारण वृक्ष लंबे समय तक सुरक्षित रहे। गाँव में देववन या देवरारी परंपरा भी अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। यह स्थानों में देवता और निवास माने जाए, कई प्रकार की पेड़ों की कटाई या शिकार मत अनुमति को नहीं हुए, और परंपरा जो है छोटे बड़े वनों में सुरक्षित रखा करे। राजस्थान में जो है कई अड़ा वन है, जो अगर बात करो खेजड़ी है तो खेजड़ी राजस्थान और सबसे प्रमुख जो है वन बताए गए, और धार्मिक आस्था से भी जो है बहुत ये वन में पूजनीय माने गए है। ये संरक्षण में जो है काफी लोग आश्रय भी दिया करे, कई जीव जंतु है या राहगीर है, खेजड़ी के संरक्षण में जो है एक अच्छी जो है ठंडी हवा रो एहसास लिया करे। तो देखो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी जरूरी है, अगर आप जागरूक रहते हो वन संरक्षण के बारे में सोच रहे हो तो उसको आप कई लाभ है। वन संरक्षण लाभ है, अगर बात करो सबसे पहले तो वातावरण शुद्ध रहे, ऑक्सीजन पर्याप्त मिले, कार्बन डाइऑक्साइड जो है अवशोषित कर ले और जलवायु परिवर्तन में प्रभाव न कम किया करे। वन जो है वर्षा ने आकर्षित करे, भूजल स्तर न बढ़ाने में सहयोग करे, मिट्टी के कटाव ने रोके और बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं में तीव्रता को कम करे। वन जो है लाखों लोगों ने रोजगार प्राप्त करे, लकड़ी, शहद, गोंद, औषधीय पौधा, बांस, लाख और अन्य वन उत्पाद ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनावे। वन अनेक वन्य जीवों और प्राकृतिक आवास भी है, ये वास्ते वन संरक्षण के प्रति जागरूक रहना है, वनों की देखभाल करनी है, वन संरक्षण में अहम भूमिका निभानी है। सरकार साथ साथ प्रत्येक नागरिक में जागरूक हो गए, वन संरक्षण में आपकी एक अहम भूमिका निभानी है। तो हमें सुनकर आपको एक बढ़िया राजस्थानी लोकगीत चालो देखन ने बाईसा सीमा मिश्रा की आवाज में प्रस्तुत है लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम ग्राम जगत। ये आकाशवाणी जैसलमेर है, FM बैंड 110.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए श्रोताओं, सुनते हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं राग दरबारी कान्हड़ा बिहार, पंडित राजन साजन मिश्र की।

लाहिर पाई दरदार पार एबिया को हार को दिलाए मैया हार को दिलाए हार को दिलाए भर भर दार नार सब मारे भर भर

Mar kudalai,

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज के इस शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आप सुन रहे थे राग दरबारी कान्हड़ा, राग बिहाग, पंडित राजन साजन मिश्र की प्रस्तुति। ये आकाशवाणी जैसलमेर है, FM बैंड 101.8 MHz पर। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं विशेष भेंटवार्ता। पद्म श्री तगाराम भील से शामवीर सिंह की बातचीत।
1: श्रोताओं, आज आकाशवाणी जैसलमेर के स्टूडियो में पद्मश्री पुरस्कार विजेता हमारे जैसलमेर के एक गांव के निवासी, जिसका नाम है मूलसागर और वहां के निवासी हैं तगाराम जी भील, इनको हाल ही में पद्मश्री अवार्ड मिला है। और ये पद्मश्री अवार्ड के बारे में आपको मैं बता दूं कि ये भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार है और ये कला, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा और समाज सेवा के क्षेत्र में उनके किए गए कार्य को एक विशिष्ट पहचान दिलाने के लिए दिया जाता है। और आज हमारे साथ हैं जैसलमेर के तगाराम जी भील और इन्होंने कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है। यूं कहें कि जो हमारे लोकवाद्य यंत्र हैं उनमें से एक बड़ा ही प्रसिद्ध और मीठी धुन, जिसको हम कहते हैं अलगोजा, उसको बजाते हैं और इन्होंने बचपन से इसको बजाना शुरू किया था और लगातार कई वर्षों तक मेहनत के बाद में आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। आज ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार हैं और कई देशों में जाकर के इन्होंने अपने अलगोजा का शानदार प्रदर्शन किया है। इनकी धुन इतनी मीठी होती है कि सुनते ही लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तगाराम जी, हम आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत करते हैं।
2: नमस्कार जी।
1: और शुरुआत करते हैं, जब ये घोषणा हुई थी कि आपको पद्मश्री पुरस्कार मिलने वाला है, उस समय आपके चेहरे पर आपके किए गए कार्यों को जब मोहर लगी भारत सरकार द्वारा, कितनी खुशी हुई थी?
2: जी हुकम, बहुत खुशी हुई मुझे तो। वैसे मैंने जब बचपन से शुरू किया तब तो मैंने मेरी जिंदगी में ये नहीं सोचा था कि मैं यहाँ तक जाके विदेशों में जाऊंगा और अवार्ड मिलेगा भारत सरकार से। ये कभी सपने में भी नहीं देखा था, मेरे दिल में नहीं था। लेकिन मेहनत जो ज़्यादा 55 साल की जो मेहनत जी जो मेरी थी, वो मतलब ऐसी रंग लाई था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत ही बड़ा जो ये अवार्ड भारत का जो मिला है भारत सरकार से, मैं बहुत बहुत भारत सरकार का आभारी हूँ। और जिन लोगों ने यहाँ से मेरे को बचपन से जो पहली बार स्टेज पे लाने के लिए मुझे वहाँ पर पहुँचाया स्टेज पे, उन लोगों का भी मैं आभारी हूँ। और जिन लोगों ने आगे रेडियो से लेकर दूरदर्शन, पत्रकार है, मीडिया वाले हैं, जो भी लोग मुझे मिले, उन लोगों का सबका सहयोग मिला, तब जाके मुझे ये आज तक यहाँ पर मंजिल, ये इसी मंजिल पे पहुँचा हूँ मैं। तो मैं बहुत बहुत सभी भारतवासी जो जिसने मुझे जो सपोर्ट किया, उनके उनका मैं सबका आभारी हूँ। और विशेषकर मैं भारत सरकार का जो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने चुन करके हमारे कलाकारों को चुन चुन करके उठाते हैं और इतना बड़ा अवार्ड देते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे देश में बहुत अच्छा कार्य हो रहा है और अच्छा कर रहे हैं, हमारी सरकार जो है अच्छा काम कर रही है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तगाराम जी, एक जीवन आपका था जब ये पुरस्कार नहीं मिला था और अब एक जीवन आपका पुरस्कार मिलने के बाद, क्या बदलाव आए हैं? और समाज में अब कहीं भी जाते हो तो पहले एक पहचान अलग थी अलगोजा वादक के रूप में, और अब एक पहचान अलगोजा वादक के साथ साथ आप पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित व्यक्तित्व हो, तो कितना बदलाव आया है?
2: जी, इसमें बहुत बदलाव मुझे देखने को मिलता है, क्योंकि अब यहाँ के हमारे जैसलमेर के जो लोकल कलाकार हैं, जो भी हमारे गांव के, जो हमारे यहाँ के, जो भी सिटी जैसलमेर के रहने वाले, सभी कहते हैं कि यार आपको इतना बड़ा अवार्ड मिला, आपको कैसे मिला? और बाहर से भी हमारे को फोन आते हैं, जैसे कलकत्ता से, बम्बई से, वहाँ से आया कि यार आप इतने लोकल आदमी हो और आपको कैसे मिला है हमें भी बताइए, हम कैसे हम भी फार्म भरे। तो भैया मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं है, और मैं तो अपने मगन इसमें बजाने में मगन रहा और मैंने ये बजाना भी शुरू किया। मेरे पिताजी बजाते थे और मैंने उसका चोरी से उठा उठा करके बकरी चराने के साथ जाता था, तब मैंने बजाया था तो मेरे को अच्छा लगता था। तो पिताजी का ये अलगुजो का मैंने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। सबसे बड़ी मेहरबानी तो मेरे माता पिता की है जिसने मुझे जन्म दे करके पाल पोस के बड़ा किया, तो इसीलिए मैं बहुत बहुत माँ बाप की आशीर्वाद से यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो यहाँ के जो लोग हैं ना वो कहते हैं कि यार आपको वहाँ किसने फार्म भरा, तो मैंने कहा यार मैंने फार्म भर लिया और ऑनलाइन कर दिया, और ऑनलाइन फार्म होने के बाद में वहाँ राष्ट्रपति के वहाँ पहुँचा तो वापस कलेक्टर साहब को यहाँ वेरीफाई करने के लिए भेज दिया।
3: हाँ।
2: तो मेरा जो रिकॉर्ड था वो सरकार ने सब कुछ देख लिया। तो अब किस वजह से मुझे सरकार ने दिया वो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने अपना जो काम किया है वो मैंने दिल से किया है। जहाँ तक मेरी जिंदगी में मैंने जो मेहनत की है वो मेरी मेहनत बहुत ही सफल हुई है, मैं मेरे को ये महसूस हो रहा है। सबसे बढ़िया बात तो ये है कि यहाँ पर अलगुजा बनता नहीं है, ये अलगुजे बनते थे पाकिस्तान में बलूचिस्तान में बनते थे। तो मेरे पिताजी बहुत साल पहले 1955 में उससे पहले भी एक जोड़ी लाए थे, मंगवाई थी, तो वहाँ वो बजा रहे थे, तो मुझे बचपन में 7 साल की उम्र मुझे अच्छा लगा तो मैंने बजाना सीख लिया। तो उसके बाद में वो जोड़ी कई साल तक तो मैंने बजा ली, सीख तो लिया, अलगुजे यहाँ मिल नहीं रहे थे। तो फिर मैंने किसी से कोशिश करके मैंने खुद बनाने की कोशिश करके आज मैं यहाँ भारत में सबसे बढ़िया अलगुजे मेरे पास यहाँ मिलते हैं और मैं खुद बनाता हूँ इसको।
3: बिल्कुल।
2: और ये जो मैं बजा रहा हूँ ये इंस्ट्रूमेंट सभी मेरे बनाए हुए, आज हमारे देश में भी नहीं बल्कि हमारे विदेशों में जी लोग हैं जो मेरे से जुड़े हुए हैं, लोग जो मैं जाता हूँ तब लेके जाता हूँ, और जो लोग किसी को जरूरत होती है तो ऑनलाइन भी मंगवा लेते हैं तो मेरे पास यहाँ ऑनलाइन भी मिलता है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि हमारे, मैं ये चाहता हूँ कि हमारे देश में ये कला है जो लुप्त होती जा रही है, तो इसको मैं सरकार को, मैं भारत सरकार को कह चुका हूँ, राज्य सरकार को, भैया इनको मेरे को थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा तो हमारे केंद्र वगैरह खुल जाएगा हमारे को, यहाँ पर ऐसा प्लॉट शहर के आसपास में गांव के बीच में कोई ऐसा मिल जाए तो अच्छा मिल जाए, तो हमारा यहाँ के लोग लोकल लोग गरीब लोग हैं उनके बच्चे भी उनको भी सीखने को मिलेगा, हमारे बाहर से लोग आते हैं उनको भी मिलेगा, हमारे भारतवर्ष में सारे लोग रहते हैं, हर समाज के कोई भी आएगा तो यहाँ पर सीखने को मिलेगा।
1: मतलब आप इसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं।
2: आगे बढ़ाना है।
1: अच्छा, आपकी जो यात्रा थी जब आप पद्मश्री पुरस्कार लेने के लिए दिल्ली गए तो वहाँ के अनुभव कैसे रहे, और हमारे वहाँ प्रधानमंत्री जी थे और हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी, गृहमंत्री, बहुत सारे वहाँ पर, इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में वहाँ पर जाना क्या कुछ महसूस हुआ, वहाँ के थोड़ा वो वाक्य बताइए आप।
2: वहाँ का जो हमने पहले भी राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी की टाइम में पहली बार गया था मैं वहाँ 1986 में जब प्रोग्राम हुआ था तो अब मैंने देखा था, राजीव गांधी जी थे प्रधानमंत्री तो उनका भी प्रोग्राम मैंने 26 जनवरी का हमने प्रोग्राम किया था, तो 1 जनवरी को यहाँ से गए और 26 जनवरी तक वहाँ थे। तो वहाँ का भी मैंने देखा सेटिंग, जो आज की जो गवर्नमेंट है जो इसका जो काम का जो मतलब इतना बढ़िया व्यवस्था है ताकि किसी भी चीज की कोई तरीके से कलाकार हो या कोई भी हमारे जो भारत से किसे जो जिसको अवार्ड मिला सबको बुलाया था उनके लिए बहुत बढ़िया व्यवस्था थी, अशोका होटल में थी, और उसके बाद में जो भी हमारे गाड़ी है वगैरह हम सब जो भी हर जो आदमी था उनको अपनी अपनी गाड़ी मिली थी, तो घूमने के लिए, खाने के लिए, रहने के लिए हर तरीके का सेटअप ऐसा बढ़िया रहा कि हमारा मन ही खुश।

0: हो गया तो।
1: बिल्कुल। अच्छा देखिए, वो इतना बड़ा जो हमारा राष्ट्रपति भवन है और
0: जी
1: वहां पर पहुंचना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो जब वहां पर थे, जब पुरस्कार ग्रहण कर रहे थे, उस समय अपने देश के लिए और इस अलगोजा के प्रति क्या श्रद्धा मन में जागी आपके?
0: बस बहुत ही बढ़िया। मेरे को हमारे जो मैंने मेहनत की है, आज वहाँ सारे मतलब 131 कलाकारों को घोषणा हुई थी, जिसमें 76 लोगों को उस दिन मिला था अवार्ड। तो मैंने सबका सुना देखा, तो मुझे मेरा एक अलग ही था। मेरा राजस्थान से हम सिर्फ 3 आदमी, 2-3 आदमी थे, और वहां पर सारे वो दिख रहे थे, और साफे वाले हम 2 आदमी दिख रहे थे।
1: अच्छा,
0: तो ले देख करके मुझे साहब मोदी जी और राष्ट्रपति जी, जो भी हमारे मंत्री सारे ही वहां थे, वो सारे पगड़ी की तरफ देख रहे थे। तो
1: बिल्कुल
0: मुझे बहुत बहुत खुशी हुई। मैं वो साहब बहुत अच्छी बात है कि हमारे राजस्थान के जो अलग ही है वो चीज, तो हमारे यहाँ की जो राजस्थान की जो कला है, वेशभूषा है, जो लोग देखने के लिए आते हैं, तो
1: और
0: उसकी राजस्थान की कला को और उसी वेशभूषे का भूषा जो है हमारा, जो हमारा पहनाव है, इनको बहुत लोग पसंद करते हैं।
1: और आपने वो राष्ट्रपति भवन के अंदर जब राजस्थान की जो जैसे पगड़ी साफा पहन के वहां पर गए, तो एक आकर्षण का केंद्र आप रहे होंगे वहां पर। और एक चीज और भी है, देखिए, आपने ना सिर्फ हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, जो साफा पगड़ी वगैरह, इसको आपने वहां पर पहन के गए, दूसरा कि एक लोकवाद्य यंत्र जो कि देखिए, जब आपने हाथ में पहली बार ये लोकवाद्य जो हमारा पकड़ा होगा, तब कहीं कल्पना नहीं की होगी कि ये मुझे राष्ट्रपति भवन पहुंचा सकता है। लेकिन आप निस्वार्थ भाव से आपने मेहनत की और आप बजाते रहे। तो कहते हैं ना कि अगर कोई निस्वार्थ भाव से कर्म करता है तो फल जरूर मिलता है, तो आपको इसका जो फल प्राप्त हुआ। अब हम थोड़ा सा अलगोजा के ऊपर आते हैं कि ये जो अलगोजा है, दो बांसुरी को एक साथ बजाया जाता है। इसके अंदर जो हम जब मुंह से दोनों बांसुरी बजाते हैं, तो दोनों बांसुरी के अंदर किस प्रकार से हवा को कंट्रोल किया जाता है, किस में कितनी हवा जानी है, ये क्या टेक्निक होती है बजाने की, हमारे सुनने वालों को थोड़ा सा आप बताइए।
0: ये लंबा इसीलिए बनाया, इसमें एक तानपुरे की तरह इसमें सुर बनाया गया, जैसे तानपुरे का जैसे सा को पकड़ लेता है, इसी बैस को मान लो बैस है।
1: जब इसमें बेस
0: हाँ
1: बड़े
0: बैस,
1: वाले में
0: हाँ,
1: और
0: तो
1: ये
0: इसमें
1: छोटा वाला,
0: ट्यूनिंग होता है।
1: ओ छोटा वाला।
0: हाँ
1: अब जब आप बजाते हो तो इसमें दोनों में जो हवा जाती है मुंह से, तो उसको कंट्रोल किया जाता है किसमें कितनी जानी है, या
0: बस
1: एक एक जैसी हवा जाती है?
0: इसको तो पूरा जितना चाहिए उतना सेट कर लेते हैं,
1: अच्छा,
0: तो उतनी उतनी हवा वहाँ उससे ज्यादा जाती नहीं है।
1: ओके।
0: और इसमें जब कभी हाई में जाना पड़ता है, कभी जोर से फूंक मारनी पड़ती है, कभी कम माननी पड़ती, सब इसको इसके साथ खेलना पड़ता
1: हाँ, ये छोटा
0: है,
1: वाला जो है
0: छोटे
1: ना,
0: वाले के साथ खेलना
1: हाँ
0: पड़ता
1: बिल्कुल
0: है।
1: बिल्कुल,
0: इसको इसको सेटअप करके एक
1: उसको
0: जगह
1: एक बार
0: रखना
1: एक जैसा ही बजेगा।
0: एक जैसे।
1: हाँ, मैं जब सुनते हैं ना, हमारे सुनने वाले सीखने वाले हैं, तो अलगोजा में अब देखिए, एक तो जो बड़ा वाला बांसुरी है आपका, वो तो बेस हो गया, वो कंटिन्यू
0: हाँ
1: एक
0: वो
1: समान
0: कंटिन्यू
1: बजेगा,
0: एक समान
1: और
0: बेस।
1: आपको जो गाना निकालना है वो इस छोटी वाली से ट्यूनिंग करके आगे पीछे सुर करके, और वो निकलता है। अच्छा, थोड़ा आप बजा के बताइए
0: हाँ
1: कि किस प्रकार से आप कंट्रोल करते हैं, जो सुनने वाले हैं हम उनको बताना चाहते हैं कि जो सुनने वाले होते हैं तो उनको अंदाजा हो जाएगा कि किस प्रकार अलगोजा की धुन निकलती है।
0: जी
1: तो सबसे पहले आप एक हमारा बहुत अच्छा देशभक्ति गीत है, मेरे वतन के लोगों, शायद आप वो मुझे आप सुनाएं तो बहुत अच्छा लगेगा।
0: जी जी तो ये अलगुजा है, जो इसमें 6 उंगली, जैसे बांसुरी में जितने सुर होते हैं उतने के उतने इसी में होते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और इसको जैसे 6 राग है, उसकी सरगम होती है, 6 रागों की सरगम अलग अलग होती है, तो वो सारी सरगम इसी 6 उंगलियों के अंदर होती है।

0: बहुत ही खूबसूरत आपने ये राष्ट्रीय यूं कहें कि एक देशभक्ति धुन आपने बजाई, और ये एक दिन में नहीं सीखता कोई, ये 55 साल की आपकी ये तपस्या है, इसके कारण आप आज इतनी अच्छी धुन आप सुना पाते हैं। तगाराम जी, ये अद्भुत कला है और इस कला को और आगे बढ़ाने के प्रयास जो आपके हैं वो अद्भुत हैं, और इसीलिए सरकार ने आपको इस आपकी कला को एक मान्यता प्राप्त की है कि आप एक बहुत बड़े कलाकार हैं। तो सचमुच तगाराम जी, जो ये अलगोजा है मनमोहक है, और जब हम इसकी धुन सुनते हैं इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। अब हम जानते हैं आपसे कि ये जो बनाया जाता है ये कौन सी लकड़ी इस्तेमाल होती है, और आप क्या इसको खुद घर पे ही बनाते हैं या कोई मशीनों के द्वारा या हाथ के द्वारा, किस प्रकार से यह बनाया जाता है?
1: ये सब एक तो शीशम की लकड़ी है, एक केर की। तो
0: अच्छा
1: यहाँ शीशम पहले तो नहीं मिलता था, लेकिन अब शीशम मिल जाता है।
0: हाँ
1: तो मैंने फिर भी दिल्ली से वहाँ से मंगवाए थे शीशम की लकड़ी। और ये केर का तो यहाँ लोकल का हमारा, ये केर तो हमारे यहाँ का जैसलमेर का, यहाँ हमारे राजस्थान का चंदन है,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: बहुत ही इसकी मीठी आवाज़ है। तो
0: अच्छा, जो आपने कहा कि ये शीशम की लकड़ी और एक है
1: हाँ,
0: जो अपना होता है यहाँ का, ये कौन सी लकड़ी है?
1: ये शीशम है,
0: अच्छा, और ये वाला
1: ये है केर की।
0: कैर।
1: हाँ
0: अच्छा, तो ये कैर के अंदर जो सुर निकलता है ये थोड़ा यूं कहें कि तीखा और उसमें बेस होता है।
1: हाँ
0: हाँ अच्छा, दोनों एक ही लकड़ी के नहीं बन सकते? हाँ
1: एक ही लकड़ी के बन सकते हैं, तो
0: हाँ
1: एक ही लकड़ी का ना ये दो।
0: अच्छा
1: अभी अभी
0: अच्छा
1: मैंने यही बजा रहा था, दो।
0: हाँ हाँ
1: अब
0: हाँ
1: इसके साथ अगर राग भैरवी बजानी है तो फिर मेरे को ये छोटा है थोड़ा, ही
0: हाँ
1: दूसरी ऐसी शीशम का भी बन सकता था, लेकिन दोनों लकड़ी का अलग अलग बना के रखा
0: अच्छा,
1: है।
0: जैसे मैंने देखा है कि जब हम आपसे कोई धुन सुनना चाहते हैं तो आप इसको जो ऊपर वाला जो छेद है ना
1: हाँ
0: इसको आप कम ज्यादा करते हो कि हवा कितनी बाहर आनी चाहिए।
1: हाँ जैसे ये मोम लगा हुआ है, मधुमक्खी का मैल
0: अच्छा
1: बोलते हैं इसको, तो इसको थोड़ा
0: ऊपर नीचे
1: मतलब
0: करना पड़ता।
1: बराबर, मतलब सुर मिलाते हैं ना तो ट्यूनिंग करते हैं, तब इसको थोड़ा ऊपर नीचे करते हैं तो ट्यूनिंग सेट हो जाता
0: ये
1: है,
0: ट्यूनिंग के लिए होता है।
1: ट्यूनिंग के लिए।
0: अच्छा, ये जो सब कुछ आप करते हो ये कहाँ से सीखा, यो कहें कि आपका गुरु कौन रहा है या आपकी परंपरागत ये कला है?
1: ये देखो, गुरु बजाने के लिए तो मेरा पिताजी बजाते थे, तो वो गुरु ही है मेरे,
0: हाँ बिल्कुल।
1: क्योंकि अगर पिताजी नहीं बजाते तो मेरे को कहाँ मिलता था। लेकिन ये मुझे फील हो रहा था मेरे को, मैं जब बजाता था तो मेरे पिताजी ने कभी बोला नहीं कि बेटा तू सीख बजा,
0: हाँ
1: लेकिन कुदरत ने हमें
0: आपका
1: ललकारा।
0: शौक था
1: हाँ
0: आपका।
1: शौक था, मैंने पिताजी बजाते थे मुझे अच्छा लगता था, तो मैंने जब पिताजी ऊंट लेके लकड़ी बेचने के लिए जाते थे तो मैं बकरी के साथ जाता था, तो चुपके से उठा के साथ निकल जाता था जंगल में, तो दिन भर ऐसे बकरी के साथ चराते खेलते बजाते बजाते ऐसे सीख गया। मतलब 7 साल की उम्र में मैंने बकरी
0: बजाना
1: चराना
0: शुरू किया।
1: बजाना शुरू कर दिया, तो 7 साल से लेकर 10-11 साल की उम्र हुई तब मैंने बजाना शुरू कर दिया।
0: अच्छा, आपके पिताजी जो इस कला को आप तक पहुंचाया, तो आपके पिताजी को कभी कोई बड़ा मंच मिला या घर पे ही बजाते थे, शौकिया बजाते थे या कहीं शादी विवाह में कहीं जाते थे क्या?
1: नहीं, पिताजी कभी ऐसे मंच पे बजाए नहीं। कभी कभी हमारे यहाँ जब हम डेजर्ट फेस्टिवल मेले में हम जब मेरे को पहला स्टेज स्टेज मिला, तो उसके बाद में मेरे घर पे कभी कभी ग्रुप भी आ जाते थे, हमारे जो अधिकारी
0: हाँ
1: टूरिज्म के थे राजेंद्र सिंह जी, वो कभी कभी ग्रुप लेके आ जाते थे, तो फिर वहाँ उनके आगे फिर मैं बजाता था, तो मैंने मेरे से पूछते थे वो लोग अंग्रेज कि आप इसने कहाँ से सीखा, तो मेरे पिताजी बजाते, तो मेरे पिताजी मौजूद थे उस टाइम, तो वो कभी
0: तो
1: कभी बजा लेते थे वैसे। बाकी वैसे बाहर जैसे प्रोग्राम करने के लिए कभी गए नहीं।
0: अच्छा, जो पहला प्रोग्राम था आपका जो हमारा यहाँ पर मरु महोत्सव का आयोजन किया जाता है,
1: हाँ जी,
0: उस समय कितने वर्ष के थे आप, उम्र क्या थी आपकी?
1: उस टाइम मैंने 1981 में, मेरी उम्र देखो 1961 का तो मेरा जन्म है,
0: मतलब 20 साल
1: हाँ,
0: पहले।
1: तो 1981 में मैंने पहला प्रोग्राम जो दिया था वो मैंने दिया था गोपा चौक में जैसलमेर के अंदर, वो था 15 अगस्त का।
0: अच्छा।
1: तो उसके बाद में 1982 में मैंने पहला प्रोग्राम स्टेज का यहाँ पर जैसलमेर में दिया।
0: पहला प्रोग्राम मतलब 20 वर्ष की आयु में, और आपने बताया था कि 7 वर्ष की आयु में आपने जो शुरू किया था।
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: हाँ, तो अब हम आपसे देखिए, हमारा वैसे तो लोक संगीत बहुत ही यूं कहें कि यहाँ पर बहुत रिच है और बहुत अच्छी अच्छी यहाँ की धुनें हैं, अब आपसे हम अपनी एक लोक धुन जो यहाँ की आप बहुत अच्छी आपको लगती हो और आप कौन सी सुनाना चाहेंगे?
1: कुरंजा ही सुना दूं थोड़ी।
0: हाँ बिल्कुल, और कुरंजा के बारे में जैसे के कुरंजा हमारे यहाँ लोकगीत भी गाए जाते हैं।
1: हाँ
0: और ये प्रेमी और प्रेमिका की जो यो कहे कहानी कहे बयां करते हैं, एक मिलने बिछड़ने की कहानी जैसी एक कुरंजा का को प्रतीक मान करके ये बहुत सारे लोकगीत बनाए गए और उसी धुन को हम सुनते हैं आज इस अलगोजा पर, जो बहुत सुंदर ये अलगोजा की धुन कुरंजा के रूप में आपको सुनवाते हैं।

0: बहुत ही खूबसूरत ये कुरंजा धुन हमने अलगुजा पर सुनी। और तकाराम जी, आपने ऐसी मीठी मीठी धुनें देश के कोने कोने तक पहुंचाई है। देश के अलावा आप कौन से देश में ये अलगुजा आप सुना चुके हैं?
1: सबसे पहले तो यूरोप में गया था, पहला प्रोग्राम था हमारा फ्रांस में, नॉन्थ फेस्टिवल करके एक फेस्टिवल हुआ था जिसमें इंडिया का भी लोग साथ में थे। तब राजस्थान टूरिज्म वालों ने मुझे वहाँ पहुँचाया
0: फ्रांस में।
1: उसके बाद में फिर यात्रा शुरू होगी, फिर वहाँ यूरोप के मेरे 3-4 टूर और मिल गए। फिर मैंने 2002 तक वहाँ पर यूरोप में किए। फिर मैं जापान भी गया, मैं सिंगापुर भी गया, हांगकांग गया, सब रूस में भी गया, क्रोशिया, एक छोटा सा क्रोशिया देश है वहाँ भी गया। तो वहाँ के एक फेस्टिवल में तो वहाँ पर मुझे सम्मानित भी किया गया उपराष्ट्रपति द्वारा। तो उसके बाद में हम कई यूरोप के देशों में फिर यात्रा हुई। मैं अमेरिका में मैं

0: मेरे दो टूर हुए तो 4 महीने अमेरिका में रह आया, तो मैं रह के वहाँ के लोग भी बहुत ही पसंद करते हैं लोग। मैं जहाँ जहाँ गया हूँ अलगू जो कहा जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है लोग बहुत ही पसंद करते हैं इसको। तो वहाँ पर अमेरिका में भी मुझे चार अवार्ड वहाँ पर मिल चुके हैं, वहाँ पर लोगों ने सम्मान किया मुझे।
1: बिल्कुल। अच्छा,
0: वो
1: जो
0: मुझे
1: अमेरिका के अंदर जो हमारी आप लोक धुनें ही सुनाते थे उनको, या कभी ऐसा मौका आया कि वहाँ की किसी ने फरमाइश की हो कि जो वहाँ का जो पॉप संगीत है और उससे आपने फ्यूजन किया, उनके साथ कभी आपने संगत की?
0: हाँ बिल्कुल, जैसे हम रात को जैसे प्रोग्राम खत्म होने के बाद में जब लोग मुझे मिलते थे तो वो लोग आते थे मेरे को, यार हमारे को भी ये सीखना है बजाना है, तो साथ में हम बैठ करके वो हम आप अपने इंस्ट्रूमेंट जो गिटार होते हैं जैसे अलग अलग टाइप के जो होते हैं कई तरीकों के जो तार के साथ होते हैं वो बजाते हैं, गिटार है वायलिन है जो भी है तो वो बजाते हैं, साथ में प्रयास करते थे बजाते थे,
1: अच्छा,
0: उनको अच्छा
1: जो
0: लगता था।
1: वो फ्यूजन था कितना सफल रहता है, जैसे कि हम अपना लोक संगीत तो इस पे बहुत सुना है, और शास्त्रीय संगीत भी आप इस पे बजाते हो,
0: जी
1: देशभक्ति गीत भी बजाते हो, तो जो विदेशी जो पॉप संगीत के साथ इसका फ्यूजन कैसा लगता था लोगों को?
0: बहुत ही अच्छा लगता है उन लोगों को, तो बहुत ही अच्छा लगता है। कई लोगों तो मैं जैसे अपना देसी में बजाता हूँ तब तो कई लोग तो वहां के जो ऐसी राग जो मैं बजाता था या भैरवी बजाता या फिर शाम कल्याण बजाओ या कोई ऐसी राग बजाते तो उनको कोई कई लोग तो आंखियों में आंसू आ जाते, रोने लग
1: बिल्कुल
0: जाते थे।
1: बिल्कुल।
0: तो ये साज ऐसा मीठा है ताकि वो उसको उन लोगों को जिसके चुप जाता है ना वो फिर वो कभी भूलता नहीं वो उनको सुनने के लिए। फिर वहाँ कई लोग मेरे एक बार है ना मेरी धुन वहाँ एक सुनी थी तो वो लोग फ्रांस में आए ना इंडिया में आए तो वो लोग आए दिल्ली तक आए, तो वहां से दिल्ली से यहाँ मेरे को मिलने के लिए स्पेशल आए के दिल्ली तक उनका था आने का, लेकिन वो अलगुजा सुनने के लिए मेरे पास यहाँ पर पहुंच गए हैं।
1: अच्छा, कहीं आपके मैंने देखा कि विद्यार्थी सीखने के लिए आते हैं, जिसमें अपने देश के भी हैं और बाहर के भी हैं, तो कहाँ कहाँ के विद्यार्थी इस अलगोजा को सीखने आए आपके पास, और आपने कितना उनको सिखा के भेजा?
0: बहुत जैसे फ्रांस के यूरोप के लोग 3 4 5 7 देशों के अंदर अंदर अलग अलग से फ्रांस के जर्मनी के हॉलैंड के इटली के कई लोग मेरे पास आए, वो आज मेरे मेरी तरह बजा रहे हैं, वो लोग मेरे को गुरु मान के वो जब वो कोई भी उनको पूछते हैं कि तो आपका गुरु कौन है तो वो बताते हैं कि तगर हम मेरा हमारा गुरु है, तो मेरे पास भी उनका कई बार मैसेज भेजते हैं वो भेजते हैं लिख के भी भेजते हैं और बात भी होती है कभी कभी ऑनलाइन बात भी कर लेते हैं। तो अमेरिका में भी है ऐसे स्टूडेंट है, साउथ अमेरिका में भी है, कई देशों के अंदर जापान के अंदर भी है, और मैं क्या मेरे को याद नहीं इतना कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, लेकिन मैं अनपढ़ आदमी हूँ इतना मैं वापस रिप्लाई नहीं कर दे सकता हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा लेट मेरे को ये अवार्ड वगैरह मिला, इसलिए अच्छा लगा मुझे इतना सारा जो दुनिया के अंदर घूम करके यार मैंने अपना इंस्ट्रूमेंट के साथ जो भी काम किया मुझे बहुत ही मैंने सपने में नहीं सोचा था कि मैं यहाँ
1: यहाँ
0: जाऊँगा
1: तक पहुंचोगे।
0: यहाँ तक पहुंचूंगा।
1: अच्छा, आपने बाहर के व्यक्तियों को तो बहुत सिखाया, इस कला को क्या आपने अपने घर में भी इसको अपने बच्चों को सिखा रहे हो, और क्या अलगोजा आपके घर में अभी कोई बजाता है?
0: हाँ अभी घर में भी मैं कोशिश बहुत करता हूँ, हमारे गांव के लोगों को सबको मैं कहता हूँ कि भई आप ये मैं जब तक हूँ तब ये कला मिल रही है तो आप फ्री में मिलने का सीखने के लिए मिल रही है तो आप सीखो, तो मतलब कई लोग आते हैं तो कोशिश करते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे इसको सांस लेना कैसे इसको कंट्रोल करना, तब वो 2 दिन 4 दिन ऐसे मेहनत करके फिर भाग जाते हैं। एक मेरा बेटा मुकेश है वो बजाता है जो
1: अच्छा
0: आप,
1: अच्छा
0: तो वो अभी उसको इंटरेस्ट है वो बजा भी रहा है, वो मैं उनको बनाने का भी थोड़ा सिखाऊंगा, वो अगर बनाएंगे तो और अच्छा होगा आगे, बनाने के लिए अभी मुझे बहुत जरूरत है, तो मैं केंद्र सरकार को राज्य सरकार से यही मेरी मांग है मैं ये ज्यादा से ज्यादा इंस्ट्रूमेंट बनाऊं, अभी लोग मेरे पास डिमांड है मेरे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है।
1: बिल्कुल, इसकी बनाने की टेक्निक है वो बड़ी कठिन है, और मुझे लगता है कि अगर आपके पास जो टेक्निक आ जाए इसको बनाने की, तो आप बेहतर अलगोजा बना
0: हाँ
1: करके आप उनको दे सकते हो। अच्छा, अब चलते चलते एक जो हम यो कह के भजन भी आप इस पे सुना सकते हो क्या?
0: बिल्कुल।
1: तो जो हमारा लोक संगीत है वो उसमें जो भजन होते हैं हमारे लोक भजन, हम चाहेंगे अलगोजा पर हमारे श्रोताओं के लिए आप सुनाते हैं।
0: ठीक है, तो ये मैं राग भैरवी में मैं सुनाऊंगा।
1: अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दो कि ये भजन राग भैरवी में,
0: हाँ,
1: भैरवी दो तरह से बजाया जाता है और आप कौन सा भैरवी बजा रहे हैं?
0: तो ये मैं वैसे इसको सिंधी भैरवी भी कह लेते हैं और अपनी देसी भैरवी भी इसमें मान लो, लेकिन ज्यादा कर में इसमें जो सिंधी भैरवी की तरह ये थोड़ा सुर मीठा बनता है, तो उसमें हम मिक्स कर लेते हैं, फिर सिंधी के अंदर हम पाँच वापस हुआ जा करके हम हिंदी वाले भी मिला लेते हैं।
1: तो चलिए श्रोताओ, ये राग भैरवी में जो ये भजन सुना रहे हैं, आइए सुनते हैं।
0: जी जी, ये अभी जो सुनाने जा रहा हूँ मैं, इस भजन का बोल है, कामण किया रे भोले कान जी, मारो मन मोयो बैरागी। ये राजस्थानी भजन है।

0: ये आकाशवाणी जैसलमेर है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से।
1: मुख्य समाचार। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एक रूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाईची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। कल 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टर ले स्ट्रीट में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से होगा। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंड से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
2: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ईयर एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
2: दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है बीच में, आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबरई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा कंप्लीट, एक्सप्रेस वे की तरह का है। 2.5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा 3 जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
1: इस परियोजना से लगभग 1,20,00,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी है। एक रिपोर्ट।
3: VBG रामजी योजना के अंतर्गत अब देश में कहीं भी तय की गई प्रतिदिन की मजदूरी 300 रुपए से कम नहीं होगी, जिससे राष्ट्रीय औसत मजदूरी 298 रुपए 80 पैसे प्रतिदिन से बढ़कर 327 रुपए 40 पैसे प्रतिदिन हो जाएगी।

0: आकाशवाणी समाचार नई दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकी परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वह जनसांख्यिकी परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। गृह मंत्री ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरों के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एक रूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के ITR में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली सरकार के साथ TB मुक्त भारत अभियान और डेंगू की तैयारियों पर समीक्षा बैठक की। श्री नड्डा ने इस अभियान को गति देने के लिए जन भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया। श्री नड्डा ने कहा कि व्यापक जन संचार सुनिश्चित करने के लिए अभियान से संबंधित सभी संचार सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में होना चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में निरंतर बदलाव में विशेषज्ञों की भागीदारी, संस्थागत सहयोग, संवादात्मक शिक्षण और समय अनुकूल विषय वस्तु पर बल दिया है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि 21वीं सदी में सुशासन के लिए ऐसे प्रशासकों की आवश्यकता है जो निरंतर सीखने, प्रौद्योगिकी, नवाचार और जन भागीदारी के युग में आगे बढ़ने में सक्षम हों। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंची। उनकी ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। दोनों नेताओं के बीच वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जापान पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम के माध्यम से काम कर रहा है।
2: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत और पाकिस्तान ने आज एक दूसरे की हिरासत में मौजूद सिविल कैदियों और मछुआरों की सूचियों का आदान प्रदान किया। भारत ने अपनी हिरासत में मौजूद 386 कैदियों और 53 मछुआरों की सूचियां साझा की। पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में मौजूद 52 कैदियों और 198 मछुआरों की सूचियां साझा की। भारत ने 188 भारतीय नागरिकों की रिहाई और 13 लोगों तक कौंसिलर पहुंच की मांग की। भारत ने पाकिस्तान के फरुखाबाद में 125 वर्ष पुराने पवित्र गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब को ध्वस्त किए जाने की कड़ी निंदा की है। भारत ने इसे अत्यंत निंदनीय और बर्बरता का कृत्य बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों को निशाना बनाने का सिलसिला लगातार जारी है। सरकार ने आज देश में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू करने के संबंध में मेटा को नोटिस जारी किया है। सूत्रों के अनुसार सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा को 3 दिनों के भीतर यूजर नेम फीचर के बारे में विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने

0: यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉक्टर साहा ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। 4 जुलाई तक तटीय कर्नाटक, गुजरात क्षेत्र, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और विदर्भ में भी अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच मुंबई में कल से तेज वर्षा हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने 5 जुलाई तक कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है।
1: बृहन्मुंबई महानगर पालिका के अनुसार आज सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच मुंबई के पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों में 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई। मूसलाधार बारिश के कारण अंधेरी, दादर सहित कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे यातायात और जनजीवन प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने कल के लिए पालघर जिले में रेड अलर्ट जारी किया है और अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से शैलजा तिवले।
0: वस्तु और सेवा कर जीएसटी से सरकार को जून महीने में 1,94,812 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। ये पिछले वर्ष जून की तुलना में 13.9% अधिक है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 444 अंक बढ़कर 76,923 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 140 अंक बढ़त के साथ 24,006 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 के तुलना में रुपया 57 पैसे कमजोर होकर 95.24 रुपए पर बंद हुआ।
0: नई दिल्ली में आकाशवाणी के रंग भवन में आज फोटो गैलरी स्वर प्रेरणा वीथिका का अनावरण किया गया। पद्म विभूषण बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि आकाशवाणी ने भारत के समृद्ध संगीत विरासत को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
3: आकाशवाणी ने हमेशा से ही अपने कार्यक्रमों में संगीत की सभी विधाओं को स्थान दिया है और संगीत में रुचि रखने वाले कलाकारों को प्रोत्साहन दिया है और साथ ही श्रोताओं की पसंद का भी विशेष ध्यान रखा गया है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत, भक्ति संगीत, फिल्म संगीत, पाश्चात्य संगीत, रवींद्र संगीत, इस प्रकार अनेक विधाओं के संगीत को कोई सुनना चाहे तो आज भी उनके लिए आकाशवाणी सर्वश्रेष्ठ माध्यम है।
0: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मैच आज रात 10 बजे चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और DR कॉन्गो आमने सामने होंगे। देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा कल से शुरू होगी। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 57 दिनों की यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एकरूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला DR कॉन्गो से। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Government approves 2 major highway infrastructure projects in Delhi and Uttar Pradesh worth over 14,000 crore rupees. Vikasit Bharat G. Ramji Act comes into force across the country. Centre notifies revised wage rates under the scheme. Supreme Court issues guidelines on assessing income of motor accident victims for uniformity in compensation claims. Prime Minister of Japan Sanae Takaichi arrives in New Delhi on a 3-day visit to India to take part in 16th India-Japan Annual Summit tomorrow. In men's cricket, India to take on hosts England in first T20 international 5-match series tonight. And in FIFA World Cup, England to face DR Congo in round of 32 at Atlanta in US tonight.

0: प्रीति और पिंकी के गाए फिल्म हर दिल जो प्यार करेगा कि इस गीत के साथ ही श्रोताओं, फिल्म संगीत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी जैसलमेर है, FM बैंड 101.8 MHz पर। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय।
1: चर्चा का विषय है ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है कार्यक्रम में प्रस्तुत है डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष AI सेमीकंडक्टर और डिजिटल बुनियादी ढांचे में क्रांतिकारी परिवर्तन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं AI विशेषज्ञ प्रसून शर्मा और AI एवं तकनीकी विशेषज्ञ उत्पल चक्रवर्ती। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
2: श्रोताओं नमस्कार, चर्चा का विषय कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष पूरे होने पर, जिसमें हम बात करेंगे AI सेमिकॉन और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। आज हमारे साथ जुड़े हैं दो खास मेहमान, जिनमें एक है प्रसून शर्मा जो AI एक्सपर्ट है। हमारे साथ स्वागत है आपका।
3: नमस्कार।
2: और श्रोताओं हमारे साथ जुड़े हैं AI एंड टेक एक्सपर्ट उत्पल चक्रवर्ती जी। उत्पल जी, कार्यक्रम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
4: नमस्कार जी।
2: उत्पल जी, सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे इस बारे में जानना चाहेंगे कि 2015 से लेकर के आज तक की इस पूरी यात्रा को अगर हम देखते हैं तो भारत के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही और किस तरह ये जो उपलब्धि हासिल हुई है, जो भी हमने कार्य किए हैं उन पर आपके क्या विचार हैं?
4: जो ये टाइम फ्रेम जो है, इसके अंदर हम लोग टेक्नोलॉजी फ्रंट पे बहुत एडवांसमेंट किया है, चाहे वो हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे हमारा UPI जैसा पेमेंट सिस्टम हो, या हम लोग ये भी देखे है कोरोना के टाइम पे अपना कोविन जो है, ये जो नया अभी प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं जो कि सिटीजन सेंट्रिक प्लेटफॉर्म है, ये क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत एडवांसमेंट हुआ है, जो कि खाली देश के अंदर ही नहीं, ये विदेशों में भी ये एक मॉडल बन के आया है बाकी डेवलपिंग कंट्री के लिए, इवन की डेवलप्ड कंट्रीज के लिए। क्योंकि हम लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार किया है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग है और इतना वर्सेटाइल है कि अभी हम लोग कोई भी डिजिटल टेक्नोलॉजी, चाहे AI हो, चाहे क्वांटम हो, या कोई भी डेटा इकोसिस्टम हो, सब कुछ हम लोग बना सकते हैं इसके। तो ये जो ग्राउंड वर्क किया गया है, ये 11 साल में मतलब रिमार्केबल मतलब उपलब्धि है।
2: प्रसून जी, अगर आपसे मैं बात करूं, आपसे जानना चाहूं, तो डिजिटल इंडिया की जब शुरुआत हुई 2015 में, तब शायद किसी ने इतना नहीं सोचा होगा कि दुनिया का एक बहुत बड़ा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में तैयार होगा। तो आपके हिसाब से इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ी सोच क्या रही और कौन से ऐसे अहम फैसले थे जो इस बदलाव के भागीदार बने?
3: डिजिटल इंडिया के ये 11 वर्षों को ऐसा देखता हूँ कि लाइन में लगने वाली अर्थव्यवस्था को ऑनलाइन अर्थव्यवस्था में परिवर्तित कर दिया डिजिटल इंडिया ने पिछले 11 वर्षों में, और उसके तीन महत्वपूर्ण जो उपलब्धियां या माइलस्टोन मैं कहूंगा, पहला डिजिटल पहचान जो हमारा आधार है, दूसरा हमारा डिजिटल भुगतान जो UPI है, तीसरा जो सरकार की सेवाएं हैं, चाहे वो आप पासपोर्ट देख लीजिए, टैक्स देख लीजिए, शिक्षा का क्षेत्र देख लीजिए, मेडिकल सर्विसेज, उसका डिजिटाइजेशन, ये तीन बड़े स्तंभ हमने ना सिर्फ खड़े किए, उसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करके एक ग्लोबल बेस्ट केस सिनेरियो हमने क्रिएट किया है।
2: डिजिटल इंडिया के स्तंभों की अक्सर चर्चा की जाती है। श्रोताओं आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विषय में क्या कहा।
5: डिजिटल इंडिया के चार पिलर्स की पहचान की थी, डिवाइस की कीमत कम होनी चाहिए, दूसरा डिजिटल कनेक्टिविटी देश के कोने कोने तक पहुंचे, तीसरा डेटा सबकी पहुंच में होना, और चौथा डिजिटल फर्स्ट ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए।
2: और हर स्तंभ की अपनी एक विशेष भूमिका रही है, तो आपको क्या लगता है कि सबसे प्रभावशाली स्तंभ कौन सा रहेगा, किसे आप चुनना पसंद करेंगे?
3: मुझे लगता है सबसे पहला है डिजिटल पहचान, वो सबसे बड़ा स्तंभ था और वो जिस तरीके से हमने इम्प्लीमेंट किया है, मुझे नहीं लगता कहीं पे भी पूरे विश्व में इतने बड़े लार्ज स्केल पे डिजिटल आइडेंटिफिकेशन का कोई प्रोजेक्ट हुआ है सक्सेसफुली। जब हमें डिजिटल पहचान मिली, उसी के बेस पे हम सर्विसेज दे रहे हैं, चाहे वो भुगतान हो, चाहे वो सब्सिडीज हो, चाहे वो स्कॉलरशिप्स हो, चाहे वो मतलब आजकल हेल्थ इंश्योरेंस हो या पेंशन हो। तो मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण जो डिजिटल पहचान हमने दी अपने सारे नागरिकों को, वो सबसे बड़ा माइलस्टोन रहेगा इसका।
2: उत्पल जी, आप इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे?
4: मैं सहमत हूँ सुन जी से, क्योंकि डिजिटल पहचान जो है, आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके बाद जो भुगतान जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो मॉडल है ये मॉडल कोई भी जगह नहीं है। इतना यूपीआई जैसा एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा खराब हुआ है, और आज खाली यूपीआई नहीं, फ्यूचरिस्टिकली अगर हम लोग देखें तो अगर कोई भी अगर ऐसा जो कि कंट्री को एंटायर पॉपुलेशन को सर्विस देने जैसा अगर कुछ बनाना है कल को, तो वो कर सकते हैं। और वो एग्जाम्पल मैं बोला कि हम लोग कोरोना के टाइम पे देखा कि हम लोग कितना जल्दी, मतलब ये जो कोविन एप्लीकेशन है उसको हम लोग लॉन्च कर दिए, और हमारा जितना भी वैक्सीनेशन है ये कितना अच्छी तरीके से हो गया, और ये भी एक बहुत बड़े मॉडल के जैसे बाकी देशों के सामने आ गया।
2: प्रसून जी, आज भारत में अगर हम बात करते हैं तो मोबाइल कनेक्टिविटी बहुत ही लार्ज स्केल पर फैल चुकी है, गांव-गांव तक इंटरनेट की कनेक्टिविटी पहुंच रही है, 5G पहुंच चुका है लोगों के पास तक, तो असली चुनौती सिर्फ कनेक्टिविटी देना तो नहीं रहा होगा। हालांकि जो डिजिटल सेवाएं हैं हमारी जिनको हमने शुरू किया है, जो आज बड़े पैमाने पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनको सिखाने में खासतौर पर जो सरकार की भूमिका रही उसे आप किस तरह देखते हैं कि सरकार ने कितना बढ़ चढ़ कर किस चीज को किया?
3: सरकार ने इसकी नींव रखी, जैसे सड़कें हमारी फिजिकल अर्थव्यवस्था को चलाती हैं, वैसे ही डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल अर्थव्यवस्था को चलाती है। तो वो जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार ने क्रिएट किया उसके ऊपर, चाहे वो सरकारी सुविधाएं हों या हमारे तकरीबन 2 लाख स्टार्टअप्स हैं जो उसमें सुविधाएं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सरकार का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स में बहुत बड़ा योगदान रहा है, और वो फ्यूचरिस्टिक रहा है और वो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव रहा है। ना सिर्फ कनेक्टिविटी, कंप्यूट एप्लीकेशंस भी रीजनल भाषाओं में दी जाए ताकि वो एकदम लास्ट माइल तक पहुंच सके, और लोकल सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स जो कि स्टार्टअप या एमएसएमई के थ्रू हो। तो मेरे हिसाब से सरकार ने एक बहुत अच्छा अगले 100 साल के लिए एक बेस प्रोवाइड किया है डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए।
2: डिजिटल अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, मैं इस चीज को समझ पा रहा हूँ कि पहले एक दशक पहले की अगर हम बात करते हैं, बहुत ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, तो सरकारी काम कराने या किसी भी तरह के काम कराने के लिए लंबी कतारें देखी जाती थी, कई सारे कागज हमें इस्तेमाल करने होते थे, पेपर वर्क बहुत सारा होता था, चक्कर भी लोगों को लगाने पड़ते हैं। आज जो हमारे पास डिजी लॉकर की हम बात करते हैं, CSC की बात करते हैं, सिंगल ऑन स्क्रीन की बात करते हैं, सिंगल विंडो की बात करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि डिजिटल गवर्नेंस ने आज हमारे जीवन को पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा आसान बना दिया है?
3: जी बिल्कुल, ना सिर्फ आसान बना दिया, अब हम उसमें एक लीडिंग एग्जांपल्स भी दे रहे हैं। हम डिजिटल इंडिया से अब AI इंडिया मिशन की तरफ जा रहे हैं, जिसमें AI से हमें समय कम लगेगा, हमारे काम जल्दी होंगे, और जो रूटीन काम थे जैसे पेपर वर्क वाले, और वो काफी हद तक कम हो जाएंगे, उसमें जो भी खर्चा था या समय था। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और ना सिर्फ भारतीयों के लिए, ये पूरे विश्व के लिए। ये पहले अगर आप डिजिटल अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी की बात करें, सिर्फ 2 ही डिजिटल इकोनॉमी थी पूरे ग्लोब में। पहला था US ओरिएंटेड, जिसको हम GAFAM बोलते हैं, गूगल एप्पल वो प्रोवाइड करते थे। तीसरा चाइना सपोर्टेड था, जिसमें बायदू अलीबाबा आते हैं। दूसरा और तीसरा अब हमारा है, भारत का जो ऑप्शन उन्होंने दिया है, जिसमें जो मेन कोर भारत के डिजिटल इकोसिस्टम का जो कोर है वो है टू बेनिफिट कॉमन मैन।
2: जी
3: हमारा प्रॉफिट ओरिएंटेड एम नहीं है। इसके बेस पे ना सिर्फ हम भारत के कॉमन सिटीजन्स को इंक्लूड कर रहे हैं डिजिटल, फाइनेंशियल और अदर एस्पेक्ट में, हम ग्लोबली भी ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं डेवलपिंग नेशंस को, कि कॉमन सिटीजन्स को हम इंक्लूड कर सके बाकी सारी सर्विसेज।
2: इससे एक चीज अगर ये हम जोड़े कि जैसे कुछ समय पहले तक टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना सभी के लिए बहुत आसान नहीं था, लोग घबराते थे कि टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें या ना करें, इससे हमारा नुकसान ना हो, लेकिन अभी बीते एक दशक की हम बात करते हैं भारत सरकार के जो डिजिटल प्रयास हुए हैं, क्या आपको लगता है कि ये उसी का असर है कि आज टेक्नोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा हम अडॉप्ट कर रहे हैं? आपने AI का जिक्र किया था, बहुत ही तेजी से काम करने में बहुत सहायता हमारी ये पहुंचाता है, आज आम आदमी भी AI को बड़ी तेजी से अडॉप्ट कर रहा है।
3: अगर आप सब्जी खरीदने भी जाते हैं और अगर आप QR कोड पे पेमेंट करते हैं और वो उस पे एक वॉइस कमांड आता है कि जिसमें आपका 200 रुपए का भुगतान हुआ, वो भी AI है। वो भी हमारे गांव में अभी जाने अनजाने में लोग यूज कर रहे हैं, वो भी AI का एक एप्लीकेशन है। ऐसे ही अगर आप किसानों के लिए कुछ एप्लीकेशन है जिसमें वो मतलब अपने AI बॉट से बातचीत करके पता कर सकते हैं कि बीज किस तरीके का खाद डालना है, किस तरीके के बीज और कहाँ से लेना है, तो भारतीय सरकार ने ना सिर्फ इकोसिस्टम प्रोवाइड किया, उन्होंने जो सॉल्यूशन प्रोवाइडर थे उनको अनेबल भी किया, और इसमें जो नॉलेज एस्पेक्ट था, जैसे भारत ही एक सबसे विभिन्न तरीके से जीपीयू प्रोवाइड कर रहा है जो सबसे सस्ता है पूरे विश्व में, वो एमएसएमईज और स्टार्टअप्स को प्रोवाइड किया जा रहा है। हमारा जो एआई कोश है उसमें जो हमारी रीजनल लैंग्वेजेस के जो एलएलएम्स या उसके रिलेटेड जो रिसोर्सेज हैं वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो अनेबलमेंट भी है और सॉल्यूशन एक्सेस भी है, नॉलेज शेयरिंग ग्लोबल लेवल पे, वो जो भी बेस्ट चिप्स हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं और एक्सपर्ट्स हैं उनको भारत यहाँ ला रहा है।
2: उत्पल जी, स्वास्थ्य और न्याय की अगर हम बात करते हैं तो ई हॉस्पिटल, ई संजीवनी और ई कोर्ट जैसी पहल आज हमारे सामने बहुत ही आसानी से उपलब्ध है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि इन सारी चीजों ने आम लोगों के जीवन पर किस तरह से असर डाला, आप कैसे देखते हैं इसे?
4: ये तो बहुत ही अच्छी चीजें है, बिकॉज हम अगर इंडिया का बात करें तो हमारा जो दूर दराज का एरिया है जिधर के मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, तो टेक्नोलॉजी के थ्रू से हम लोग, वो स्टार्ट हुआ टेलीमेडिसिन से, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो ऐसा भी स्टार्टअप्स और ऐसा भी इनिशिएटिव्स है जो कि डिजिटली उधर से डायग्नोसिस कर सकता है कुछ कुछ डिजीजेस का, और वो रिमोटली डॉक्टर के साथ उसको कंसल्ट करके उसका ट्रीटमेंट होता है। हमारा एक स्टार्टअप को जिसको कि यूनाइटेड नेशंस एआई फॉर गुड में जिसको अवार्ड भी किया गया है, जो कि प्रेगनेंसी का कॉम्प्लिकेशन को वो लोग डिटेक्ट कर सकता है एक छोटा सा डिवाइस, अफोर्डेबल डिवाइस से, और वो गांव का दूर दराज एरिया में लेके जा सकता है और उसको ये कर सकता है। और इसका पूरा श्रेय जाता है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है, क्योंकि वो बैकबोन अगर नहीं होते तो हम लोग ये बाकी जितना भी चीज है ये करने, तो बहुत ऐसा कंट्रीज है, डेवलप्ड कंट्रीज है जो कि बिट्स एंड पीसेस में स्टार्ट किया और मैक्सिमम जो काम किया वो प्राइवेट सेक्टर ने किया या प्राइवेट बड़ा बड़ा कंपनी ने किया, लेकिन इंडिया का जो मॉडल है ये एक यूनिक मॉडल है। इसमें क्या किया, जो बेस लाइन है और जो बेस है और जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है ये गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया और इसको ओपन कर दिया पब्लिक के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, बाकी कंपनीज के लिए कि इसको एक्सेस करें। तो इसीलिए आप अगर देखोगे आज ऑथेंटिकेशन करने के लिए हम लोग आधार का सर्विस यूज कर सकते, तो इससे ओपन प्लेटफॉर्म, हम कोई भी एपीआई कॉल करके आधार से ऑथेंटिकेट, जो कि सबसे अच्छा ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म है। ऐसा कोई भी हमारा अगर कुछ भी जरूरत है, पेमेंट्स का, मैं अगर ई कॉमर्स साइट करना चाहता हूँ या कोई भी चीज ऐसा करना चाहता हूँ, अगर पेमेंट इको सिस्टम चाहिए तो मेरे पास यूपीआई है, मैं इजिली इंटीग्रेट करके कर सकता हूँ। तो ये मॉडल जो है, इट्स यूनिक मॉडल कि गवर्नमेंट ने आपको पूरा का पूरा बेसलाइन प्रोवाइड किया, इको सिस्टम प्रोवाइड किया, ऑन टॉप ऑफ द इको सिस्टम आप क्या कर सकते हो, आप कुछ भी बना सकते हो। एंड वही एआई का अभी पुसुम जी ने बात किया कि एआई कोशा में तो सब्सिडाइज रेट में जीपीयू दे रहे थे, एंड ऑल अदर थिंग्स आर ऑल पार्ट ऑफ दैट।
2: उत्पल जी, जब सरकार की व्यवस्थाओं की हम बात कर रहे हैं तो आज कितना आसान हो गया है कि माईगोव जैसे प्लेटफॉर्म जो है वो बड़ी आसानी से हमें जानकारी उपलब्ध करा देते हैं सरकार की चीजों के बारे में, और ये कितना आसान है कि लोग सीधे सरकार से जुड़ सकते हैं। तो आपको लगता है कि सरकार ने अब तकनीकी रूप से अपने नागरिकों के बीच संवाद करने की पहल को और ज्यादा खुला, पारदर्शी और सहभागी बनाया है?
4: डेमोक्रेसी में जो होता है, जो सिटीजन है सरकार के पास रहना चाहिए, तो वो पास का जो जरिया है वो है कम्युनिकेशन, वो कैसे हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं ऐसे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में जो होता है कि सरकार से जो जनता है वो दूर में चला जाता है, क्योंकि उसका वो जो जरिया है वो नहीं है। लेकिन ये जो सरकार हमारा है बीते 11-12 साल में, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि आप जो सिटीजन है वो सरकार के साथ जोड़ सके। और ये जितना भी है माईगोव आप देख रहे हो, बाकी जितना भी है, ये चैनल्स है सरकार के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। अपना कोई भी जो प्रॉब्लम्स है या कोई भी आइडियाज है या कुछ भी है उसको सरकार के पास तक के लेके जाना। तो मैं समझता हूँ ये जो दीज आर ओनली चैनल, आप देखोगे फ्यूचर में और भी ऐसा चैनल आएगा जो कि सिटीजन को सरकार के और पास लेके जाए, एंड दैट्स द रियल डेमोक्रेसी।
2: सुन जी, उमंग, GSTN, पोषण ट्रैकर और पीएम गतिशक्ति जैसे जो प्लेटफॉर्म है आज अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और सरकारी व्यवस्थाओं को लोगों तक पहुंचाने में बड़ी सहायता करते हैं, तो ये जो डिजिटल इकोसिस्टम है सरकारी सेवाओं को आगे पहुंचाने का, आपको क्या लगता है कि काफी आगे तक बढ़ चुका है या इस पर भी और भी काम करने की जरूरत है?
3: काफी आगे तक बढ़ चुका है और आगे डेफिनेटली और इवॉल्व होगा, क्योंकि एक ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम डेवलपमेंट हो रहा है। अगर आप देखिए इसमें काफी सर्विसेज हैं, इवन प्रोक्योरमेंट जिसमें सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी चाहिए थी और अनेबलमेंट चाहिए थी, हमारे स्टार्टअप्स अब किसी भी सरकारी टेंडर में भाग ले सकते हैं, हमारे स्टार्टअप्स को जो भी ग्रांट्स हैं वो सब ऑनलाइन हो चुका है, इवन जो आपको सर्टिफिकेशंस, उद्यम सर्टिफिकेट चाहिए, जो DPIT रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, आप ऑनलाइन अप्लाई करिए और आपको निश्चित समय में वो उसका जवाब मिलता है। और अगर कोई क्लैरिफिकेशन भी होता है तो वो डिजिटल माध्यम से ही होता है। तो तकरीबन अगर आप देख रहे हैं, हम दुनिया की टॉप 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम में इसीलिए ही आए हैं क्योंकि ये अनेबलमेंट हुआ है
2: जी।
3: ग्रांट डिसबर्समेंट हो रही है, प्रोजेक्ट में वो पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। अब हम डिजिटल यूजर से डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइडर हो गए हैं ग्लोबल इकोसिस्टम में, ना सिर्फ कॉमन सर्विसेज में, अब रिसर्च ओरिएंटेड सर्विसेज जिसमें आप आजकल डीप टेक, जैसे हमारे भारत इनोवेट में प्रधानमंत्री ने भी कई फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सॉल्यूशन दिखाए, जैसे 3D प्रिंटेड हमारा पहला रॉकेट दिखाया गया वहां पे। तो ये तभी संभव हुआ जब हमारे पास डिजिटल एक्सेस आया, ट्रांसपेरेंसी थी, रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट हुए इस डिजिटल एक्सेस के थ्रू, और पार्टिसिपेशन मिला रियल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए स्टार्टअप्स और MSME को
2: जी। उत्पल जी, जनधन आधार और मोबाइल यानी कि जैम ट्रिनिटी जिसे हम बोलते हैं, वो हमारी डिजिटल इंडिया की एक तरह से मेरुदंड है। तो आपके हिसाब से इस मॉडल ने आम नागरिक तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचाने की बात हो तो किस तरह से इसमें बदलाव लाया है?
4: पहला जो है वो है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी होना बहुत जरूरी था क्योंकि आइडेंटिटी जब हो जाएगा तभी मिडिल मैन कोई नहीं रहेगा बीच में। और इसीलिए क्या हो रहा है, जितना भी गवर्नमेंट का बेनिफिट्स है जितना उसे डायरेक्टली सिटीजन तक के पहुंच रहा है। तो ये तो डायरेक्ट चैनल एस्टेब्लिश तभी हो पाया जब हम लोग आइडेंटिटी किया। सेकंड थिंग है कि जो ये पूरा बैंकिंग सिस्टम को, बैंकिंग इकोसिस्टम जो है, और इसमें हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री प्लस हमारा RBI का एंड हमारा नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा योगदान है कि ये जो इकोसिस्टम बनाया है, ये सिर्फ इकोसिस्टम को यूटिलाइज करके अभी पेमेंट्स या जो ट्रांसफर हम लोग बोलते हैं जो बहुत ईजी हो गया है, वेदर डोमेस्टिक और क्रॉस बॉर्डर, तो और भी बहुत बेनिफिट हो रहा है कि हम लोग का जो पहले बहुत कुछ जो ये हो रहा था, मतलब कि पैसे के लेन देन में बहुत जो गड़बड़ी हो रहा था, वो सब भी मनी लॉन्ड्रिंग केसेस जितना भी है, अभी वो इजीली कोई भी फ्रॉडुलेंट केस, मनी लॉन्ड्रिंग केस को आइडेंटिफाई कर सकता है। क्योंकि क्या है, तो फाइनेंशियल इकोसिस्टम है वो पूरा क्लीन हो गया है। उसके साथ साथ डिमोनिटाइजेशन का भी बहुत बड़ा हाथ है कि हमारा पूरा डिजिटल इकोनॉमी लाने जो आ गया, उससे बहुत कुछ करप्शन छोटे लेवल पे जो कुछ भी करप्शन ये सब है वो सब हट गए। तो ये जितना भी बेनिफिट्स आप देख रहे हैं, दीज आर ऑल सिटीजन सेंट्रिक, मतलब एक पहल है क्योंकि सिटीजन को मतलब मिडिल में रखते, सेंटर स्टेज में रखते हुए सब कुछ बनाया गया है। और आज इससे बहुत बड़ी दूरदर्शिता का काम किया है जो कि अभी प्रसून जी ने बताया कि 100 साल के बारे में सोच के बनाया है, तो मैं भी सहमत हूँ उससे।
2: अब प्रसून जी, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सेमिकॉन की हम बात करते हैं, आइए सुनते हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस संबंध में क्या जानकारी दी।
6: सेमीकंडक्टर चिप जो होती है वो पूरी की पूरी इसके ऊपर, इस डिजाइन को इसके ऊपर सिलिकॉन वेफर के ऊपर कंप्लीट फैब्रिकेशन किया जाता है और उसके बाद में इसमें से इंडिविजुअल चिप्स को निकाल के सेमीकंडक्टर की चिप्स का उपयोग किया जाता है। तो बहुत खुशी की बात है कि भारत में पूरा इकोसिस्टम आ गया है। ये एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, सेमीकंडक्टर है तो आप बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। हर चीज के लिए सेमीकंडक्टर चिप्स चाहिए, तो देश के लिए बहुत बड़ी एक जरूरत है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पे बहुत फोकस दिया और अब अपने 10 प्लांट में से 4 प्लांट की पायलट लाइन रेडी है। टीजी सेमी में प्रोडक्शन चालू हो गया, पहली मेड इन इंडिया चिप भी माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट की गई। और साथ ही साथ भारत में टैलेंट को डेवलप करने के लिए बड़ा काम चल रहा है। 278 यूनिवर्सिटीज में सेमीकंडक्टर की ट्रेनिंग दी जा रही है और बहुत ही खुशी की बात है कि जो सेमीकंडक्टर की ट्रेनिंग लिए हुए स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी चिप्स ऑलरेडी डिजाइन की है, डिजाइन करके उसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ है।
2: डिजिटल इंडिया को हम पूरा का पूरा तकनीक से जोड़कर देखते हैं और इस तरह कहीं ना कहीं एक पहलू रोजगार भी है, तो IT, AI, सेमीकॉन और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए जो अवसर निकल रहे हैं उन पर आपके क्या विचार हैं?
3: डिजिटल इंडिया ने हमें डिजिटल एक्सेस प्रोवाइड किया, AI, सेमीकंडक्टर हमें डिजिटल इंटेलिजेंस और सोवर्निटी प्रोवाइड करेंगे। और आपने बात की साइबर सिक्योरिटी और सेमीकॉन जैसे, इसका मूल है कि चिप, अगर आप देखिए मोबाइल, कार और जितने भी होम अप्लायंसेस है उसका जो भी प्रोसेसिंग है या इंटेलिजेंस यूनिट वो चिप होता है। तो पहले हम ऑलमोस्ट सारे ही चिप हम आयात करते थे, अब हम खुद बनाने लगे। नॉर्मली चिप बनाने में भी 10 से 15 साल लगते हैं, पर जिस स्पीड से भारतीय इकोसिस्टम में वो डेवलप हुआ है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज जो लिया था भारत सरकार ने वो सक्सेसफुली डिलीवर किया। अब हम चिप बना रहे हैं यहाँ पे और उसके साथ जो पूरी सप्लाई चेन है वो भी हमने खड़ी करी। तो ये एक इंटेलिजेंस युग में हम जा रहे हैं जिसमें ना सिर्फ हम यूजर हैं, हम सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं, ना सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए पर पूरे विश्व के लिए। और अब सबसे बड़ी बात आजकल चल रही है टेक सोवरेनिटी की, सिक्योरिटी रिलेटेड एस्पेक्ट में। अगर आप देखिए तो इन डिजिटल एक्सेस के थ्रू ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं है, ये इंक्लूशन एम्पावरमेंट की कहानी है। अब हमारा खुद ऑपरेशन सिंदूर में हमारा एक स्टार्टअप था जिसने एंटी ड्रोन एक सॉल्यूशन बनाया जो यूज हुआ, वो इंडिजीनियस है, भारत में बना है। ऐसे ही जो डिफेंस रिलेटेड

0: ढांचे में क्रांतिकारी परिवर्तन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे एआई विशेषज्ञ प्रसून शर्मा और एआई एवं तकनीकी विशेषज्ञ उत्पल चक्रवर्ती। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
1: चर्चा का विषय है।

रहे थे कार्यक्रम चर्चा का विषय है आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी जैसलमेर है FM बैंड 101.8 MHz पर। आइए श्रोताओं, सुनते हैं राजस्थानी लोक संगीत।

अभी आप सुन रहे थे राजस्थानी लोक संगीत, ये आकाशवाणी जैसलमेर है, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। आइए श्रोताओं, सुनते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत की कड़ी में हम आपको पहला गीत सुनवा रहे हैं फिल्म बागबान से।

बाग को जन्म देने वाला बागबान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं, ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साए से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा।

0: दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कंप्लीट ईयर एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसमें उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल कानपुर कबराई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आज विदेश सचिव का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने की अनुमति दी। श्री मिश्री 1979 के बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। विदेश सचिव ने 15 जुलाई 2024 को अपना कार्यभार संभाला था। श्री मिश्री ने 3 प्रधानमंत्रियों इंद्र कुमार गुजराल, डॉक्टर मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में भी सेवाएं दी है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतन भोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के आईटीआर में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकी परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृहमंत्री को बताया कि वो जनसांख्यिकी परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंचे। उनका ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ कल होने वाली वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक से भारत जापान की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूत मिलेगी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज एपी मोलर मर्स्क समूह के एस्टेट स्ट्रेटेजी प्रमुख अहमद हसन के साथ भारत के समुद्री क्षेत्र को मजबूत बनाने पर चर्चा की। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच की श्रृंखला का पहला मैच चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 12वें ओवर में 3 विकेट पर 114 रन बना लिए हैं। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में इंग्लैंड और डीआर कांगो के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक डीआर कांगो ने 1-0 की बढ़त बना ली है। वहीं देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba.